दोस्तों, जब मौसम सुहाना हो, हवाओं में ठंडक हो और मन में खुशी की एक मीठी सी लहर उठ रही हो, तो लगता है जैसे प्रकृति भी हमारे साथ गुनगुना रही है। कभी कभी एक हल्की सी हवा भी पुराने दिनों की कोई

दोस्तों, जिंदगी में खुशियां हमेशा बड़ी वजहों से नहीं आती। कभी किसी अपने की मुस्कान, कभी कोई प्यारा सा गीत और कभी छोटी सी अच्छी बात भी मन को खुश कर जाती है। तो बस यूं ही अपनी मुस्कान को बनाए रखिए, दिल में उम्मीद जगाए रखिए और जिंदगी के हर पल को गीत की तरह गुनगुनाते रहिए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम के यानी भोर सुहाने कार्यक्रम को संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 सितंबर 2026, सुबह के 5:55 और ठीक 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चिंतन। परमात्मा का वास सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में परमात्मा का भाव भी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से दुखी है। ये कथन श्री रामकृष्ण परमहंस का है। ये था

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 313। इसमें आज आप सुनेंगे लंका कांड। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं, इसका भाग एक। कलाकार गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। प्रस्तुति छाया गांगुली की। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे और 7:30 पर। हम हैं राही प्यार के। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे और 8:15 पर। सुनिए त्रिवेणी में आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। आज आप सुनेंगे नए गीत। इस कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। ये केंद्रित होगा संगीतकार राम लक्ष्मण पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। सुबह 11 बजे सुनिए रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1 बजे विविध भारती से, और श्रोता फेसबुक कमेंट्स द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। दोपहर 2:15 पर सुनिए दोपहर समाचार, और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का समय होगा दिन में 3 बजे और दोपहर बाद 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान। साहित्यकार लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ से ममता सिंह की बातचीत आज आप सुनेंगे, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह, क्षमा कीजिए, शाम 5:30 से लेकर शाम 6:30 तक। इसी बीच 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। शाम का झरोखा होगा 6:30 पर। सुनेंगे आप जानकारी आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी 6:35 पर। संध्या रंजन। शाम 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम, और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग अनुराग। हवा महल में सुनिए नाटिका पर्दाफाश, लेखन कुंभेश श्रीवास्तव का, निर्देशन पुरुषोत्तम दार्भेकर। कार्यक्रम का समय रात्रि 8 बजे। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा 8:15 पर। समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे।

रात्रि का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार राम लक्ष्मण पर, आलेख और स्वर प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। छायागीत कार्यक्रम सुनना ना भूलें, रात्रि 10 बजे, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 313। आज इसमें आप सुनेंगे लंका कांड। आइए सुनवाते हैं।

हे राक्षस राज, तू बड़ा अभिमानी है। मैं तो रघुनाथ के सेवक का सेवक हूं। यदि प्रभु के अपमान का विचार न होता तो मैं तुझे धरती पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरी स्त्रियों सहित सीता जी को यहां से ले जाता, किंतु ऐसा करना मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो जीते जी मृतक के समान है, उसे मारने से क्या लाभ? उल्टी दिशा में चलने वाले कामी, कंजूस, मूर्ख, दरिद्र, बदनाम, अत्यंत वृद्ध, चिरंतन रोगी, हर पल क्रोधी, भगवत विद्रोही, वेद और संतों का विरोध करने वाले, केवल अपना पेट भरने वाले, पर निंदक और महापापी, ये 14 प्रकार के प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान होते हैं। बस यही सोचकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तू अब ऐसे वचन न बोल जिससे मेरा क्रोध और भड़क उठे। अंगद के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से कांपने लगता है। सोचता है, इस वानर का काल आ पहुंचा है। श्री राम के प्रति अवमानना के शब्द सुनकर अंगद ने दांत किटकिटाकर घोर गर्जन के साथ अपने हाथ धरती पर पटके तो भूचाल सा आ गया। रावण के सभासद एक दूसरे पर गिर पड़े। रावण के जो मुकुट धरती पर गिर पड़े, उन्हें अंगद ने उठाकर उस दिशा में फेंक दिया जिधर श्री राम थे।

0: आज से हम संगीत श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है ख्याल और तराने की विशेषताएं। शास्त्रीय संगीत की इन शैलियों पर सौदाहरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। आज हम आपको ख्याल के बारे में बताएंगे। ख्याल का अर्थ है चिंतन, ध्यान। योगी, ज्ञानी, ध्यानी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं तो पहले उस आकार को मन मस्तिष्क में बैठा कर फिर चिंतन करते हैं, क्योंकि केवल मेडिटेशन करना कोरी कल्पना है। पहले इमेज बनाकर फिर इमेजिनेशन करने के बाद मेडिटेशन करने की प्रणाली है। यही ख्याल प्रणाली अर्थात चिंतन प्रणाली का स्वरूप है।

राग के स्वरूप की आउटलाइन बनाकर बढ़त करते हुए राग रंग भर के उस आकार को साकार करना ही राग को साकार करना है। इस प्रकार चिंतन से चयन करके स्वरों के द्वारा चयनदारी उत्पन्न करना ही ख्याल है। स्वर साधना

ख्याल गायन में हारमोनियस सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। एक एक स्वर की क्रमबद्ध बढ़त करने से माधुर्य उत्पन्न होता है। एक एक स्वर का स्वाद लेना चाहिए, उसका लुत्फ उठाना चाहिए। गायन में बेतरती भी नहीं होनी चाहिए। क्रम व राग की प्रकृति, चलन एवं उसके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। गायन में उद्दंडता या व्यतिक्रम होने पर चिंतन अर्थात ख्याल बेख्याल होने लगता है। जिस प्रकार प्रत्येक नागरिक को नागरिकता के नियमों का बोध होना व पालन करना जरूरी है, उसी प्रकार शास्त्रीय गायन की दुनिया में सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है। बढ़ी हुई लय में ख्याल गायन में दो आवृत्ति में बंदिश पूरी करनी होती है, किंतु इस गायकी की विशेषता यह है कि विलंबित लय में एक ही बार में पूरी रचना और राग का सौंदर्य मुखरित होने लगता है। तो सुनिए राग नटभैरव में यह बंदिश जो झूमरा ताल में निबद्ध है।

ख्याल, विलंबित लय, मध्य लय तथा द्रुत लय में गाए जाते हैं। विलंबित में झूमरा, एक ताल, आड़ा चौताल, तिलवाड़ा, तीन ताल, रूपक ताल आदि आदि तालों में गाए जाते हैं। मध्य लय एवं द्रुत लय में तीन ताल, एक ताल, आड़ा चौताल, रूपक, सूल ताल, झपताल आदि तालों में प्रायः गाए जाते हैं। किंतु इंदौर घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खां विलंबित ख्याल प्रायः झूमरा ताल में ही गाते थे। यही क्रम स्वर्गीय उस्ताद बहरे अब्दुल वहीद खान साहब का अमीर खान से पूर्व रहा। तो सुनिए राग दरबारी की यह बंदिश, जिसमें एक ढंग अपना ही रंग लिए हुए।

0: ताल और तराने की विशेषताएं। संगीत सरिता में आज आपने इस श्रृंखला की पहली कड़ी सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर इनका साथ दिया था पुरुषोत्तम वालावलकर ने। तबले पर संगत की थी ओमकार गुलवाड़ी ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सभी श्रोताओं को जय श्री महाकाल। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम महाकाल वंदन।

श्रोताओं, आइए बाबा महाकाल की नगरी की इस भोर का स्वागत भी बाबा महाकाल को समर्पित इस भजन के साथ करते हैं।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 सुनिए उज्जैन दर्शन। 10:30 पर महिला सभा कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम यादों की महफिल, आप सुनेंगे 12:05 पर कार्यक्रम सुरीला सफर, आप सुनेंगे 1:00 बजे फिल्म संगीत, आप सुनेंगे 2:00 बजे।

2:30 पर सदाबहार नगमे सुने जा सकेंगे। 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम सुना जा सकेगा। शाम 4 बजे सुनिए आज के मेहमान। आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में सुनिए शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का अपनी पसंद का प्रोग्राम युववाणी।

शाम 6 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 6:30 पर फिल्म संगीत सुना जा सकेगा। अपने केंद्र से आपको चौपाल पर ले चलेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम होगा माटीरी बात, जिसमें मालवी समाचारों के साथ आनंद लीजिए मालवी गीतों का। रात 8 बजे सुनिएगा एशियन गेम्स के 20वें ऑडिशन पर आधारित विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। 8:30 पर कार्यक्रम सुर्खियों में सुना जा सकेगा।

8:30 पर कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकेंगे। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम चर्चा का विषय है। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात 10:00। 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी सुना जा सकेगा। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति ने किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कल से मध्य प्रदेश में शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री आज इंदौर में इंफोसिस परिसर में नए ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। और भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को हराया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे ट्रांसफर की गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपये तक किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। एमडीआर केवल 2000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि एमडीआर न तो कोई टैक्स है और न ही सरकार या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा वसूला जाने वाला कोई शुल्क है। इसे यूपीआई की संचालन और निरंतर विस्तार में मदद के लिए बैंकों और भुगतान एप्लीकेशन प्रदाताओं के प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल से उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करना है। इस अभ्यास का लक्ष्य पर्वतीय और अर्धपर्वतीय क्षेत्रों में एकीकृत युद्ध समूहों के उपयोग के लिए दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, जिसमें पैदल सेना के प्रधान अभियानों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा से संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 17 सितंबर को दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर उज्जैन में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों सहित सांस्कृतिक धरोहरों और आइकनिक स्थलों पर शाम 7 बजे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस अवसर पर उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। नर्मदापुरम के सेठानी घाट सहित अन्य शहरों में भी आयोजन होंगे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। बालाघाट जिले में पुलिस की सक्रियता से नक्सलियों का आतंक खत्म हो गया है। पुलिस द्वारा लगातार की गई कार्रवाई के कारण क्षेत्र में शांति व्यवस्था बेहतर हुई है। इस बारे में बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया।
1: देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है, अगर आप बालाघाट की टोपोग्राफी को देखेंगे, ज्योग्राफी को देखेंगे, तो यहाँ के पहाड़ बिल्कुल समतल नहीं। यहाँ पर लगातार टेरेन जो है वो चट्टानों से भरा हुआ है। जब आप बारिश में कभी ऑपरेशन करने जाते हैं तो सभी जगह नदी नाले भरे रहते हैं, उफान पे रहते हैं। उस समय अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए जंगल के अंदर तक जाना और एक सेफली ऑपरेशन करना, उसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि बहुत सारी बड़ी संख्या में यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन जो है वो जंगलों में अपने दैनिक चीज़ों को लेने के लिए जाती है, कहीं तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए जाती है, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना और उसी के साथ साथ नक्सलियों से उन लोगों को बचाना। तो मुझे लगता है कि ऐसी कई चुनौतियां रहती हैं जिसको हॉक फोर्स ने, जिला बल ने और SAF ने यहाँ पर बहुत भरपूर तरीके से जीतने का प्रयास किया और जीतने में सफल रहे। तो मुझे लगता है कि 19-20 के बाद से 25 तक लगातार, क्योंकि हमारा पेनिट्रेशन बढ़ा, हमारा आउटरीच बढ़ा, हमारे ऑपरेशनल संख्या आगे बढ़ी, उसी के कारण ये हुआ कि जो हॉक फोर्स है वो लगातार इस क्षेत्र में हावी होता रहा और नक्सलियों को क्षेत्र न केवल छोड़ के भागना पड़ा परंतु अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। ये ब्लॉक 3,30,000 वर्गफीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है, जो प्रदेश में उन्नत तकनीक क्षमताओं और रोजगार परक टैलेंट इकोसिस्टम को और सशक्त करेगा। इंफोसिस मध्य प्रदेश के बढ़ते टैलेंट पूल का लाभ लेने के साथ प्रदेश के शैक्षणिक और तकनीकी इकोसिस्टम के साथ अपना जुड़ाव भी मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल द्वारा लिखित पुस्तिका विकास की गाथा अभ्युदय सारंगपुर प्रमुख उपलब्धियां और विकास कार्य का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुस्तिका के लेखक डॉ. टिटवाल को इस नवाचार के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथियों के स्वास्थ्य पोषण और समग्र कल्याण को समर्पित 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का शुभारंभ 14 सितंबर को कामती परिक्षेत्र के खरेर कैंप में फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा द्वारा किया गया। हाथी महोत्सव 20 सितंबर तक चलेगा। महोत्सव के दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 6 हाथियों को नियमित गश्ती और वन्य जीव प्रबंधन कार्यों से विश्राम देकर विशेष देखभाल प्रदान की जा रही है। इनका मेडिकल चेकअप कराने के साथ ही विभिन्न खेल और मनोरंजक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारत को जीत के लिए 160 रन चाहिए थे और उसने लक्ष्य का पीछा करते हुए 14 ओवर 5 गेंदों में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाए। संजू सैमसंग ने 22 गेंदों पर 57 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोर किया, जबकि अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन बनाए। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली के उसी मैदान पर खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिला स्तरीय टास्क फोर्स और बंधक श्रम अधिनियम 1976 के तहत गठित जिला सतर्कता समिति की बैठक कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। खंडवा में श्री नील कंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अभियान के 13 घटकों की समीक्षा की। उप निर्वाचन हेतु ईवीएम मशीनों का डीओ लेवल रेंडमाइजेशन आगरमालवा में आज शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगा। झाबुआ जिले में पंचायत उप निर्वाचन 2026 के लिए ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन आज सुबह 11:30 पर कलेक्टर सभाकक्ष में किया जाएगा। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में कल हुई जन सुनवाई में 121 आमजनों की समस्याएं सुनी गयी। डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विकासखंड करंजिया में बैठक आयोजित की गई। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी अभियान का गान जारी किया है। इस गान को प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। ये गीत जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संगीतमय आवाज देता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और मैं गोपाल गर्वित लेकर आया हूँ सुबह की ताजगी, शहर की महक और कुछ ऐसी बातें जो आपको इस उज्ज्वल प्रभात से और भी गहराई से जोड़ देंगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षिप्रा की लहरों पर सुनहरी रेखा खींचती है, उज्जैन जाग उठता है। घंटों की मधुर ध्वनि के साथ, बाबा महाकाल की भस्म आरती की ऊर्जा के साथ और इस शहर की अनगिनत कहानियों के साथ जो हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं आप सभी का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

श्रोताओं, जहां मैदान में उतरता है खिलाड़ी, वहां सिर्फ मुकाबला नहीं होता, वहां हौसले, अनुशासन और सपनों की परीक्षा भी होती है। उज्जैन में इन दिनों खेल प्रतिभाओं का ऐसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। उज्जैन में 70वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कुश्ती फ्री स्टाइल का रंगारंग शुभारंभ हुआ। 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की ये प्रतियोगिता 15 से 18 सितंबर तक उज्जैन संभाग की मेजबानी में आयोजित की जा रही है। क्षीर सागर स्टेडियम स्थित कुश्ती एरिना में हुए इस शुभारंभ समारोह में राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज मुख्य अतिथि रहे। प्रतियोगिता में प्रदेश के 9 संभागों से आए लगभग 300 बालक बालिकाएं और खेल अधिकारी शामिल हो रहे हैं। समारोह

में सरस्वती वंदना और गणेश वंदना की प्रस्तुतियां हुई। 11 वर्षीय बालक वंशिका तालोदिया ने गणेश वंदना पर कथक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। अतिथियों ने खेल ध्वज फहराकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। कुश्ती के अखाड़े से लेकर जीवन के मैदान तक जीत की पहली शर्त है हौसला। इन्हीं जज्बातों को सलाम करते हुए चलिए सुनते हैं आज के सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का पहला गीत।

0: नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

0: जब दिन की शुरुआत इस खुशनुमा गीत के साथ हो तो उसमें चार चांद लग जाते हैं।
1: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम, मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
2: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
3: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।
2: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
3: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
2: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
2: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
3: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित ना करें।
2: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति ना बैठें।
3: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
2: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
3: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
2: थोड़ी सी सावधानी
3: दूर करे सभी परेशानी।
4: बाजू

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत है स्थानीय समाचार। उज्जैन में अखिल भारतीय हस्तरेखा महासम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञ जुटे। पुष्टिमार्गी वैष्णव हवेलियों में राधा अष्टमी की बधाई और कीर्तन का क्रम जारी है। श्री महावीर तपोभूमि में आज से 10 दिवसीय दशलक्षण महापर्व और श्रावक संस्कार शिविर शुरू हुआ। पावर लिफ्टिंग में उत्कर्ष प्रदर्शन के बाद डॉक्टर नागर का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन। विश्व महासम्मेलन के संभागीय सम्मेलन में संगठन को सशक्त बनाने पर जोर। तैराक सोनल सिसोदिया का एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए चयन। 1500 टोल फ्री नंबर पर मिलेगी निशुल्क कानूनी सहायता। चित्तौड़गढ़ उज्जैन पैसेंजर का आज से 7 स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव। अब समाचार विस्तार से। उज्जैन के महाराजा अग्रसेन भवन में हस्तरेखा स्कूल की ओर से 2 दिवसीय अखिल भारतीय हस्तरेखा महासम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से हस्तरेखा विशेषज्ञ शामिल हुए। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने वेद, पुराण, संस्कृत और ज्योतिष के जुड़े आयोजनों की आवश्यकता बताते हुए हस्तरेखा स्कूल के प्रयासों की सराहना की। हिंदू विश्वविद्यालय दिल्ली के ज्योतिष विभाग प्रमुख सुनील जोशी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने हस्तरेखा से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी। उज्जैन की पुष्टिमार्गी वैष्णव हवेलियों में राधाष्टमी के पूर्व बधाई और कीर्तन का क्रम जारी है। राधाष्टमी 19 सितम्बर को मनाई जाएगी। शहर में श्रीनाथ जी की हवेली ढाबा रोड, श्री गोवर्धन जी की हवेली कार्तिक चौक, मदन मोहन जी की हवेली सराफा, पुरुषोत्तम नाथ जी की हवेली गोला मंडी और श्रीमद वल्लभाचार्य जी की 73वीं बैठक अंकपात मार्ग पर भक्तजन विशेष कीर्तन और बधाई गीतों के माध्यम से राधा जी के प्राकट्य का उत्सव मना रहे हैं। श्री महावीर तपोभूमि में आज से 10 दिवसीय दशलक्षण महापर्व के अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर शुरू होगा। इसमें देश भर के 350 से अधिक साधक शामिल होंगे। साधक 10 दिनों तक मोबाइल, टीवी, अखबार और बाहरी संपर्क से दूर रहकर संयम पूर्वक आत्म साधना करेंगे। 16 सितंबर को उत्तम क्षमा, 17 को उत्तम मार्दव, 18 को उत्तम आर्जव, 19 को उत्तम शौच, 20 को उत्तम सत्य, 21 को उत्तम संयम, 22 को उत्तम तप, 23 को उत्तम त्याग, 24 को उत्तम अकिंचन्य और 25 सितंबर को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना होगी। उज्जैन में आयोजित जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग एवं बेंच प्रेस प्रतियोगिता में डॉक्टर राजेंद्र नागर ने मास्टर ग्रुप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन आगामी राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रतियोगिता के लिए हुआ है। डॉक्टर नागर ने वर्ष 2025 में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर पावर लिफ्टिंग चैंपियन का खिताब भी हासिल किया था। वहीं हरियाणा में आयोजित 22वीं मास्टर्स एक्वेटिक चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की तैराक सोनल सिसोदिया ने 3 पदक जीते। उन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रजत, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में कांस्य और 50 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया। सोनल का चयन द्वितीय एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जहां वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उज्जैन में विश्व महासम्मेलन मध्य प्रदेश का संभागीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें संभाग के 5 जिलों से आए अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने और विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर इंद्रेश अग्रवाल को शहर युवा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन संस्था की प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक भरतपुरी स्थित मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान में हुई। प्रांतीय अध्यक्ष ने संगठन की वर्ष भर की गतिविधियों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों तथा संगठन विस्तार पर सुझाव मांगे। बैठक में 50 देशों में आयुर्वेद के विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय वयोश्री योजना और एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण शिविर आज सांसद कार्यालय जीडीसी कॉलेज के पीछे आयोजित होगा। शिविर का समय सुबह 10 से शाम 5:50 तक है। पात्र हितग्राहियों को चिन्हित उपकरणों का वितरण 17 सितंबर को कालिदास अकादमी में किया जाएगा। हितग्राहियों को निर्धारित दस्तावेज और पात्रता संबंधित शर्तें पूरा करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने निशुल्क कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर
15100 शुरू किया है। पात्र नागरिक इस नंबर पर कानूनी सलाह, अधिवक्ता की सुविधा, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, महिला अधिकार, श्रम विवाद और उपभोक्ता मामलों से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने माई भारत पोर्टल के तहत विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए क्विज शुरू की गई है। प्रतियोगिता में 20 प्रश्न होंगे और उन्हें हल करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए चित्तौड़गढ़ उज्जैन पैसेंजर ट्रेन को 16 सितंबर से 11 अक्टूबर तक 7 स्टेशनों पर एक एक मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। इस दौरान ट्रेन शंभूपुरा, जावद रोड, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी, दलोदा, ढोडर और नामली स्टेशन पर रुकेगी। वहीं 19423 अहमदाबाद भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस के रतलाम स्टेशन पर ठहराव के समय में बदलाव किया गया है। अब यह ट्रेन रात 11:40 पर रतलाम पहुंचेगी और 11:45 पर रवाना होगी। यह परिवर्तन 30 सितंबर से अहमदाबाद से चलने वाली ट्रेन से लागू होगा। चलिए दोस्तों, अब आकाशवाणी उज्जैन से सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, बारिश की बूंदें मौसम को सुहाना जरूर बनाती है, लेकिन कहीं जमा हुआ थोड़ा सा पानी मच्छरों के लिए पनाहगार बन सकता है। इसलिए सावधानी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बड़ा होता है। मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए उज्जैन शहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन लार्वा सर्वे अभियान चलाया गया। 15 सितंबर को मैदानी स्वास्थ्य अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में घर घर पहुंचकर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की जांच की। कूलर, पानी की टंकियों, गमलों, पुराने टायरों, डिब्बों और अन्य पात्रों में जमा पानी की जांच की गई। यहां पानी जमा मिला वहां उसे खाली करवाने और पात्रों की नियमित सफाई के लिए नागरिकों को समझाइश दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सप्ताह में कम एक दिन कूलर और पानी रखने वाले पात्रों को खाली कर साफ करने तथा पानी की टंकियों को ढककर रखने की अपील की है। बुखार आने पर समय पर चिकित्सीय जांच करवाने की सलाह भी दी गई है। तो याद रखिए, घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे तो मच्छरों को पनपने का मौका भी कम मिलेगा। स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन के इस संदेश के साथ अब सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, कभी कभी किसी की मदद करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपका थोड़ा सा समय और रक्त की कुछ बूंदें भी किसी ज़रूरतमंद के लिए जीवन की उम्मीद बन सकती है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर को उज्जैन जिले में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला चिकित्सालय, चरक भवन, मेडिकल कॉलेज सहित जिले के सभी सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। दुर्घटना में घायल लोगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों, गर्भवती महिलाओं, प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्त्राव वाले मामलों, थैलेसीमिया सहित कई जरूरतमंद मरीजों के उपचार में रक्त की आवश्यकता होती है। स्वस्थ एवं पात्र व्यक्ति निर्धारित स्वास्थ्य मानकों के अनुसार रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से पहले आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। तो अगर आप रक्तदान के लिए पात्र हैं तो सेवा संकल्प अभियान से जुड़कर मानव सेवा का संदेश दे सकते हैं। सेवा, संवेदना और इंसानियत की इसी भावना के साथ अब सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: त्योहार खुशियों के होते हैं, मेल मिलाप के होते हैं और एक दूसरे के साथ मुस्कुराने के होते हैं। इन्हीं खुशियों के बीच शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए उज्जैन पुलिस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आगामी त्योहारों को देखते हुए उज्जैन पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना महाकाल, जीवाजीगंज, माधवनगर और नानाखेड़ा थाना क्षेत्रों में पुलिस बल ने पैदल तथा वाहनों के माध्यम से प्रमुख मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया। फ्लैग मार्च में 300 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। पुलिस ने नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण

में मनाने की अपील की है। साथ ही नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया है। सुरक्षित शहर, शांत शहर और सौहार्द के से भरा शहर, यही हर त्यौहार की खूबसूरत तस्वीर है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ चलिए सुनते हैं सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अंतिम गीत।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0% व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0% MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
7: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
8: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
9: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5 करोड़ 20 लाख डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
10: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर 44 अरब

दोस्तों, एक दौर था जब किसी अपने तक दिल की बात पहुंचाने के लिए मोबाइल स्क्रीन नहीं बल्कि एक सादा सा कागज़ हुआ करता था। कागज़ के उस टुकड़े पर कलम चलती थी और शब्दों के साथ भावनाएं उतरती चली जाती थी। किसी को पहली बार अपने मन की बात कहनी हो, किसी को दूर बैठे अपने का हाल पूछना हो या किसी को बस इतना बताना हो कि तुम याद आते हो, तो ख़त ही सबसे खूबसूरत माध्यम हुआ करता था। खत लिखने वाला हर शब्द सोच कर लिखता था, क्योंकि उसे मालूम था कि सामने वाला इन्हीं शब्दों में उसकी आवाज़ तलाशेगा। लिफाफा बंद करते समय भी मन में एक अजीब सी धड़कन होती थी कि पता नहीं ये चिट्ठी कब पहुँचेगी और उसे पढ़कर सामने वाले के चेहरे पर कैसी मुस्कान आएगी। आइए उसी पहले खत, पहले एहसास और पहली दस्तक की याद के साथ सुनते हैं आज के उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का पहला गीत।

ख़तों की दुनिया में एक किरदार ऐसा भी था जिसका इंतज़ार पूरा मोहल्ला किया करता था, डाकिया। उसकी साइकिल की घंटी सुनते ही घर के दरवाजे खुल जाते थे और निगाहें उसके हाथ में मौजूद चिट्ठियों को तलाशने लगती थी। किसी के लिए वो बेटे की खबर लाता था, किसी के लिए मायके से संदेश, किसी के लिए नौकरी की सूचना और किसी के लिए उस खास इंसान का खत जिसका इंतज़ार सुबह से शाम तक रहता था। आज हमारे संदेश सैकड़ों में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय एक चिट्ठी के आने में कई दिन लगते थे, और इसलिए डाकिये की एक आवाज़ भी दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। वो सिर्फ कागज़ नहीं बांटता था, वो लोगों के बीच खबरें, रिश्ते, उम्मीदें और भावनाएं पहुंचाता था। तो चलिए उसी डाकिये की घंटी और उस दौर के इंतज़ार को याद करते हुए, और जब ख़त उनके हमारे दरवाजे तक पहुंचता था तो क्या खुशी होती।

श्रोताओं, हर खत प्रेम का नहीं होता। कुछ चिट्ठियाँ ऐसी होती है जिनका महत्व शब्दों से कहीं बड़ा होता है। सीमा पर तैनात जवान जब अपने घर खत लिखता था तो उसमें देश की जिम्मेदारी के साथ परिवार की चिंता भी होती थी। दूसरी ओर घर में बैठी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और भाई बहन डाकिये की राह देखते थे, क्योंकि उस चिट्ठी में उनके अपने की कुशलता का भरोसा छिपा होता था। कभी कुछ पंक्तियों में पूरा परिवार समा जाता था और कभी घर की छोटी सी बात भी दूर बैठे जवान के लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती थी। आज संचार के साधन बहुत तेज हैं, लेकिन उस दौर में चिट्ठियाँ ही दूरियों के बीच भरोसे का पुल थी। उन सभी परिवारों और जवानों की भावनाओं को याद करते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, प्रेम की कहानी हमेशा मुलाकातों से नहीं लिखी जाती, कभी कभी वो कुछ पन्नों पर भी लिखी जाती। उस दौर में किसी के नाम खत लिखना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव था। कागज सामने होता था, कलम हाथ में होती थी और मन में जाने कितनी बातें होती थी, लेकिन समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहाँ से करें। फिर धीरे धीरे शब्द उतरते थे, हाल पूछते हुए, याद करते हुए, शिकायत करते हुए और कभी किसी फूल की पंखुड़ी के साथ अपना मन भेजते हुए। वो खत कई बार बार पढ़ा जाता था, हर तहत रख के रखा जाता था और वर्षों बाद भी उसके अक्षर किसी पुराने एहसास की तरह दिल में उतर आते थे। आज के छोटे छोटे संदेशों के दौर में उस लंबे खत की खूबसूरती को चलिए याद करते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: खत लिखने की कहानी सिर्फ लिखने तक पूरी नहीं होती थी, असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती थी, जवाब के इंतजार की। आज किसी संदेश का उत्तर कुछ मिनटों में न मिले तो बेचैनी होने लगती है, लेकिन उस दौर में लोग कई कई दिनों तक इंतजार करते थे। डाकिया कब आएगा, दरवाजे पर उसकी आवाज़ कब सुनाई देगी, और शायद आज उसके हाथ में वही लिफाफा होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ दिन गुजरते थे। कभी चिट्ठी आती थी तो उसे खोलने से पहले ही मन खुश हो जाता था, और कभी कई दिनों तक कोई जवाब न आने पर चिंता भी सताने लगती थी। उस इंतज़ार में एक अजीब सी मिठास थी, क्योंकि हर बीतते दिन उस खत की अहमियत और बढ़ा देते थे। आइए आज उसी मीठे इंतज़ार को याद करते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, रिश्तों में रूठना तब भी था, शिकायतें तब भी थी और मनाना तब भी हुआ करता था, लेकिन किसी को मनाने के तरीके थोड़े अलग होते थे। आज एक संदेश में सॉरी लिखकर बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन उस दौर में नाराज इंसान तक पहुंचने के लिए कागज़ और कलम का सहारा लेना पड़ता था। खत में कभी अपनी सफाई दी जाती थी, कभी सामने वाले की शिकायत सुनी जाती थी और कभी बस कुछ ऐसे शब्द लिख दिए जाते थे जिनसे नाराज़गी थोड़ी कम हो जाए। सबसे खूबसूरत बात ये थी कि लिखते लिखते इंसान खुद भी अपने गुस्से से बाहर आने लगता था। शायद इसलिए पुराने खत रिश्तों को जोड़ने का काम भी करते थे। तो आइए रूठने मनाने, शिकायत और प्यार से भरी उस पुरानी दुनिया को याद करते हैं और सुनते हैं उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर खत भेजा जाए ये जरूरी नहीं होता, और हर भावना कह दी जाए ये भी जरूरी नहीं। कभी कोई व्यक्ति बैठ कर बहुत कुछ लिखता है, फिर उस कागज को मोड़ कर रख देता है। शायद शब्द बहुत निजी होते हैं, शायद सामने वाले तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं होती, या शायद समय और परिस्थितियां इजाज़त नहीं देती। ऐसे खत कभी किसी संदूक में, किसी किताब के पन्नों के बीच या किसी पुरानी डायरी में दबे रह जाते हैं। सालों बाद जब वही कागज़ हाथ लगता है तो अक्षर भले थोड़े धुंधले हो चुके हों, लेकिन उनसे जुड़ी यादें बिल्कुल साफ होती है। उस समय लगता है कि कागज़ पुराना हुआ है, भावना नहीं। आज की संगीत यात्रा में आइए उन अनकहे और अधूरे एहसासों को याद करते हुए सुनते हैं उज्जैनी RJ कार्यक्रम का अगला गीत।

और अब श्रोताओं, हमारी ये खतों वाली संगीत यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन सच कहें तो खतों का दौर सिर्फ कागज़ और स्याही का दौर नहीं था, वो ठहर कर महसूस करने का दौर था। किसी को याद करना हो तो वक्त निकाल कर लिखना पड़ता था, जवाब देना हो तो फिर से कलम उठानी पड़ती थी, और किसी की चिट्ठी संभाल कर रखनी हो तो उसके लिए भी दिल में एक ख़ास जगह बनानी पड़ती थी। आज तकनीक ने दूरियां जरूर कम कर दी हैं, लेकिन उन पुराने खतों की अपनी एक अलग दुनिया थी, जहां इंतज़ार था, उत्सुकता थी, शब्दों की गर्माहट थी और यादों को संभाल कर रखने की आदत थी। तो आइए इस सफ़र के आखिरी गीत के साथ उस पूरे दौर को सलाम करें, जब किसी के लिखे हुए कुछ शब्द बरसों बाद भी हमारे चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का उज्जैनी RJ कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी पर सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं और अब समय है संगीतमय कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

दोस्तों, प्यार की कहानी हमेशा किसी लंबे परिचय से शुरू हो ये ज़रूरी नहीं। कई बार किसी से पहली मुलाकात, पहली नज़र और बस एक पल की मुस्कान ही दिल में ऐसी हलचल पैदा करती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। पहली नज़र का वो आकर्षण, अनजाना सा खिंचाव और किसी अजनबी के अचानक खास बन जाने का एहसास, इन्हीं भावनाओं को खूबसूरत आवाज़ दी है आतिफ असलम ने। फिल्म रो रेस का ये गीत है प्रीतम की मधुर धुन के साथ प्रेम के उसी शुरुआती एहसास को सामने लाती है जब दिल शायद दिमाग से पहले किसी को अपना मानने लगता है। तो आइए महसूस करते हैं प्यार की उसी पहली दस्तक को इस गीत के साथ।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: कभी आपने गौर किया है कि जब कोई खास शख्स हमारी जिंदगी में आता है तो मन का व्यवहार ही बदल जाता है। बिना वजह मुस्कुराना, किसी को याद आते ही चेहरे पर चमक आ जाना और फिर खुद से ही सवाल करना कि आखिर ये दिल इतना बेचैन क्यों है। फिल्म काइट्स का ये गीत इसी भावनात्मक हलचल की कहानी कहता है। केके की आवाज़ में वो गहराई है जो दिल की उलझनों को बहुत सहज तरीके से श्रोताओं तक पहुंचाती है। राजेश रोशन की धुन इस गीत में रोमांस के साथ एक हल्की सी बेचैनी भी घोल देती है। तो आइए सुनते हैं दिल की उसी आवाज़ को जिसे शायद शब्दों में कहना मुश्किल हो।

दोस्तों, कुछ रिश्तों की शुरुआत का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। कोई व्यक्ति अचानक ज़िंदगी में आता है और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे उससे कोई पुराना रिश्ता हो। चलिए अगले गीत की ओर चलते हैं। इस एहसास को एक खूबसूरत नाम दिया गया है, राब्ता। फिल्म एजेंट विनोद का ये गीत प्रेम में मौजूद उस अदृश्य कड़ी की बात करता है जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। अरिजीत सिंह की आवाज़ इस गीत के भावों की गहराई को और अधिक गहरा कर देती है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, प्यार में सबसे खूबसूरत बात शायद यही होती है कि जब किसी ख़ास इंसान की खुशी अपनी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी लगने लगे, दूरी हो या मुश्किल हालात, दिल फिर भी उसी शख्स के करीब रहना चाहता हो। फिर में एयरलिफ्ट का ये गीत प्रेम के इसी समर्पित और गहरे एहसास को आवाज़ देता है। अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार और अमाल मलिक की आवाज़ों में सजा ये गीत रिश्ते की उस गर्माहट को सामने लाता है जिसमें साथ होने से ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरे का दिल में मौजूद रहना है। अमाल मलिक की धुन इस गीत की भावनाओं को सहज गति प्रदान करती है। तो आइए, दिल की उन भावनाओं के साथ, जिन्हें शायद शब्दों में पूरी तरह कहा भी नहीं जा सकता, इस गीत के माध्यम से सुनते हैं।

चलिए दोस्तों, बॉलीवुड बीट्स में अगले गीत की ओर चलते हैं। जिंदगी हमें कई तरह के अनुभवों से गुजारती है। कभी हम अपनी मंजिल के पीछे भागते हैं, कभी जिम्मेदारियां हमें व्यस्त रखती है, और कभी ऐसा लगता है कि भीतर की भावनाएं कहीं पीछे छूट गई है। लेकिन मन के किसी कोने में कुछ एहसास हमेशा जीवित रहते हैं, किसी अपने की याद, अधूरी इच्छा या जिंदगी को महसूस करने की एक छोटी सी चाह। फिल्म अग्निपथ का ये गीत इसी भीतर बचे हुए एहसासों को बहुत संवेदनशीलता के साथ सामने लाता है। सोनू निगम की आवाज़ इस गीत को गहराई देती है और अजय अतुल का संगीत भावनाओं को एक मजबूत आधार। तो आइए कुछ पल अपने भीतर झांकते हुए सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों आज के लिए बॉलीवुड बीट्स में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए गीतों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं, अब समय है कार्यक्रम उज्जैन दर्शन का। धाता

श्रोताओं, गणेशोत्सव के उल्लास में इन दिनों उज्जैन की गलियां, चौराहे और पंडाल गणपति बप्पा की भक्ति से जगमगा रहे हैं। कहीं आकर्षक विद्युत सज्जा है, कहीं फूलों से सजा दरबार, कहीं गणनायक का भव्य महाराजा स्वरूप भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। मुकुट से सुसज्जित मस्तक, राजसी वस्त्र, आभूषणों की आभा और चेहरे पर विराजित शांत मुस्कान मानो स्वयं मंगल मूर्ति किसी दिव्य राज दरबार में विराजकर भक्तों को दर्शन दे रहे हों। उनके सामने पहुंचते ही मन में श्रद्धा के साथ एक राजसी अनुभूति भी जागती है। उज्जैन के इसी गणेशोत्सवी वातावरण में महाराजा स्वरूप में विराजे गजानंद के दर्शन कराते हुए चलिए आज के इस कार्यक्रम में आपको उज्जैन के पांडालों में विराजित बप्पा के अनेक स्वरूपों के दर्शन करवाते हैं। और सबसे पहले सुनते हैं ये सुंदर सा भजन।

श्रोताओं, गणेशोत्सव की विशेषता ही यही है कि एक ही गजानन अलग अलग कल्पनाओं, कलाओं और आस्थाओं के रंग में भक्तों को प्रत्येक वर्ष दर्शन देते हैं। उज्जैन के एक पंडाल में गणपति का स्वरूप भगवान द्वारिकाधीश की भव्यता और वैभव से प्रेरित दिखाई दे रहा है। सुंदर मुकुट, मनोहारी श्रृंगार, राजसी आभूषण और दिव्य आसन पर विराजे गजानन का ये रूप श्री कृष्ण भक्ति की सौंदर्य परंपरा और गणेश आराधना का अद्भुत संगम प्रतीत होता है। पांडाल में पहुंचते ही ऐसा अनुभव होता है जैसे भक्ति के दो सुंदर भाव एक ही स्थान पर आकर मिल गए हों। इस अनोखी और मनोहारी द्वारिकाधीश स्वरूप में विराजी गजानन की ये मूर्ति, जिसका दर्शन करते हुए मन प्रफुल्लित हो उठता है, आइए आज के कार्यक्रम के अगले भजन की ओर बढ़ते हैं।

श्रोताओं, शहर में अन्य भी गजानन की अलग अलग स्वरूपों में मूर्तियां स्थापित है। प्रत्येक दिवस सुबह और शाम यहाँ पर बप्पा की आरतियाँ होती है, जिसमें शहर भर से हजारों श्रद्धालु रोजाना अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करने निकलते हैं। उज्जैन की पहचान उसकी धार्मिक परंपराओं और सिंहस्थ जैसे विराट आध्यात्मिक आयोजनों से भी है। इस गणेशोत्सव में शहर के एक पांडाल में सिंहस्थ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छटा को गणपति के स्वरूप के साथ जोड़ा गया है। दिव्य प्रतिमा के आसपास साधु संतों की परंपरा, आस्था के विविध रंग और सिंहस्थ की भव्यता का भाव दिखाई देता है। गजानन का यह स्वरूप केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि उज्जैन की धार्मिक पहचान और आने वाले सिंहस्थ की स्मृति को अभिव्यक्त करने वाली सुंदर कल्पना जैसा प्रतीत होता है। गणपति की उपस्थिति में सिंहस्थ की आध्यात्मिक ऊर्जा और उज्जैन की आस्था का ये संगम श्रद्धालुओं को विशेष आकर्षित कर रहा है। आइए इसी दिव्य भाव के साथ सुनते हैं अगला भजन।

श्रोताओं, गणपति उत्सव के पांडालों में कहीं गजानन अकेले विराजे हैं तो कहीं उनका स्वरूप परिवार और समृद्धि के प्रतीकों के साथ सजाया गया है। ऐसे ही एक मनोहारी स्वरूप में भगवान गणेश के साथ रिद्धि और सिद्धि विराजमान है। मध्य में विघ्नहर्ता का दिव्य स्वरूप और दोनों ओर रिद्धि सिद्धि की उपस्थिति मानव जीवन में ज्ञान, समृद्धि और शुभता के संतुलन का संदेश देती है। सुंदर श्रृंगार, पुष्पों की सजावट और दीपों की रोशनी इस पूरे दृश्य को और आकर्षक बना देती है। पांडाल में पहुंचने वाला हर श्रद्धालु इस मूर्ति के सामने कुछ पल ठहरकर मंगल, सुख और समृद्धि की कामना करता दिखाई दे रहा है। आइए रिद्धि सिद्धि सहित विराजे मंगल मूर्ति को नमन करते हुए सुनते हैं आज के उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: श्रोताओं, आज के उज्जैन दर्शन कार्यक्रम में आपने शहर में सजी हुई विभिन्न झांकियों में विराजित बप्पा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन इस संगीतमय यात्रा के साथ किए। निश्चित रूप से परिवार के साथ आप भी स्वयं शाम को जाकर के बप्पा की आरतियां कीजिए, विभिन्न स्वरूपों के दर्शन कीजिए और श्रद्धा से शीश नवाइए। आज के लिए उज्जैन दर्शन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी शहर की आध्यात्मिक जानकारी के साथ, धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं और अब समय है महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा का।

0: Hello, namaskar, and very good morning to all my energetic superwomen. 102.5 FM and news on AIR mobile application पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन का अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा। सुपरवुमन आप इसलिए हैं कि हरतालिका तीज का त्योहार मनाया, गणपति बप्पा मोरिया की धूम मचाई और फिर किया सत्कार ऋषियों का ऋषि पंचमी पर। बैक टू बैक त्योहार पूजा के बाद भी आपकी एनर्जी में कमी नहीं है एंड दैट्स व्हाई यू आर सुपरवुमन। तो चलिए सुपरवुमन आपको मिलवाती हूँ चिंटू से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चिंटू कौन है। तो चिंटू है मेरे नेबरहुड में रहने वाला एक छोटा बच्चा। आज हुआ यूं कि उसके पेट में दर्द था तो उसकी मम्मा ने कहा स्कूल मत जाओ, पर पापा ने कहा ये तो सब इसका नाटक है, बहाने हैं स्कूल ना जाने के, स्कूल तो जाना पड़ेगा। और इस पर पापा मम्मी का हुआ झगड़ा और चिंटू आ गया मेरे साथ प्रोग्राम में। चिंटू से हेलो।
1: हेलो आंटी, आपको पता है मेरे पापा मम्मी हमेशा ऐसा ही करते हैं, मम्मा अलग बात कहती है और पापा अलग बात कहते हैं और इसीलिए मैं कभी कभी दोनों को अवॉइड ही करता हूँ, दोनों की ही नहीं सुनता।
0: देखा आपने, छोटा सा बच्चा क्या करे और क्या ना करे, उसके मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ा है, देखा ना आपने। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है कि आप कहती हैं चॉकलेट मत खाओ और आपके हस्बैंड कहते हैं खाने दो। सखियों, इससे यह मैसेज जाता है कि पापा अच्छे हैं और मम्मा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कई बार आप ऐसा भी कहती होंगी आने दो पापा को, वही डांट लगाएंगे। और जब डांट नहीं पड़ती है तो बच्चा हमेशा पापा का सहारा लेना सीख जाता है। अगर सखियों पेरेंट्स में से एक हर बात पर रोक लगाता है और दूसरा हर बात की अनुमति देता है तो भाई मामला गड़बड़ है। बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं से तो मंजूरी मिल ही जाएगी। तो सखियों एक मत होना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि एक जैसा रवैया बच्चे को मेंटल स्टेबिलिटी देता है और उसे नियमों की यूनिफॉर्मिटी समझ में आती है। परवरिश में मुकाबला कैसा, मुकाबला नहीं करना है, पार्टनरशिप करनी है और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स के विचार एक नहीं हो तो बिल्कुल परेशान मत होइए। क्या करना है वो हम आपको बताएंगे इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो हियर द सॉन्ग फॉर यू फ्रॉम द मूवी ऐतराज़।

0: जिन सखियों ने देरी से ट्यून किया है उन्हें हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं परवरिश कोई मुकाबला नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। और सखियों हम गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि विचार पेरेंट्स का एकमत होना चाहिए और नहीं है तो क्या कर सकते हैं। वेरी सिंपल, बच्चे के सामने हमें बहस नहीं करना है, अकेले में चर्चा करें। और बच्चे के लिए कुछ सामान्य से नियम पहले से ही आप तय कर दें कि स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, कितनी देर बच्चा मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा, घर का खाना ही खाना है, कभी कभार आप आउटिंग के लिए जा सकते हैं, कब जा सकते हैं ये आप फिक्स करें। सोने और उठने के भी जो टाइम है उनका भी एक नियम बनाएं। और दोनों तरफ से एक जैसे नियम होंगे तो बच्चा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा जैसा कि अभी चिंटू हुआ था। और ऐसा कभी ना करें कि एक पेरेंट ने बच्चे की अगर गलती पर सजा दी है और तुरंत बाद दूसरा पेरेंट उसे लाड़ लड़ा दे, ऐसा नहीं करना है सखियों। परवरिश में कौन सही है से ज्यादा जरूरी है कि बच्चे के लिए क्या सही है। माँ यह साबित ना करने में लगी रहे कि वह बच्चे को पिता से ज्यादा समझती है, और ना ही पिता यह साबित करें कि अनुशासन केवल वही सिखा सकते हैं। तो सखियों मतभेद हो ये नेचुरल है, सब घर में ऐसा होता है, लेकिन मनभेद को बालक की परवरिश का हिस्सा नहीं बनने देना है, ये हमें अश्योर करना है। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें बच्चे के सामने, तभी बच्चा दोनों को इक्वल वेटेज देगा और आप दोनों की रिस्पेक्ट करते हुए समाज में एक बेहतर इंसान बनेगा। तो सखियों अभी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है वो हम आपको बताते हैं।
1: सखियों आज है वर्ल्ड ओजोन डे, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवी भसीन मैम, जो कि जूलॉजी प्रोफेसर हैं और मैडम ने एनवायरमेंटल स्टडीज पर भी कई सारी रिसर्च की हैं। मैडम स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैडम जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आज वर्ल्ड ओजोन डे है, तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ओजोन आखिर है क्या।
2: ओजोन एक्चुअली एक ऐसी लेयर है जो धरती को प्रोटेक्ट करती है, कई सूर्य की हार्मफुल किरणों से प्रोटेक्ट करती है ये। अगर मैं टेक्निकली बताऊं, साइंटिफिकली बताऊं, तो ओजोन क्या है, O3 एक गैस कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है
1: जी।
2: और इसका जो मुख्य काम है वो एक परत की तरह काम करता है, जो कि सूर्य से कई प्रकार की किरणें निकलती हैं, जैसे IR रेडिएशन होती है, विजिबल लाइट होती है, उसमें सबसे हार्मफुल वाली होती है यूवी रेडिएशन। अगर वो यूवी रेडिएशन धरती तक पहुंचेगी तो धरती में जो भी जीव जंतु हैं उनको काफी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगी। तो ये किरणें डायरेक्टली धरती तक ना पहुंचे ये देखने का काम ओजोन लेयर करती है। एक्चुअली यदि हम हमारे एटमॉस्फेयर को देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो सबसे पास की धरती से लेयर होती है वो ट्रोपोस्फीयर होती है, उसके ऊपर जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर होती है। ओजोन बेसिकली जो गुड ओजोन जिसको हम बोलते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, जो कि 0 से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर होता है और 18 किलोमीटर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो वहां पर जो ओजोन मिलती है वो गुड ओजोन होती है, और ट्रोपोस्फीयर में बैड ओजोन या पोल्यूशन से जनरेट होने वाली ओजोन मिलती है। तो जो गुड ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और हमारी धरती को हार्मफुल सूर्य की हार्मफुल किरणों से प्रोटेक्ट करती है।
1: जी मैम, जैसा कि हम कह रहे हैं शुरुआत से ही कि वर्ल्ड ओजोन डे है, तो ये डे मनाने का उद्देश्य क्या है।
2: ये डे बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि लोगों में जागरूकता लाई जा सके और आम जनमानस को बताया जा सके कि जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ फ्रिज इस्तेमाल हो रहे हैं, AC इस्तेमाल हो रहे हैं, इन सब से जो गैसेस रिलीज होती है वो कहीं ना कहीं हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचा रही है। तो ये डे बनाकर भारत सरकार और वर्ल्ड का जो पूरा एक फोरम है वो एक मैसेज देना चाहता है लोगों को कि लोग अब अवेयर हो जाए, वरना अगर इस ओजोन का छेद बढ़ता गया तो हमारी पूरी धरती के वातावरण को नष्ट कर देगा। और ओजोन डे जो है वो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड ओजोन डे है, तो इसका इस ओजोन डे को बनाने का सबसे अच्छा हमारी तरफ से जो गिफ्ट होगा वो प्रकृति के लिए यही होगा कि हम इन सब चीजों का जो इसको नुकसान पहुंचा रही है इसके यूज को कम से कम करें
1: जी। अभी आपने एक होल की बात की है, उसके बारे में मैम थोड़ा सा और हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: ओजोन होल एक्चुअली वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर धरती को, इस पूरी धरती को ओजोन की परत ने ढक रखा है
1: जी।
2: इस परत में कहीं कहीं छेद हो रहे हैं। हम जो रेफ्रिजरेटर्स और फ्रिजेस वगैरह, फ्रिज और ये जो एसी वगैरह यूज करते हैं, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, इससे हेलोन्स नाम की गैसेस रिलीज होती है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म रिलीज होता है, मिथाइल ब्रोमाइड रिलीज होता है। ये सब गैसेस जो है ये वातावरण को, ये ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है, उसकी परत में कहीं कहीं छेद ला रही हैं, तो उस छेद को ओजोन होल कहते हैं। ये अंटार्कटिका में बहुत क्लियरली देखा गया, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ रीजन हैं जहां पर ये देखा गया है, और अभी हाल में कुछ साइंटिस्ट जो ओजोन पे काम कर रहे थे उससे ये भी पता पड़ा कि ये ओजोन लेयर जो होती है ये वायुमंडल में स्थिर नहीं होती, ये मूव करती रहती है, और इसका जो मूवमेंट है वो क्लाइमेटिक चेंजेस भी कॉज करता है। अभी ओडिशा में जो बारिश आ रही थी वो भी कुछ इसी से जुड़ी हुई है। तो ओजोन होल होना धरती के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, इसमें हमें भूमिका निभानी पड़ेगी ताकि इसको कम से कम किया जा सके।
1: जी मैम, मैम आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होने का मुख्य कारण क्या है।
2: ओजोन लेयर डिप्लीट होने के वैसे जो मुख्य कारण है उनमें से एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिलीज होना, जो कि ये एसी और रेफ्रिजरेटर इनसे हाँ, होते हैं। इसके अलावा हेलोन्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब गैसेस इसको हर्ट करती है। सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हर्ट करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाके स्ट्रेटोस्फीयर में टूट जाता है और क्लोरीन रिलीज करता है जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। तो अब इसमें होगा ये कि यदि ओजोन डिस्ट्रॉय होती तो जो यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्टली धरती तक पहुंचेगी। इससे इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि ये डायरेक्टली हमको ह्यूमन बीइंग को और एक्वेटिक जो फ्लोरा एंड फौना है उनको स्किन प्रॉब्लम्स और स्किन कैंसर भी कॉज कर सकता है ये। और उसके अलावा ये इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र जो है धरती का उसको प्रभावित करेगा, प्लस ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो है हमारी धरती की उसको प्रभावित करेगा। जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो, हमारी समुद्र में रहने वाले हो, नदियों में रहने वाले हो, या धरती पर रहने वाले, थल पर रहने वाले, उन सबको ये प्रभावित करेगा और कोई ना कोई बीमारी उनमें कॉज करेगा, स्पेशली स्किन की। और इसीलिए ये जरूरी है कि ये जो किरणें हैं ये डायरेक्टली पहुंचे नहीं हम तक, उसके लिए ओजोन का रहना बहुत जरूरी है।
1: तो मैम हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे इसको बचाया जा सकता है, क्योंकि जैसे एसी हुआ, रेफ्रिजरेटर है, ये तो हम लोग अब हमारी जीवन शैली में ही आ गए हैं, या कूलिंग सिस्टम्स जो हैं, तो हम कि हमारी तरफ से क्या प्रयास होगा जिससे हम इसे बचा सकते हैं।
2: ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा, क्योंकि जिस प्रकार से ये महिलाओं का शो है और महिलाएं ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर्स होती हैं घर गृहस्थी चलाने में, और जैसे आपने बोला कि ये चीजें हमारी जीवन शैली बन गई हैं, डेवलपिंग नेशन की पहचान भी हैं, अब इसे हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी रेगुलर चेकिंग कराएं और ये देखें कि ज्यादा एमिशन या ज्यादा पोल्यूशन इससे तो नहीं क्रिएट हो रहा। अगर ज्यादा हो रहा हो, ये बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो हम उसको तुरंत रिप्लेस कर दें। और बहुत जरूरी है कि हम जागरूकता फैलाएं लोगों में, आम जनमानस को ये बताते रहें, ताकि इन चीजों का उपयोग केवल तब किया जाए जबकि बहुत जरूरी है, और जहां इनको अवॉइड किया जा सकता है वहां अवॉइड करने के लिए भी कोशिशें की जाए। कई संस्थाओं में, जैसे मैं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से हूं, हमारे विश्वविद्यालय में जब भी एनवायरमेंट डे होता है, कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, तो लाइट्स अर्थ डे पे लाइट बंद करी जाती है एक दिन के लिए, भले ही छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन हम एक भी दिन के लिए ऐसा कुछ करते हैं तो वो एक पूरा नेशन जब मिलके वो एक एक दिन भी करेगा तो वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। और महिलाएं अगर इसके लिए अवेयर होंगी तो महिला ही पूरे घर को चलाती है, तो महिला बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगी और इसको ओजोन के डिप्लीशन को रोकने में अपनी भूमिका भी फैला पाएंगी। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी यही देखना है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं ज्यादा पुराने तो नहीं, ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और यदि ऐसा है तो हम उनको तुरंत रिप्लेस करें।
1: जी मैम, और आप हमारे अंत में हमारे जो श्रोताएं हैं महिला हैं उनको और कोई संदेश देना चाहती हैं?
2: मैं बस उनको यही बोलना चाहूंगी कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट, धरती, पृथ्वी, जल, आकाश, ये सब बुनियादी तत्व हैं, और धरती तो माँ के समान होती है, इसी धरती ने हमें जन्म दिया है तो ये माँ के समान है। तो यदि हम अपनी जड़ से माँ से नहीं जुड़े होंगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जो कुछ भी करें वो ऐसा करें कि इस सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी कि इस पर्यावरण को हम संरक्षित कर सके। और इन बातों से अगर हम 0.1 लोगों के मन में भी कुछ अवेयरनेस डाल पाए तो हम अपने आप को इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। आप सभी का आकाशवाणी का सबका धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: सखियों, अभी हमने बातचीत की डॉक्टर शिवी भसीन मैम से, तो हमें आशा है कि आप पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य योगदान देते हुए स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो अब वक्त हो चला है एक गाने का, तो ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में।

सखियों, हम सभी के घरों में गणपति जी विराजमान हैं और हमें रोज उन्हें भोग लगाना पड़ता है, तो हम आज आपके लिए एक रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट और इजी रेसिपी है। तो आप उनके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हमें लेना है 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1 कप दूध और आधा कप दूध पाउडर या मावा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आधा कप चीनी लेना है स्वाद अनुसार और थोड़े से कटे हुए काजू बादाम हमें लेने हैं। अब हमें करना क्या है, कढ़ाई में नारियल और दूध डालकर धीमी आंच में चलाएं और दूध जब सूखने लगे तो दूध पाउडर या मावा, जो भी आप ले रहे हैं, उसे मिक्स करें और फिर इसमें चीनी ऐड करें और इसको लगातार चलाते हुए मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि वो पैन ना छोड़ दे। और फिर इसमें आपको मिलाना है इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालकर आप गैस ऑफ कर दें और जब ये जो मिश्रण है वो ठंडा हो जाए तो उसके छोटे छोटे से आप लड्डू बनाएं और सूखा खोपरा एक अलग से प्लेट में लें और उसमें लपेट कर थाली में सजा कर गणपति बप्पा को भोग लगाएं और बाद में पूरी आस्था के साथ प्रसाद ग्रहण करें।

सखियों, यदि आप भी अपनी कोई रेसिपी शेयर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर विषय पर आपसे बात करें, चर्चा करें, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक, कार्यक्रम महिला सभा, विद्यापति नगर, नाना खेड़ा, आकाशवाणी उज्जैन, 456010 हमारा पिन कोड है। अब आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो फ्रेंड प्रियंका को। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। गणपति बाप्पा मोरिया।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। अब हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित होगा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जानी मानी भजन गायिका एम एस सुब्बालक्ष्मी का जन्मदिन है। हम उन्हीं की याद में ये भजन आपको सुनवा रहे हैं।

एमएस सुबालक्ष्मी की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना। और आइए एक बार फिर इसी आवाज को सुनते हैं। ये भक्ति पद भी संत मीराबाई का ही है।

महान भजन गायिका एमएस सुब्बालक्ष्मी के जन्मदिन पर हमने उन्हें इस कार्यक्रम में भजन के जरिए आज याद किया। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और गैर फिल्मी गीत, स्वर जावेद अली का। गीतकार और संगीतकार हैं सुहित अभ्यंकर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश आवाजें मुबारक बेगम, जानी बाबू कव्वाल और उनकी हमनवा की, और ये अजीज गाजी की लिखी कव्वाली है। संगीत विपिन और महबूब का है।

और आइए अब सुनते हैं पापोन की आवाज। इसे श्वेता बोथरा ने लिखा है और धुन बनाई है पुनीत दीक्षित ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में रोशन नादान का ये कलाम।

चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार का लिखा ये पारंपरिक गीत, आवाजें मीका सिंह, यो यो हनी सिंह और साथियों की।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गड्ढे
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आपने ये भक्ति पद सुना। आइए लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये नानक का शब्द। संगीत दिया है सिंह बंधु ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद मेहदी हसन का गाया ये राजस्थानी लोकगीत मांडगायकी के रूप में।

केसरिया बालम पधारो मारे देश, राजस्थान की जबान है ये केसरिया, महबूब से मुखातिब है।

सूरज से मैंने समाज होने के तो सूरज तुम्हें मैं पूजूंगी, भर मोतीरारो थाल, मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी। किस लिए?

0: गया।
1: केसरिया बालम आहो ने पधारो मारे देश, अभी आपने उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी लोकगीत सुना। और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार के लिखे बोल, गाने वाले कलाकार भूपेंद्र भूपेन हजारिका, नितिन मुकेश और साथी।

0: इस गैर फिल्मी रचना को संगीत दिया है भूपेन हजारिका ने।
1: बवराता आया।

0: इस गैर फिल्मी रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।

0: चार दिल्ली।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से तीन दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम गीतकार प्रसून जोशी के लिखे कुछ गीत लेकर आए हैं। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे संगीतकार राम लक्ष्मण को भी। तो पहले सुनते हैं राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में ये गीत।

फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। आवाजें एसपी बालासुब्रमण्यम और साथियों की। गीत को देव कोहली ने लिखा है।

कार्यक्रम में आप सुनिए राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा गीत, स्वर लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं राम लक्ष्मण का संगीत, नूर कसकार का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की, फिल्म का नाम महबूब मेरे महबूब।

अभी आपने राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में पत्थर के फूल फिल्म का ये दो गाना सुना। स्वर लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम के थे। इससे पहले आप सुन रहे थे फिल्म सातवां आसमान का गीत। गाने वाले कलाकार थे प्रीति उत्तम और उदित नारायण। सूरज सनीम के बोल थे और राम लक्ष्मण की धुन।

0: राम लक्ष्मण की संगीत निर्देशन में रविंद्र रावल का लिखा गीत आपने सपना अवस्थी का गाया हुआ सुना। फिल्म का नाम था दुल्हन बनू मैं तेरी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
7: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
6: क्या बात है।
7: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
6: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
7: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
6: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत, और अब सुनते हैं गीतकार प्रसून जोशी की गीत रचनाएं। फिल्म का नाम है दिल्ली सिक्स, आवाजें रेखा भारद्वाज और साथियों की प्रसून जोशी के बोल ए आर रहमान की धुन।

कार्यक्रम में आप सुनिए जतिन ललित का संगीत, प्रसून जोशी के बोल, शान और कैलाश खेर की आवाजें। फिल्म का नाम है फना।

कार्यक्रम का अगला गीत A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का ही लिखा हुआ स्वर है बेनी दयाल श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम है गजनी।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम तुम का युगल गान, आवाजें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की, गीत प्रसून जोशी का और धुन जतिन ललित की।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है और आज निकलेंगे ऐसे सफर पर जहां कुछ उबड़ खाबड़ बेतुके रास्ते होंगे। हाँ, कुछ ऐसे गीत हमारे साथ होंगे जहां शब्दों का अर्थ कुछ निकले या ना निकले ये जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन ये जो गीत होंगे हमारे साथ ये मिठास घोल देने वाले गीत होंगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम किसी रास्ते पर निकल तो जाते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर हमें करना पड़ता है, लेकिन कई बार बड़ा मजा आता है। बस ऐसे ही आज के इस सफर में कुछ ऐसे ही गीत हम लेकर आए हैं जो अर्थहीन लगते हैं उस गीत में प्रयुक्त होने वाले शब्द या वाक्य, लेकिन यही शब्द धुन में ऐसी मिठास घोल देते हैं कि वही शब्द या यूं कहें कि बेतुके शब्द उस गीत की पहचान बन गए हैं। तो आज के सुरीला सफर में उन्हीं बेतुके और निरर्थक बोलों वाले गीतों का हम जिक्र करने वाले हैं जो अर्थ से नहीं अपनी धुन और अंदाज से हमारा दिल जीत कर ले गए हैं। हाँ, और आज भी हम इन गीतों को याद कर मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराते हैं ना, कभी कभी तो हम हंस भी देते हैं। अब देखिए ना, हमने अपनी इबारत लिखी और उसके साथ ही लिखा ये लिखा कि आज आप ही सोचिए कौन से होंगे वो गीत, और हमारे श्रोताओं ने इतने सारे गीतों का जिक्र कर दिया कि हम भी पीछे रह गए। चलिए आज की इबारत पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए, खास तौर से जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर आप हमारे फेसबुक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो www.facebook.com/vbsmovie पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज की इबारत या यूं कहें आज का जो टेक्स्ट है वो ये है कि संगीत की दुनिया भी बड़ी निराली है, यहाँ कुछ गीत बहुत अर्थवान मिलते हैं तो कभी कभी कुछ गड़े हुए अटपटे या निरर्थक से शब्द भी धुन के साथ मिलकर ऐसा जादू रच देते हैं कि गीत सुनने वाले बरसों बाद भी उन्हें भूल नहीं पाते। कभी कभी गीतों के आरंभ में, मध्य में या पूरे ही गीत के बोल सुनकर लगता है कि अरे ये क्या लिख दिया गीतकार ने। शब्दों का कोई सीधा साधा अर्थ नहीं होता, वाक्य का कोई सिर पैर नहीं होता, फिर भी वही बोल हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं और धुन दिल में उतर जाती है। तो चलिए आज आनंद लेते हैं उन गीतों का जिनके कुछ शब्द या बोल शायद शब्दकोश में ना मिले लेकिन उनकी धुन और अंदाज सीधे हमारे दिल तक पहुंच जाते हैं। तो आज सुरीला सफर में ऐसे ही बेतुके, अटपटे और निरर्थक शब्दों या वाक्य वाले गीतों का मजेदार सफर रहेगा जहां शब्द या वाक्य भले ही बेअर्थ लगते हों लेकिन धुन पूरी तरह असरदार है। तो हमने लिखा था कि आप भी याद कीजिए ऐसे कौन से गीत हैं जिनके शब्दों का या वाक्य का मतलब आज तक समझ में तो नहीं आया, फिर भी उस गाने को सुनते ही हमारा मन झूम उठता है। तो हमारे श्रोताओं ने तो बहुत सारे गीतों का जिक्र भी कर दिया है। अब देखते हैं आपकी पसंद और हमारी पसंद कितना मेल खाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: जी हाँ, लारा लप्पा लाई लपदा, आदी टप्पा लाई लपदा, कितना खूबसूरत। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ हमने की, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका कोई सीधा साधा अर्थ तो नहीं होता, लेकिन उनकी लय और अदायगी सुनते ही मन झूम उठता है। जैसे कि अभी आपने इस चटपटे और मस्ती भरे गीत को सुना लारा लप्पा के रूप में। फिल्म का नाम था एक थी लड़की, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, जीएम दुर्रानी और साथियों की थी। गीतकार थे अजीज कश्मीरी, हाँ, और संगीत दिया था विनोद ने। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत की खूबसूरती यही है कि उसे समझने के लिए हर शब्द का अर्थ जानना जरूरी नहीं। कभी कोई अटपटा सा शब्द, कोई अनोखी ध्वनि या अर्थहीन सी पंक्ति भी लय और सुरों के साथ मिलकर मन में उत्साह, शरारत और आनंद भर देती है। जहां शब्द शायद शब्दकोश में न मिले, मगर उनकी धुन सीधे दिल तक पहुंचती है। आखिर गीत केवल अर्थ से नहीं बनता, वो सुर, लय, आवाज और एहसास से मिलकर यादगार बन जाता है। बस अब अर्थ के पीछे न भागें, धुन को महसूस करें और उन गीतों के साथ झूमें जिनके बोल भले ही अटपटे लगते हों। आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है, हो सकता है ये गाना हमारी प्लेलिस्ट में भी हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में उकेरे भाव वाले गाने कुछ अटपटे, विचित्र, निरर्थक स्वीकारोक्ति का, स्वरोक्ति का निरूपण करता दिख रहा है। संगीत शब्दों से परे ध्वनियों का एक संसार है। जब शब्द अर्थहीन भी होते हैं, तब भी स्वर और ताल का संयोजन सीधे हमारे मन को छूता है। संगीत की कोई भाषा नहीं, लेकिन भावानुवाद होता है, और इसी को उजागर करते हैं आज के कुछ गीत। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, और यकीनन इन गीतों में से हमने भी कुछ गीत अपनी लिस्ट में रखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने कितनी दफा इन अटपटे चटपटे गीतों को सुना है, और इन गीतों की जुबा में ढले बोलों को, रेशमी छुअन को आज भी बरकरार रखा हुआ है। क्या हुआ अगर अटपटे बोल हैं, तो क्या हुआ अगर उन बोलों का अर्थ समझ में नहीं आया। इन गीतों के रचयिता और मीठी धुन में पिरोने वाले संगीतकार तो हमारे हृदय तल में आज भी बसे हैं ना। इन गीतों में राग रागिनियों का रस तो भाव भरा है। सुर और शब्द की परस्परता में प्रेम, करुणा और संवेदना के मानवीय मूल्यों की गहरी उपस्थिति हमें जोड़ देती है और ले जाती है हमें उस मोहक संसार में जहां बस संगीत का रसायन फिजा में दूर दूर तक घुला हुआ है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और जैसा कि हमने कहा कि शब्द भले ही निराले हों, मगर धुन ऐसी कि सुनने वाला अपने आप गुनगुनाने लगता है कुछ गीत। और आज के सुरीला सफर में तो हमने इन्हीं शब्दों की शरारत का आनंद भी लेना है। हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दो आंखें बारह हाथ का ये गीत, बहुत ही मस्ती भरा अंदाज।
1: आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बनके मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना, तक तक धुम धुम, तक तक धुम धुम, तक तक धुम धुम।
0: जी हाँ, पूरे गीत में तक तक धुम धुम, तक तक धुम धुम सुनेंगे आप।

0: जाओगे?
1: ना, तो क्या करोगे?
2: जी हाँ, इस गीत को सुनने के बाद तो हमारे पैर भी थिरकने लगे। आपके भी थिरक रहे थे? बताइएगा मुझे कि कैसा लगा ये गीत सुनकर आपको। हमारे श्रोता का लिखना है कि सुरीला सफर का आज का विषय बहुत ही मजेदार है। सच में संगीत का जादू ही ऐसा है कि कभी कभी बेतुके और अटपटे शब्द भी धुन के साथ ऐसे घुल जाते हैं कि बरसों तक हमारी जुबान पर रहते हैं। उन्होंने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और लिखते हैं कि इन गानों के शब्दों का कोई मतलब भले ही समझ न आए, पर इनकी मस्ती और धुन सीधे दिल में उतर जाती है और सुनते ही मन झूम उठता है, जैसे कि अभी हम झूम उठे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को सुरीला संगीत के साथ साथ अर्थहीन शब्दों वाले गीतों से सजाया गया है। ऐसे ही इस कार्यक्रम में नयापन हो तो कार्यक्रम की प्रतीक्षा बढ़ जाती है, वरना इस कार्यक्रम में कुछ भी नयापन नजर नहीं आता। तो इसके लिए आप धन्यवाद देते हैं हमें। कुछ अनोखे और जिसका कोई अर्थ ही ना हो, ऐसे गीतों से साझा आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आएगा। और आपने भी लारा लप्पा गाने का जिक्र यहाँ पर किया, जो कि हमने आपको सुनवा भी दिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़े ही मजेदार शब्दों का गड़बड़ झाला लेकर आप आ रही हैं। ये वो शब्द होंगे जिनको हमने बहुत बार सुना है और हमारी जुबान पर चढ़ भी गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये गीत तो हमारे गीतकारों ने लिखे हैं और हमें तो उन्होंने झूमने पर मजबूर कर दिया है ना। एक श्रोता का लिखना है कि आज का सुरीला सफर मेरे ट्रेन के सफर के साथ साथ चलेगा। आज के कार्यक्रम का लुत्फ सफर में ही उठाएंगे। क्या बात है, तो आपका सफर बहुत ही मंगलदायी हो, है ना, मंगलमय हो, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम आपके इसी सफर में। और आज के दो सवाल अब हम आपसे पूछना चाहेंगे। वही कार्यक्रम से जुड़े सवाल ही हैं कि ऐसा कौन सा गीत है जिनके बोलों का स्पष्ट अर्थ तो नहीं है, लेकिन वो अजीब सा जो शब्द है आपको आज भी याद है। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो त्रिदेव फिल्म का गाना है ना, ओए ओए ओए ओ वाह, ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है। ये जो कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरह से गाया जाता है, अमित कुमार साहब गाते हैं, तो ये गाना जो शुरू होता है तो एक अलग ही रिदम महसूस होती है। और तो आपको भी बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द आपको पसंद आता है या आया किसी एक गाने का जिक्र बस। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपको किसी एक गीत की वो पंक्ति जो बेतुकी या निरर्थक जिसे हम मानते हैं, कौन सी है जो आपको सबसे मजेदार लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं। और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि गीतकारों ने ऐसे गीत लिख दिए हैं जिनका कोई मतलब ढूंढने बैठे तो शायद उलझ ही जाएगा, लेकिन सुनते ही वो गाना चेहरे पर हमारी मुस्कान जरूर आ जाती है। तो ऐसे ही शब्दों की मस्ती है इस गीत में, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है कहते हैं मुझको राजा। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele bam bam ma kuk bam bam ma kuk bam bam ma kuk bam bam ma kuk dil haku pagu jaan haku pagu jaan haku pagu dil haku pagu ram ram jiya ram salam walekum pyar karo chup chup chup priya chup chup thand thand phut phut phut phut phut phut thand thand phut phut how do you do bam chik chik cham chik chik bam chik chik cham chik chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम चिक बम बम हे बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बाबा लोग सुनो काका लोग सुनो दादा लोग सुनो जल्दी जल्दी देखिए आले बादशाह ना दे कुड़िए ए पुत्रा देख भाई इधर आ खाली है पिंजरा ए देख भाई इधर आ अरे खाली है पिंजरा पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर यही परिचय है राजधानी का फूल मसाल जवानी दीवानी का

बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम चिक बम बम ठप ठप ले ले बुचट कक कक ठप ठप ले ले बुचट कक कक फट फट ले धोबी फट खट फट फट ले धोबी फट खट ले बुचट का धोबी फट का दिल सटका सदा

0: जरा हटके चल वे दिखा दे प्यारे लटके, यहीं से दिखेगा अलमत्ता, दिल्ली बम्बई कलकत्ता, हरे रामा कृष्णा प्यार की कहानी, चाहे देखो तो चोर चाहे काला पानी, कल आज और कल 20 साल पहले, एक से एक नहले पे दहले, एक से एक नहले पे दहले, बैकुम बैकुम तारा तुड़ी जो दुमा का चोशुर बारी रेल कॉम जोमा जोम पा बिजे आलो दम कांद की भाजी हाय मुल्ला कादी रसून की चटनी हाय कटनी का पटरा मुंशी मुंडका हक्का पक्का हुजूर अगदाज दिमागे फुरकत हुजूर अगदाज दिमागे फुरकत कमाले हलकत चल हट नट खट पन घट चट फट फुटबॉल वॉलीबॉल डस्टबिन बेसबॉल पिंग पॉंग किंग पॉंग बॉल बॉल हॉल हार
1: क्या शानदार गीत था और हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या सोच के मजरू साहब ने इस गीत को लिखा होगा, है ना? आपके मन में भी जरूर ये सवाल आया होगा। तो इस मजेदार गीत के बाद हम श्रोताओं के जो विचार हैं उनको शामिल करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अर्थहीन शब्दों के गीतों से सजा सुरीला सफर कुछ अलग अंदाज में होगा, ऐसा हम सोचते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये गीत के शब्द शब्दकोश में हैं भी कि नहीं। गीतकार ने क्या सोचकर लिखा होगा इन शब्दों को और खूबसूरत तरीके से प्रस्तुतिकरण कर गीतों के शब्दों को गुनगुनाने के लिए इस प्रकार से ये हमारे लिए छोड़ दिया और गीत हमेशा के लिए यादगार गीत बन गए। तो फिर सुनते हैं खूबसूरत गीतों का ये सफर आपके साथ। बिल्कुल आप सुन रहे हैं हमें उम्मीद है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में कई ऐसे हैं जिसमें कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर सुनने में मजा आता है। ये ताल धुन और सुंदर संगीत के संयोजन पर निर्भर करती है। जीवन से न हार जीने वाले जिंदगी है खेल जैसे करके आपने बहुत सारी गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी शब्द अर्थ की तलाश छोड़कर सिर्फ धुन का हाथ थाम लेते हैं, फिर बेतुके से बोल भी सुरों में घुलकर ऐसी मिठास रचते हैं कि उनका कोई शब्दार्थ न होते हुए भी वे मन की भाषा बन जाते हैं। संगीत की यही खूबसूरती है, जहां शब्द चुप हो जाते हैं वहां धुन अपना अर्थ खुद लिख देती है। आज सुरीला सफर उन्हीं अलहड़ अटपटे और बेपरवाह बोलों की दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा जहां अर्थ भले न मिले मगर आनंद भरपूर मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आज आपको आनंद तो भरपूर मिल रहा है ना? सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था, ऐसा कौन सा गीत यानी किसी एक गीत का नाम आपको बताना है जिनके बोलों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था लेकिन वो अजीब सा शब्द या वाक्य आपको आज भी याद है। जैसे कि हमने आपसे कहा ओए ओए ये जो वाक्य हमें बेहद पसंद आता है, खासतौर से मुझे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि आपको किसी एक गीत की वो पंक्ति जो बेतुकी लगती है या निरर्थक लगती है या आपको हंसा देती है, कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगती है? जैसे कि अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ना, उसमें वो पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है, कौन सी बताइए? फिल्म जंगली का गीत है वो। सुकू सुकू अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू, है ना? तो कभी कभी प्यार में दिल की बात कहने के लिए बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहिए होते दोस्तों, बस एक शरारती सी धुन और कुछ अनोखे बोल काफी होते हैं। और ये जो गीत अब आप सुनने वाले हैं इसके बोल भी उसी मस्ती और चुलबुलेपन का हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं फिल्म जंगली का ये दिलकश और मस्त मौला गीत। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन की धुन है। और हाँ, ये भी बताइएगा, फिल्म जंगली का एक और गीत है जिसे हम अक्सर कहीं ना कहीं उस शब्द को गाते हैं या पसंद करते हैं। लिखना शुरू कर दीजिए।
2: करूं मैं क्या सुकु सुकु, आई आई या करूं मैं क्या सुकु सुकु,

0: से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: चौंको मत ऐ दोस्तो, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू अय्या।

श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इसी फिल्म में एक और गाना है याहू, है ना। ये गाना हमें बेहद पसंद आता है और जब भी हम खुश होते हैं तो इसी अंदाज में गाते हैं याहू। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दे दिया है कि वो कौन सा गीत है। वो यही गीत है चाहे मुझे कोई जंगली कहे। और भी श्रोताओं ने लिखा है कि श्रीदेवी का हवा हवाई गाना उन्हें बहुत पसंद आता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसे उल्टे पुल्टे गीतों में मुझे जब जब फूल खिले का गीत रफी साहब का है वो पसंद आता है। और फिल्म कारवां का भी जो आशा जी की आवाज में है कि मैं कहां आप फंसी, वो वाला गाना इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता को किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मेरे सामने वाली खिड़की में उस गाने की जो शुरुआत है वो बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता को यम्मा यम्मा जो गाना आर डी बर्मन की आवाज में है वो बेहद पसंद आता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के गीतों में अटपटे या बेतुके शब्दों जिनका शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं है का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इसके साथ साथ कुछ गीतों में दूसरी भाषा के शब्द या वाक्य का प्रयोग गीत के मीटर को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है, लेकिन वे बेतुके नहीं होते और उनका अर्थ होता है, जैसा कि दो फूल का गाना है मुत्तु कोड़ी कव्वाड़ी हड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो निरर्थक नहीं है, लेकिन चूंकि हम तमिल गीत को नहीं समझ पाए, उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, उस वाक्य को नहीं समझ पाए, तो हमें लगता है कि अरे ये क्या लिख दिया है गीतकार ने, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। जब हम समझते हैं तब पता चलता है, लेकिन उसको सुनते समय हमें लगता है कि कितना बेतुका सा शब्द लगता है, है ना। और वहीं और सारे गानों का जिक्र भी आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अभी मुंबई की उड़ान पर हूं, इसलिए आज के दिलचस्प कार्यक्रम में प्रतिभागी नहीं बन रहा हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। अरे आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं और लगातार लिखते हैं, अच्छी बात है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम ये उम्मीद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का अंदाज और मधुर आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में मंदाकिनी जी अपने आप में एक ऑल राउंडर उद्घोषिका हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आपने हमारी तारीफ में लिखी है कुछ चंद पंक्तियां, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता लिखते हैं कि सच में संगीत अद्भुत कला है जिसे वरदान स्वरूप इंसानों को मिला है। कई पुराने गीतों में उटपटांग शब्दों को भी इतने सुंदर तरीके से लिखा गया है, ढालकर प्रस्तुत किया गया है कि आश्चर्य भी होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अत्यंत सुंदर गीतों से सजे हुए सुरीला सफर में कई दोस्तों को नमस्कार लिखते हैं और हमें भी हंसती खिलखिलाती हुई। अच्छा हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में गीत शब्दों का अर्थ गठन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना है। चाहे टिम्बकटू हो या काठमांडू, लारालप्पा कहते हुए अपलम चपलम हो, गापूजी गापूजी हो, या फिर देखिए डमडम डिगा डिगा होता है, अगर नहीं हुआ तो इनामिना डिका होगा और होना ही है। विविध भारती के लिए इतना जरूर कहते हैं कि आहा झमाझम प्यारे प्यारे गीत लिए, जब छोटी बहना मंदाकिनी जी आ रही है तब झिंगुर तो बोलेगा, और चिकी मिकी जब हमारी नजर टिकी हुई है घड़ी की सुई की और तो कब एक बजने वाला है, और चिलचिल के कजरी सुनने को मिले। क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इबारत पेश की है, शुक्रिया, मेहरबानी। और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम त्रिदेव। कितना चला था ये ओए होए, याद है आपको? इससे जुड़ी कोई घटना याद हो तो बताइए।

हमारे श्रोताओं ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। आप लिखते हैं कि अजी किबला मोहतरमा ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ये मोहरा फिल्म का गाना हमें पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार का फिल्म मिस मैरी का गाना गाना न आया बजाना न आया ये गाना बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमसे आंख मिलाना बीए पास करके ये गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार जी का एक गाना पसंद है जगत नारायण की जय जय बोलो और नगर नारायण छोड़ो, उसमें भी बीच में बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, शब्द आते हैं जो उन्हें बेहद पसंद हैं। वहीं एक श्रोता को मुझे संगम फिल्म का गीत लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया ये गाना बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है आज तो आपने मेरी मनपसंद का ये सबसे मनपसंद गीत सुनवा दिया जिसमें किशोर कुमार की आवाज है। और मैं अभी यही बताने वाला था कि मुझे ये गीत बहुत पसंद है। आपने जो सवाल पूछे थे उसका पहला जवाब यही है कि किशोर कुमार का गाना ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गीत याद आ रहा है मैं हूं झुमझुम झुमझुम झुमरू ये गीत बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता को हेलन जी पर फिल्माया गया गाना आ जाने जा इसमें जिंगा लाला हूं जो शब्द आते हैं वो इन्हें बेहद पसंद आते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये शालीमार फिल्म का गाना है इसमें ये पंक्तियां आती हैं झिंगा लाला हुर हुर ऐसे करके आती हैं। तो आप कहते हैं कि इसका मतलब आज तक समझ नहीं आया मंदाकिनी जी लेकिन गाने का आनंद तो आप उठाते हैं ना। एक श्रोता को इलू इलू गाना जो था वो बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नीलकमल पिक्चर का गाना है खाली डिब्बा खाली बोतल ये बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता को पांच रुपया बारह आना गाना जो है किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ वो बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन फिल्म का गाना इन्हें बेहद पसंद है। साथ ही फिल्म झुमरू का गाना आपने लिखा है जा रे जा तू मुंह धो के आ जहां किशोर कुमार और आशा भोंसले इस गीत को गाते हैं वो गीत बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गे गे गे गे गेली जरा टिम्बकटू वाला गाना बहुत पसंद है। और एक श्रोता को पड़ोसन फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही एक श्रोता ने लिखा है कि डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा ये गाना हमें बेहद अच्छा लगता है। आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। खय्याम साहब का संगीत है साहिर लुधियानवी के बोल हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है त्रिशूल।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन अटपटे और अर्थहीन जैसे लगने वाले शब्दों को लोगों के दिल तक पहुंचाने में सचमुच संगीतकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत दिनों बाद ये तक धुम धुम गाना सुना, अटपटा है मगर सुर लय के कारण बहुत ही कर्णप्रिय लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई भी गाना निरर्थक नहीं होता, जो संगीत मन को भा गया वही अर्थपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कभी गीत निरर्थक नहीं होता। हमने कहा कि हमें कुछ शब्द ऐसे लगते हैं जो बेतुके से लगते हैं या निरर्थक लगते हैं, तो लेकिन उनका इस्तेमाल कितने खूबी के साथ किया गया है कि वो गीत हमारे मन में एक छाप छोड़ जाता है, तो उन गीतों का जिक्र आज हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बेतुके शब्दों से बने गीत अक्सर आपस में खेली जाने वाली अंतराक्षरी की शान होते हैं, जिसे सब बढ़ चढ़ कर गाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, आप हर बार नया विषय खोजकर लाती हैं जो आपके रिसर्च वर्क को दर्शाता है। दूसरे, आपकी इबारत एकदम नपीतुली है, टू द पॉइंट, कोई फालतू बात नहीं है, गागर में सागर की तरह। आज अटपटे शब्दों वाले गीत विषय पर मुझे एक अलग तरह का गाना याद आ रहा है, मोहम्मद रफी साहब और शमशाद बेगम की आवाज में है और तारा रम पम पम पम करके ये गाना है जो इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हमारा दिमाग सुन्न हो गया है कुछ भी गाने समझ नहीं आ रहे हैं। अरे, आप इस कार्यक्रम को सुनने के बाद तो आपको लगा होगा ना कि आज हमने किस तरह के गीतों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्य में इबारत की बात सामने आई है, आज कुछ ऐसे गीतों की बाहर है जिनके शब्दों में अर्थ भले ही हमें शब्दकोश में न मिलते हों, लेकिन उनकी धुन, सुर, लय, ताल हमारे जहन में है ना, कितनी अच्छी बात। अरे, दिल तो अभी से ही हक्कू बक्कू करने लगा है। और आपने कई शब्दों का जिक्र भी किया है जो किशोरदा अपने गानों में अक्सर करते हैं, ओ पांडुबा, है ना, इस तरह के गाने किशोरदा ने बहुत गाए हैं, उनका जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गीतों की गणना हास्य गीतों में की जा सकती है और हर जीवन में हास्य की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जीवन के आपाधापी में प्राय सभी के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। इस दृष्टिकोण से आज का ये इबारत प्रशंसनीय है, अपितु सराहनीय भी है। अब देखिए ना, पुराने किशोर कुमार अभिनीत फिल्म आशा में किशोर कुमार ने एक गीत गाया है इना मीना डी का, और संजीदगी से भरा वो गीत है, लेकिन जब उसे सुनते हैं तो उसका कुछ और ही रूप नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, जब इस गाने का जिक्र हो गया है तो सुन लेते हैं यही गीत। सी रामचंद्र यानी चितलकर साहब का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण की भूल है, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है आशा।

तो किशोर कुमार और साथियों को आपने सुना, फिल्म का नाम था आशा और ये गीत तो हमने कई बार कई जगह गुनगुनाया भी है और कई कार्यक्रमों में हमने इस गीत को बखूबी और लोगों को गाते सुना भी है। लोग कोशिश करते हैं कि इस गीत को किस तरह से हास्य से परिपूर्ण बना दिया जाए, है ना? आपने भी कोशिश की कभी इस गीत को गाने की, बताइएगा। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लाहिड़ी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है हिम्मत वाला। बताइए इसमें कौन सी पंक्ति है जो हमें थोड़ा सा अटपटी लगती है लेकिन बड़ी मजेदार है?

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संगीत की उस अनोखी दुनिया की ओर ले जाती है जहां हर बात का अर्थ होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई स्पष्ट मतलब नहीं मिलता, फिर भी वे धुन के साथ मिलकर यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे ही गीतों से जुड़ा है आज का ये कार्यक्रम और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गानों का जिक्र भी किया है जिनमें हमें ये अटपटे और चटपटे शब्द सुनाई देते हैं और वो गीत हमेशा के लिए यादगार बन भी जाता है। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं तक और फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours a day. This is our

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं चित्रा की आवाज़ में महबूब का लिखा गीत। संगीत AR रहमान का है और फिल्म का नाम है बॉम्बे।

परदेश फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: परदेश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। यह सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इन्फोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। ये ब्लॉक 3,30,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है, जो प्रदेश में उन्नत तकनीकी क्षमताओं तथा रोजगार परक टैलेंट इकोसिस्टम को और सशक्त करेगा। इन्फोसिस मध्य प्रदेश के बढ़ते टैलेंट पूल का लाभ लेने के साथ प्रदेश के शैक्षणिक एवं तकनीकी इकोसिस्टम के साथ अपना जुड़ाव भी मजबूत करेगी। इसके अंतर्गत स्किलिंग कार्यक्रमों एवं संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से IIT इंदौर, IIM इंदौर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ सहभागिता को विस्तार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की राष्ट्र और जनसेवा की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अभियान की तैयारियों को लेकर कल इंदौर और उज्जैन के कार्यकर्ताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि 17 सितंबर को उज्जैन से अभियान के शुभारंभ और दीपोत्सव की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उज्जैन से अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत प्रदेश में 58 लाख दीपों से आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए जन कल्याण, विकास कार्यों और देश में आए सकारात्मक बदलावों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आशीर्वाद का दिया, नमो सेवा गाथा, कहानी बदलाव की, सेवा ज्योति यात्रा, सेवा मेरा

0: योगदान सेवा सेतु सरकार आपके द्वार। प्रत्येक शुक्रवार जन कल्याण और जन संवाद की विशेष गतिविधियाँ, वहीं जन सेवक महाकुंभ के अंतर्गत पंचायत से पार्लियामेंट तक देश भर के सरपंचों और जन प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आइए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के सेवा संकल्प को जन भागीदारी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं।
1: वहीं प्रदेश भर में विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेवा ज्योति कलश यात्रा विकसित भारत का संकल्प का आयोजन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। यात्रा जिले के कस्बों, गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए विधानसभा तथा वहां से जिला मुख्यालय पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। जिले की प्रत्येक विधानसभा से एक सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर जोर पकड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 19 सितंबर के बाद नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। मानसूनी सीजन में अब तक 33 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है, जबकि सामान्य औसत 37.3 इंच है। मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। नेपाल के उत्तर पश्चिमी मुगू जिले में आज तड़के 3 घंटे के भीतर 2 भूकंप आए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार पहले भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.5 और दूसरे की 4.2 थी। दोनों भूकंपों का केंद्र मुगू जिले के कलई के आसपास रहा। फिलहाल किसी के हताहत या नुकसान की खबर नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए 7 दावेदारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। झाबुआ पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत खतरनाक स्टंट, तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले 289 लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की और कटनी में साइबर अपराधों के वैधानिक प्रावधानों और विवाद समाधान प्रक्रिया के प्रति जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
2: The question should not only be...
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
1: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दविचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉ जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
7: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
8: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
10: वासुदेव कमला,
11: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया, हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम आरती, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन।

ये स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था आरती। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म आशिक, आवाज मुकेश की, शब्दकार शैलेंद्र हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत SH बिहारी का लिखा हुआ, रवि का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम अपना बना के देखो।

0: अपना बना कर देखो।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है माँ बेटा। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मुकेश। गीत रचना प्रेम धवन की और संगीत हेमंत कुमार का है।

0: पर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: और आइए अब सुनते हैं फिल्म रंगोली का दो गाना, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और तर्ज शंकर जयकिशन की है।

और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है बंबई का चोर। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: सुनिए
4: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
4: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम है।

0: सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने,
1: सुनिए
2: कहिए
0: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सहेली
1: सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, श्रोताओं को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार,
2: और सभी श्रोताओं को, हमारी सखियों को दीपा माहेश्वरी का, चंचल आपको भी
1: दीपा माहेश्वरी का आपको भी
2: हेल्दी नमस्कार।
1: हाँ जी, हेल्दी नमस्कार। और त्योहार आते हैं ना, तो उस वक्त हम इतने कई बार मसरूफ हो जाते हैं ना कि सेहत की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं, रात को देर से सो रहे होते हैं, और खाने पीने का समय है वो भी अनियमित हो जाता है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी कुछ गड़बड़ा जाती है।
2: बिल्कुल, और खासतौर पर जो घर की महिलाएं हैं, क्योंकि सबको देने में, सबके लिए ध्यान रखने में, और जो घर में मेहमान आते हैं उनका ख्याल रखने में कहीं अपना ख्याल पीछे छूट जाता है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले जो आगंतुक है, मेहमान है
2: जी,
1: हमारे अतिथि हैं, उनको हमारी कोशिश रहती है कि उनको पहले परोसा जाए, और सबका करते करते इतनी देर हो जाती है कि जो दोपहर के भोजन का समय होता है, 1 से 2 के बीच का, 3 बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होता है। और आज तो बहुत कुछ होने वाला है हमारे कार्यक्रम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, त्योहार की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारी विरासत है, धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं जिन्हें हम निभा रहे हैं
2: जी।
1: और यही अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे पाएंगे।
2: बात तो बिल्कुल सही है, और बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर के हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है, इसीलिए बात होगी। पहला विषय जो है हमने चुना है आज के लिए कि त्यौहार हमारी धरोहर है।

0: हमारी परंपरा, इस पे आप क्या सोचते हैं और आप कितना इसको आगे बढ़ाने में इसकी कोशिश जारी रख रहे हैं?
1: बिल्कुल, अगर कोई चीज को आगे बढ़ाना है हमारी धरोहर को, तो आदान प्रदान बहुत जरूरी है ना।
0: अरे बिल्कुल,
1: क्योंकि जब तक हम चीज कोई किसी को देंगे नहीं, वो उसको ग्रहण कैसे करेगा, और वो ग्रहण करेगा तभी तो आगे पहुंचाएगा। यही तो होता है आदान प्रदान।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना भाई, आदान प्रदान अच्छी चीजों का हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप पर्यावरण में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ लगातार अगर निकालते चले जा रहे हैं, तो फिर देखिए ओजोन परत के संरक्षण में गंभीर विषय अब बन चुका है वो, और उसमें कई सारी तकलीफें आ रही हैं। और यही बातों को समझने के लिए आज हम ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं।
1: बिल्कुल, इस पर भी विस्तार से बात होगी, और हमारे सुनने वाले शायद इस बात को समझ रहे हैं कि हम सीधे सीधे विषय नहीं बता रहे हैं, लेकिन बातों से उन्हें अंदाजा हो गया कि हम किन चीजों के बारे में, किन विषयों को लेकर आज बात करने वाले
0: हैं। अरे भाई इतना देखिए, गंभीर ना हो जाइएगा, आज व्यंजन भी है, क्योंकि मोदक के कई सारे प्रकार चंचल हमें बनाने हैं, और बहुत सारे संदेश आए हैं, और बड़े मजेदार कुछ रेसिपीज भी हमारी सखियों ने लिख भेजी है।
1: तो तुमने ओजोन दिवस की जब बात की, मुझे याद आया कि और भी दो महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं। एक तो है हृदय में हस्तक्षेप द्वारा उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर्स इसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस कहते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में घोषित किया गया था, और इसी दिन 16 सितंबर यानी 2077 को डॉक्टर एंड्रियास ग्रुटिजिक ने पहली बार एक सफल एंजियोप्लास्टी की थी, और इसीलिए दिल की जो बीमारियां हैं, जो सर्जरी है, उसके बारे में जागरूकता हो, इसलिए दिवस हम मना रहे हैं।
0: बिल्कुल, और ये दिवस के साथ याद आया चंचल, एक और मुख्य दिवस है आज, है दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो सितंबर 2023 में इस दिन के आयोजन का फैसला हुआ था, और 9 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये प्रस्ताव पारित करके 16 सितंबर को ये आधिकारिक दिवस घोषित किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के विकासशील देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करना, ताकि गरीबी, असमानता या जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और ये देश पीछे कहीं ना रह जाएं।
1: बिल्कुल, जलवायु की बात होती है तो ओजोन की बात भी होती है, हम विस्तार से इन सब को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले गीत सुन ले।
0: गीत भी सुनेंगे भाई, साड़ियों का जो लगाव है उससे कैसे हम पीछे।
1: अरे हाँ भाई, विषय बताते बताते हम ये तो भूल ही गए कि आज साड़ियों की बात भी होनी है, तो आज कौन सी खास साड़ी की बात होगी?
0: आज हम करेंगे मोठड़ा साड़ी, आप बताइएगा कौन से प्रदेश से आती है ये साड़ी।
1: जी

0: यशुदास की आवाज में बहुत खूबसूरती गीत हम सुन रहे थे। और गीत से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस की भी हमने बात की। इन्हीं में से एक है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ओजोन दिवस भी कहते हैं इसे हम।
1: बिल्कुल
0: सूरज की
1: बहुत जी
0: प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है ये हमारे जीवन को संभव बनाता है, लेकिन जो ओजोन परत है वो जीवन के रूप में से संभव बनाती है जिसे हम जानते हैं। और ओजोन परत गैस की एक बहुत नाजुक ढाल की तरह होती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इस तरह से ये पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में भी बहुत मदद करती है।
1: बिल्कुल। और अगर ओजोन परत ना होती तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा होती।
0: हाँ
1: ये समताप मंडलीय परत एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूर्य की ज्यादातर हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। चंचल, ओजोन परत यूवीबी जो नाम की यूवी प्रकाश के जो हिस्से हैं उसे अवशोषित कर लेती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, आम बोलचाल की भाषा में अल्ट्रा वायलेट रेज
1: रेज को
0: जानते
1: बोलते
0: हैं,
1: हैं
0: तो
1: जी।
0: वो सीधे हम तक ना पहुंचे इसीलिए बहुत झिल्ली जैसी एक लेयर होती है।
1: हाँ, तो ये कई तरह से कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव हम पर डालती है। और शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी ओजोन
0: हाँ
1: है
0: सही
1: ना।
0: कहा।
1: और इस दिवस का आयोजन करने के कारण भी ये खास है। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान खींचना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो ओजोन परत जो है जो हमारी सुरक्षा कर रही है उसको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इस बारे में ध्यान खींचा जा रहा है। और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए इसे खतरनाक गैसों से बचाना है। सबसे ज्यादा खतरनाक गैसों में कुछ हैं CFC, जिसे क्लोरोफ्लोराइड कार्बन के नाम से हम जानते हैं, हेलोजेनेटेड हाइड्रो कार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला कि मानवता इस सुरक्षा कवच में छेद कर रही है, यानी कि हम ही लोग इसको बिगाड़ रहे हैं, तो जब उन्होंने इसके प्रति चिंता जताई कि इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और हम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनसे जो गैस निकलती है ना, ये वही गैसें हैं जो इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं।
1: बिल्कुल। और जो हमारे जो निजी साधन है परिवहन के, उनका अधिक उपयोग करने से भी बचना है। और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल चलने का प्रयास कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल जो बहुत ही अच्छे ये समाधान है। इससे पहले हम घर में भी काम कर सकते हैं।
0: हाँ
1: वो कैसे कि भाई अगर आप हर कमरे में एयर कंडीशन चलाकर हर
0: जी
1: परिवार का एक एक सदस्य अलग अलग कमरे में
0: जी
1: बैठेगा और हर रूम का अलग अलग AC चलाएगा, तो बताइए कि कितना हम पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: वो गैस कितनी ज्यादा हवा में फैल रही है। इसके अलावा आपका भी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो आर्थिक नुकसान भी होता है, तो दोनों ही नुकसान को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और साथ में बहुत जरूरी है कि आप AC को एक या तो कमरे में चला लीजिए, फिर भी ना संभव है तो कुछ इस तरह से कीजिए कि सारे लोग एक वक्त तो एक ही जगह
0: जी
1: पर बैठें। उसके साथ में बहुत जरूरी है कि आप खिड़की दरवाजे थोड़ी सी देर खुले रखिए। स्वच्छ और शुद्ध हवा का
0: जी
1: आवागमन भी घर के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में ओजोन परत के बचाव को लेकर उन्हें जागरूक किया जा सके, इसे संरक्षित करने के संभावित उपाय खोजे जा सकें। इसे देश दुनिया ओजोन परत पर बातचीत करती है और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं ताकि इसकी सुरक्षा हो सके।
1: बिल्कुल। और चंचल, ये दिन हमें याद दिलाता है कि ओजोन न केवल पृथ्वी पर बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ओजोन परत की रक्षा करना हमें आज से ही जारी रखना होगा।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हमारे लिए हवा पानी जरूरी है, सूरज की किरणें भी जरूरी हैं, तो सूरज खुद जलकर हम तक ये रोशनी, प्रकाश और बहुत सारी चीजें हम तक पहुंचाता है। वो जलता रहे लेकिन उसे कोई नुकसान ना पहुंचे।

0: तो भाई सूरज की सुरक्षा के लिए, यानी कि हम सब सूरज की जब रोशनी हमें मिलती है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे हम तक ना पहुंचे, उसकी सुरक्षा के लिए ओजोन परत की सुरक्षा बहुत
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: जरूरी है,
0: और
1: और हमारे
0: हमारे
1: पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी
0: हमारे
1: है।
0: श्रोता भी इसी बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण परत है और शहकारी पदार्थों का उपयोग कम करना जरूरी है, पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, ओजोन परत की रक्षा हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की रक्षा करना है। ये
1: जी
0: लगभग सभी
1: सभी
0: हमारे
1: के,
0: श्रोताओं ने
1: हाँ
0: लिख
1: जी
0: रखी
1: हाँ
0: थी।
1: बिल्कुल इसी तरह के आए हैं। और देखिए ना, जब ये सारी बातें होती है जागरूकता की, तो एक चीज की और जागरूकता आ जाती है कि जब त्योहार आ रहे हैं तो मन कैसे एकदम जागा जागा सा रहता है, बिल्कुल है ना, खुश खुश रहता है, और घर में सारा चहल पहल लगी रहती है। सुबह जल्दी उठना है कोई परिवार का सदस्य, क्योंकि कुछ तैयारी करके देर से सोया है, तो कुछ परिवार के सदस्य जल्दी उठ करके उसकी तैयारी कर रहे होते हैं।
0: ये देखिए ना,
1: और
0: ये जो सावन का महीना आता है ना,
1: जी
0: इसमें तीज, फिर रक्षाबंधन, फिर खत्म होते होते फिर ये जो आते हैं गणेश चतुर्थी, और महाराष्ट्र में तो चलिए बहुत धूमधाम से मनाया ही जाता है, अब तो देश के हर हिस्से में ये
1: बिल्कुल
0: बहुत धूमधाम से मनने लगा है।
1: जी।
0: इसके
1: और
0: खत्म होते होते कुछ दिन बाद ही फिर नवरात्रि आ जाएंगे, फिर दिवाली की शुरुआत हो जाएगी, और यूं जो सिलसिला है ना, अभी रुकने नहीं वाला है।
1: बिल्कुल, वो इसलिए रुकने नहीं वाला है चंचल, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं। और जीवन में त्योहार ये सिर्फ कैलेंडर पे आने वाली तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं से जुड़े खूबसूरत अवसर होते हैं।
0: बिल्कुल
1: और हमारे देश में अगर त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ये
0: हाँ
1: अलग अलग धर्म है, भाषाएं हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन हर त्योहार के पीछे एक भावना दिखाई देती है, खुशियां बांटना और लोगों को एक दूसरे के करीब लाना।
0: देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग त्योहार तो होते ही हैं दीपा, लेकिन एक ही त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल
0: कहीं खान पान का थोड़ा सा फर्क होता है, कहीं पहनावे का, तो कुछ कुछ रीति रिवाजों का बहुत थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि वो चीजें होती मिलती जुलती ही हैं, जो उनका मतलब है, अर्थ है, वो एक ही होता है।
1: जी
0: अब दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरुपर्व, पोंगल, गणेशोत्सव, नवरात्र, हर त्योहार का जो है अपना एक अलग रंग होता है, स्वाद होता है, और एक संदेश लेकर भी वो आता है।
1: बिल्कुल
0: त्योहारों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों जो है वो अपने जड़ों से जुड़ती हैं, रीति रिवाजों को जानती हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं वो बड़े प्यार से इन चीजों को संजो कर रखते हैं।
1: और त्योहारों की सबसे सुंदर बात चंचल ये लगती है कि इसमें परंपरा के साथ अपनापन जुड़ा होता है। और त्योहार आते ही देखो ना, घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, फिर घर भी सजता है, रिश्तेदारों को और मित्रों को हम जो मिलने मिलाने का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है, कहीं पर हम आमंत्रण दे रहे हैं, कहीं पर हम आमंत्रित हैं, इस
0: जी
1: तरह की बातें भी होती है। और कई बार तो त्योहारों का इंतजार इसलिए भी होता है कि इसी बहाने परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, और फिर वो पुरानी यादों को फिर से जिया जाएगा।
0: बिल्कुल, जब हम दिवाली मना रहे हैं तो पिछली दिवाली पर क्या हुआ था ये याद करते हैं,
1: हाँ
0: इस साल जब हम गणेश उत्सव मना रहे हैं तो याद
1: जी
0: करते हैं कि पिछले साल मूर्ति कैसी थी, कौन कौन मेहमान आए थे, किस तरह से धमाल मस्ती हुई, क्या पकवान घर में बनाए गए थे। ये पिछली जो बातें होती है ना, वो यादों की एक फहरिस्त तैयार होती जाती है।
1: बिल्कुल, और परंपराएं केवल पूजा पाठ या रस्मों तक सीमित नहीं होती हैं, इनसे पीछे जीवन को बेहतर बनाने की सीख भी छिपी होती है चंचल। जैसे दीपावली हमें अंधकार पर प्रकाश का विजय का संदेश देती है, होली आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम के रंग में रंगने की सीख देती है, फिर देखिए ना, ईद हमें भाईचारे और साझेदारी का संदेश देती है, तो क्रिसमस प्रेम और करुणा की भावना हमें जगाता है हमारे अंदर। यानी हमारे त्योहार हमें हर साल याद दिलाते हैं, मानवता, प्रेम और सद्भाव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
0: और हमारे एक संदेश में हमें बताया गया है कि त्योहार हमारी धरोहर और हमारी परंपराएं हैं। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि पूरे साल हम विभिन्न त्योहार उत्साहपूर्वक मनाते हैं जो हमारी धरोहर हैं, और हम परंपरा के अनुसार इन्हें मनाते हैं। जैसे इस समय हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, हमने घर में पूजा के कमरे में मिट्टी से बने हुए गणेश जी की स्थापना की है। 11 दिनों तक सुबह और शाम घर के सभी सदस्य आरती में उपस्थित रहते हैं। एक बेटी है जो कि बाहर जॉब करती है, बाहर उसकी पोस्टिंग है, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल के माध्यम से इस पूजा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देती है, और यही हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा। परंपरा है। कई सालों से इस परंपरा को हमारे घर के सभी बड़े निभा रहे हैं, इसे हमने भी कायम रखा है। यही तो बात हम भी कह रहे हैं ना कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को पूंजी के रूप में इन चीजों को सौंप कर जाने वाले हैं।
1: और एक हमारे जो हमारी सखी है उन्होंने कुछ अलग अंदाज में लिखा है, वो कहती है, आए त्योहार खुशी की बहार, दीप जले सजे घर के द्वार, रंग बिरंगे उमंगों का मेला, रह न जाए कोई अकेला, मिलकर गाएं खुशियां मनाएं, प्यार का संदेश हम सब पहुंचाएं।
0: तो बस हर दुख छोड़कर हर चीज को भुलाकर हम भी खुशियों की रंगरेलियां मनाएं।
1: चलिए।

0: भाई चंचल, देखिए गम छोड़ना तो चाहिए बिल्कुल, त्योहारों में मिलने का जो असली अर्थ तो वही है। साथ में हम ये परंपराएं क्यों मनाते हैं, क्यों ये हमारी धरोहर है, अपने आने वाली पीढ़ी यानी हमारे बच्चों को जरूर इस बारे में बताना चाहिए। क्यों विशेष व्यंजन बनते हैं, जैसे कि प्रकृति के अनुरूप जो जो उस वक्त उपलब्ध होते हैं, चाहे आप धान की बात कीजिए, अनाज की बात कीजिए, फल सब्जियां जो भी उपलब्ध होती हैं उस वक्त प्रकृति के हिसाब से, जो भी वो पैदावार होती है उनसे जुड़ी हुई व्यंजन जब बनते हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे क्यों ये बनाया जाता है, इस पे विचार विमर्श हो, उस पे डिस्कशन घर में बैठ के कीजिए, आप देखिए इतना आनंद आएगा और बच्चों में जो ज्ञान वर्धन होगा उसके बाद वो वाकई में हमारी परंपराओं और हमारी इन धरोहरों की जो असली महत्वपूर्ण इसकी महत्ता है उसको समझेंगे।
1: बिल्कुल, बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं कि भाई आप गणपति जी को भोग लगाते हैं तो चावल के आटे वाला ही मोदक क्यों लगाते हैं, अन्नकूट पर पूजा करते हैं तो क्यों उस समय ये वाली ही सब्जियां बनती हैं। जैसे बहुत सारे, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो त्योहार हैं वो भी कृषि प्रधान बहुत सारे होते हैं, बैसाखी है, अन्नकूट है, पोला है, ऐसे ना जाने कितने त्योहार हैं जो कृषि पर ही निर्धारित होते हैं। जब नई फसल आती है ये अक्टूबर के महीने में, तब जो भी फल सब्जियां या धान उगाए जाते हैं उन सबका भोग लगाया जाता है अन्नकूट में। इसी तरह से बैसाखी में जब सरसों की खेती होती है, सरसों काटी जाती है, गेहूं कटता है और जो भी अनाज कटते हैं तो उनकी उनकी वो खुशियां मनाई जाती हैं।
0: बिल्कुल, और उन्हीं से ही जुड़ी हुई चीजें बनती हैं घर में।
1: बिल्कुल, इसी तरह से संक्रांति आती है तो क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट की जरूरत होती है तो तिल का विशेष रूप से
0: ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल, और आखिर त्योहार की असली खुशी तभी है ना चंचल जब हमारे चेहरों के साथ साथ किसी और के चेहरे पे भी मुस्कान आए, तो त्योहार की खुशियां उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: इसी तरह से एक संदेश में हमारे श्रोताओं का कहना है कि त्योहार पहले भी हमारी धरोहर थे और आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, एक बड़ा परिवार होता था, सब साथ मिलकर खुशियां मनाते थे, त्योहार मनाते थे, खूब आनंद आता था। आज क्योंकि एकाकी परिवार हो गए हैं और अलग अलग हो गए हैं सब, लेकिन छोटे परिवार हो गए हैं, त्योहार हम आज भी मनाते हैं। तो ये बात सही है, महानगरों में जगह की कमी के चलते एकल परिवार ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब कोई त्योहार होता है तो भले हम चार दिन एक साथ ना बैठे, लेकिन उस दिन जब त्योहार मनाया जा रहा है तो घर पर पूरी चहल पहल होती है। वो जो छोटा सा भी घर हो ना तो पूरा मेहमानों से भरा पूरा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है, ये कहते हैं कि वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे त्योहारों का मूल स्वरूप और पवित्रता बनी रहे।
1: इन बातों को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है।
0: जी।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, इस समय कार्यक्रम सखी सहेली, और कार्यक्रम हम फिर से लेकर आ गए हैं अंतराल के बाद, है ना?
2: जी बिल्कुल। चंचल, सृष्टि की रचना जब हुई, ऐसे हमारी एक सखी ने लिख भेजा है कि तब से इन मनुष्यों ने खास अवसरों पर मिलजुल कर जो कार्यक्रम संपन्न किए वे कालांतर में त्योहारों का उन्होंने रूप ले लिया, और आने वाली पीढ़ियों ने नित नए प्रयोग कर उसमें कुछ जोड़ भी दिया, और अब ये कहती हैं कि उसी लोग उन्हें उसी बातों को ही आधार मानकर एक निश्चित दिन पर ऐसे आयोजनों की परंपरा करते चले आ रहे हैं, और हम आज भी पूर्वजों की जो राह है उस पर चलते हुए उन सभी परंपराओं का पालन करते हुए हम नियत तिथि पर होली, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाते चलते आ रहे हैं।
3: और भाई, जिस तरह से एक नियमित क्रम चलता रहता है त्योहारों का, हमारे कार्यक्रम में भी हमारी बातें, कुछ जानकारियां और गानों का एक क्रम चलता रहता है, तो गाना सुन ले।
2: चलिए सुनते हैं।
4: ये तो कहो

0: तो भाई जब हम घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे नहीं पूछते हैं कि वो कौन है, क्योंकि हम सबको जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ अजनबी चेहरे भी आते हैं और वो भी हमारे चिर परिचित बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और त्योहारों के बीच में जब अगर एक सुंदर सी साड़ी पहनने को मिल जाए ना घर की महिलाओं को, घर की एक महिला को, जो उसके जो चेहरे की मुस्कान जो होती है, वो जो खुशी होती है, वो एक अलग ही होती है। और ऐसे में अगर मोठड़ा साड़ी मिल जाए राजस्थान के प्रसिद्ध, तो फिर तो बात ही क्या है।
0: बिल्कुल, और राजस्थान की बहुत कहते हैं ना कि डिमांड वाली साड़ियों में से ये एक है, और लहरिया का ही एक वर्जन भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा लहरिया होता है ना उससे मिलता जुलता ही ये होता है। लहरिया में बस सीधी सीधी लहरें होती हैं, लेकिन जो मोठड़ा साड़ी है उसमें जो लहरें होती हैं वो एक दूसरे को काटती हुई थोड़ी सी आड़ी तिरछी, और फिर वो चौकोर बन जाती हैं आड़ी तिरछी जब काटती हैं, और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दो लहरिया साड़ी एक के ऊपर एक चढ़ा दी गई हो, और इसी की वजह से इसका जो डिजाइन है वो ज्यादा भरा भरा और आकर्षक लगता है।
1: बिल्कुल, कुछ और खास बातें हैं चंचल इस मोठड़ा साड़ी की, जैसे लहरिया से थोड़ी अलग बनाती है जिस इसको। लहरिया में एक साथ दो रंग होते हैं, पर मोठड़ा में जहां दो रंग मिलते हैं वहां तीसरा रंग अपने आप बन जाता है। जैसे लाल और पीला मोठड़े के बीच में नारंगी आपको दिखेगा, और यही इसका असली आकर्षण भी है।
0: बिल्कुल, और मोठ राजस्थानी में किसी दाने या गांठ को कहा जाता है, और क्योंकि ये जो साड़ी होती है इसे बांधने के समय गांठें लगाई जाती हैं, और मोटी मोटी गांठें लगाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम मोठड़ा साड़ी पड़ गया। और ये साड़ी बंधेज की तकनीक से ही बनाई जाती है। इसमें कपड़े को दो बार अलग अलग दिशा में बांध कर रंगा जाता है, पहले एक रंग में रंगकर सुखाया जाता है और फिर दूसरी दिशा में बांध कर दूसरे रंगों में इसको रंगा जाता है।
1: बिल्कुल, और पहले ये साड़ियाँ सूती कपड़ा माने कि कॉटन में बना करती थी, लेकिन आजकल अब तो शिफॉन में भी बनने लगी है, जॉर्जेट में भी बनने लगी है ये वाली साड़ियाँ। और क्योंकि शिफॉन बहुत हल्की होती है और आप चाहे तो रोजमर्रा में भी इसको पहन सकते हैं, इस वजह से ही इसकी मांग भी बहुत ज्यादा होने लगी है बाजार में।
0: हाँ, लहरिया और मोठड़ा जो है ना ये ज्यादातर इसी मौसम में पहना जाता है, और ये होते हैं थोड़ी चिपचिपी गर्मी वाले दिन
1: जी।
0: तो क्या होता है कि जो ऐसी हल्की फुल्की साड़ियाँ हों जो हमें तकलीफ ना दें, हमें बहुत आराम एक महसूस कराए, इसीलिए सूती जॉर्जेट शिफॉन ऐसे कपड़े में इन साड़ियों की डिमांड जो है वो ज्यादा
1: होने लग जाती है। और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रंग भी इसमें है, जैसे कि पिंक रानी जो गुलाबी कलर
0: होता गहरा वाला होता ना, रानी महारानी की पिंक जिसे कहते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ में लाल पीला हरे रंग का एक अलग अलग रंग के कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करती है महिलाएं। तो ये गोटा पट्टी वाला मोठड़ा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रक्षाबंधन पर जो सोगी के रस्म में गोटा वर्क वाला मोठड़ा उपहार में भी दिया जाता है।
0: और राजस्थान में मोठड़ा को सुहाग और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। दीपा, नई दुल्हन जब पीहर से आती है तो उसका जो पहला सावन का तोहफा आता है उसमें मोठड़ा साड़ी भी कई बार रखी जाती है, और कुछ कुछ जगह पर इसका जरूरी भी माना जाता है। सावन, तीज, रक्षाबंधन मैं तो पहनते ही है, इसके अलावा शादी ब्याह में भी बहुत पहनी जाती है मोठड़ा साड़ी। और राजस्थान में मान्यता ऐसी है कि सावन में लहरिया मोठड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है।
1: बिल्कुल, और एक संदेश आया है, ये कहती है कि ये पारंपरिक हस्तकला है राजस्थान की, इसमें कपड़े को एक दिशा में मोड़ने के बाद दूसरी दिशा में भी लहरिया लाइन काटी जाती है। साथ में इन्होंने भी यही कहा है कि शिफॉन, जॉर्जेट, कॉटन, कोटा, डोरिया जैसे हल्के मुलायम कपड़ों में पहना जाता है। इसमें गोटा पट्टी, जरी, आरी तिरी वर्क और खूबसूरत बॉर्डर का भी काम किया जाता है, जिससे पहनने पर ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है।
0: अभी महिलाओं को कई बार लगता है ना कि हमारे वार्डरोब में साड़ी नहीं है तो ले ली जाए, कई बार हमारा बजट भी हमें लगता है कि रोक देता है। तो ये साड़ी जो है क्योंकि हल्की फुल्की भी आती है और वर्क वाली भी आती है, तो 300-400 रुपए से शुरू होकर 4-5 हजार तक आप जैसी कीमत में लेना चाहें वैसी साड़ी आप ले सकती हैं इसमें। और प्लेन, गोटा वर्क वाली और इन्हीं के अनुसार इनकी जो कीमत है वो अलग अलग मिल सकती है बाजार में। जब भी मोटर साड़ी लेनी हो तो थोड़ी सी पहचान जो है इसकी वो कर ले, और पहचान करने के लिए क्या करना है कि असली मोटरा जो है वो हाथ से बनाया जाता है, उसके जो रंग की किनारी है वो थोड़ी सी अनियमित मिलेगी आपको, और पीछे की तरफ जो है रंग थोड़ा थोड़ा हल्का दिखेगा। मशीन प्रिंट वाली जो साड़ी होती है उसके पीछे सफेद रंग रहता है। तो थोड़ी सी पहचान करके आप साड़ी लीजिए और बस उत्सवों पर, त्योहारों पर और किसी भी खास मौके पर पहन लीजिए।

0: चंचल देखिए, त्योहार आए हैं, घर में बहुत साज सज्जा भी कर ली है, बहुत सारी चीजें भी बन गई हैं। कुछ आदान प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे तोहफों का?
1: तोहफों का भी होता है, और कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं हमारे पास पड़ोस में वहाँ भी वही उत्सव मनाया जा रहा है, तो कई बार जो बहुत सारे पकवान घर में बनते हैं उनका भी आदान प्रदान होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का भी आदान प्रदान होता है। अगर मान लीजिए मेरे घर में आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी कढ़ाई मेरे घर में नहीं है, बहुत बड़ा भगोना मेरे घर में नहीं है, कितनी सामग्री बनाई जा सके, तो वो भी हम पड़ोस के घर से ले लेते हैं कई बार। और बहुत सारी चीज़ें सजावट की भी कई बार आदान प्रदान होती हैं, और जो घर में मेहमान होते हैं उनके साथ में आपसी प्रेम भावनाएं, इनका आदान प्रदान
0: होता है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी श्रोता ने लिखा है कि आदान प्रदान ये विनिमय प्रथा का एक प्रकार है, जिसमें लेन देन या अदल बदल की एक प्रक्रिया है, जिसमें दो पक्षों के बीच वस्तुओं के अलावा अपने अपने विचारों का भी आदान प्रदान किया जाता है। अब वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सखी सहेली इस फेसबुक पेज पर हमारे द्वारा लिखी कमेंट उद्घोषिकाएं हमारी यानी सहेलियां पढ़ती हैं, तो इस प्रक्रिया में भी विचारों का वर्चुअल आदान प्रदान होता है।
1: क्या
0: बिल्कुल सही कहा आपने भाई, आप अगर संदेश नहीं लिखेंगे तो फिर ये कार्यक्रम की खूबसूरती कैसे बनेगी और ये आदान प्रदान कैसे पूर्ण होगा?
1: और ये बहुत जरूरी आदान प्रदान है। और इसी को लेकर एक और संदेश है, इसमें लिखा गया है कि रिश्ते एक सुंदर आदान प्रदान है, जहां कोई अपना समय देता है, कोई विश्वास, कोई प्रेम बांटता है, कोई मौन में भी साथ निभाता है। इन छोटे छोटे हिस्सों में जीवन की बहुत बड़ी खुशियां बन जाती हैं।
0: बिल्कुल। एक संदेश और आया है, वो कहते हैं कि पहले आदान प्रदान पड़ोसी में चीजों का होता था, चीजों के बीच भावनाओं और विचारों का भी हो जाता था, मन की बातों का आदान प्रदान होता है। ये रिश्ते कभी कभी इतने अंतरिम हो जाते हैं कि अपनी रास की बातें भी हम पास पड़ोसियों से कर लेते हैं। शायद इसी आदान प्रदान से रिश्तों में अपनापन आता है। पर अगर कभी मतभेद हो जाए तो यही राजदार अपनी बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आदान प्रदान तो करें, साथ में उन्होंने एक सावधानी दी है कि थोड़ा संभल कर करें, ये हमारा अनुभव है।
1: एक अन्य संदेश में एक बात कही गई है, आदान प्रदान हमारी आवश्यकता भी है, कर्तव्य भी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं जहां हमें तमाम जरूरतों के लिए एक दूसरे से लेना भी पड़ता है और उनकी जरूरत होने पर उन्हें देना भी पड़ता है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चीजें अपनी सामर्थ्य से हम खरीद लाते हैं या उत्पादित भी कर लेते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें अक्सर सबसे ज्यादा आदान प्रदान में लेना देना पड़ता है। जैसा कि हम सब एक शादी में तमाम पैसे खर्च करने के लिए एक दूसरे लोगों से मदद ले लेते हैं, बाद में उन्हें वो पैसा लौटा भी देते हैं, इसी तरह से उनकी डिमांड पर कई बार उनके लिए पैसे की व्यवस्था कर देते हैं और वो आदमी भी हमें बाद में भुगतान कर देता है। तो बिल्कुल इस तरह का जब आदान प्रदान होता है तो रिश्तों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए और हमारे कार्यक्रम का जो तालमेल है वो ना बिगड़ जाए, इसलिए गाना सुन लेते हैं।
0: चलिए सुनते हैं।

0: भाई हमने बहुत सारे त्योहारों की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आदान प्रदान की बात भी कर ली, जो त्योहार हमारे धरोहर हैं परंपरा इनकी बात भी कर ली, हम क्या पहनेंगे मोढ़ा साड़ी उसकी बात भी कर ली, लेकिन अभी तक खाने पीने की कोई बात नहीं हुई।
1: अरे भाई हो रही है ना, देखिए मोदक बनेंगे, बहुत प्रकार के मोदक होते हैं, तो जिसमें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कि उकड़ी से मोदक होते हैं जो कि भाप में पके हुए सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक मोदक हैं।
0: और ये उकड़ी से मोदक यानी कि चावल के आटे के मोदक होते हैं जो खास तौर पर महाराष्ट्र में इन्हीं मोदक का भोग लगाया जाता है गणपति बप्पा
1: जी
0: को।
1: ये बता रही है कि चावल के आटे के आवरण और ताजे नारियल गुड़ की भराई वाले ये मोदक भाप में पकाए जाते हैं। उसके अलावा तले हुए मोदक भी होते हैं, इन्हें गेहूं के आटे या मैदे से बनाकर तेल या घी में आप तल के बना सकते हैं। फिर मावा यानी कि जिसे खोया बोलते हैं वो मोदक भी होते हैं, तो इसमें चीनी और मेवों को झटपट तैयार किए जाने वाले ये मोदक होते हैं, मतलब अंदर जो फीलिंग है वो मावे के साथ चीनी और सूखे मेवों की होगी। और बेसन के भी मोदक बनते हैं जिसमें भुने हुए बेसन और घी से लड्डू की तरह बनाए जाने वाले मोदक होते हैं। चॉकलेट मोदक भी होते हैं जिसमें चॉकलेट के स्वाद वाले आधुनिक और इंस्टेंट मोदक बनाए जाते हैं। साथ में हमारी सखी बता रही है कि ड्राई फ्रूट्स के भी बन सकते हैं जिसमें अंदर जो भरावण है वो ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम पिस्ता इन सब का भी आप कर सकते हैं। तो ये तो प्रकार बता दिए।
0: इसी तरह से प्रकार ही बताने के लिए एक और संदेश आया है और इन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं, सभी के घर में मोदक का स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है, बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है, इसीलिए मोदक अलग अलग तरह के स्वाद में नजर आते हैं। चावल के आटे के आवरण वाले, नारियल की गुड़ की भरावन वाले मोदक होते हैं, तले हुए मोदक में मैदे गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं और भरावन नारियल या ड्राई फ्रूट्स की जाती है और ये घी में तले जाते हैं। मावा मोदक भी बनते हैं जिनमें मावा चीनी और मेवे से के मिश्रण से इन्हें बनाया जाता है। चॉकलेट मोदक जो है बच्चों के बड़े लोकप्रिय होते हैं जो चॉकलेट और मावा से बनाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट के मोदक में काजू पिस्ता बादाम इस तरह की चीज़ों से इनको बनाया जाता है। तिल और गुड़ के मोदक भी बनाए जाते हैं और तिल गुड़ से पारंपरिक स्वाद वाले मोदक बन जाते हैं। खोया पनीर या दूध वाले मोदक भी होते हैं जो दूध से बनी सामग्री से तैयार किए जाते हैं।
1: जी हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोदक के कई प्रकार होते हैं पर हम कैसे बनाते हैं वो बता रही हैं कि हम मावा में सभी प्रकार के सूखे मेवे डालकर और चीनी मिलाकर घी में तलकर बनाते हैं। अगर चीनी मावा में न डालें तो इसकी चाशनी बनाकर मोदक को घी में तलकर इसे चाशनी में डाल देते हैं और मोदक को चाशनी में लपेट देते हैं, तो वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं इनके घर में, इस तरह से हमारी सखी ने लिखा है। और साथ में बता रही हैं कि बच्चों और युवाओं के बीच में ये चॉकलेट मोदक है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें चॉकलेट और बिस्किट का या फिर नट्स जो आप सूखे मेवे हैं उसका मिश्रण भरकर मोदक का आकार दे सकते हैं। फिर एक मोदक का प्रकार बताया है रसवंती या रसमलाई मोदक।
0: क्या
1: इसमें ताज़े पनीर, मिल्क पाउडर, चीनी और केसर पिस्ता के मिश्रण से बनने वाला है ये मोदक। बहुत नरम और स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा मावा और पनीर मोदक भी बनता है जिसमें मावा और यानी खोया, चीनी, इलायची पाउडर मिलाकर आसानी से जो मोदक का मोल्ड होता है ना उससे उसकी मदद से बन जाता है। फिर एक और है जिसमें कि बेसन सूजी वाला, जैसे कि हमारी एक और सखी ने लिखा था कि बेसन और बारीक सूजी को घी में भूनकर और चाशनी या बूरा मिलाकर सांचे में आप इसे तैयार कर सकते हैं।
0: तो चलिए ये तो हुई बहुत सारे मोदक की बात, अब एक गीत सुन लिया जाए।
1: चलिए।

0: आज के मेहमान दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो साहित्यकार हैं, कथक की नृत्यांगना और कथक पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और वायुसेना से भी उनका अच्छा खासा जुड़ाव रहा है और यायावरी उनकी विशेषता है। वो हैं जानी मानी साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्ते ममता, बहुत आभार आपका।
0: मनीषा जी, चलिए आपको हम बचपन के गलियारों में ले चलते हैं जहां से आपने रेडियो में कदम रखा था और मेरे ख्याल से राजस्थान आकाशवाणी, तो किस जगह पर आपने पहली बार अपनी आवाज रेडियो पर सुनी दी और कैजुअल अनाउंसर के रूप में थी?
1: बिल्कुल बिल्कुल ममता, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और अगर मैं बचपन में कहूँ तो बच्चों के कार्यक्रम आते थे तो हम स्कूल की तरफ से आकाशवाणी में जाते ही थे। और उदयपुर की बात है, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी तब कैजुअल अनाउंसर्स के लिए एक विज्ञापन निकला था और हमारा कॉलेज और हॉस्टल और आकाशवाणी एकदम पास पास ही थे तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और मैंने ऑडिशन दिया और हो गया। उसके बाद मैं लंबे समय तक, जब तक मैंने अपनी पढ़ाई एमफिल नहीं कर लिया तब तक मैं आकाशवाणी से जुड़ी रही। आकाशवाणी उदयपुर की बात है ये।
0: जी, तो लेखन में कैसे आपने कदम रखा?
1: मजेदार बात बताऊं तो आकाशवाणी ही वो एक योजक रहा मेरे और साहित्य के बीच में। हुआ ये कि क्योंकि मैंने बीएससी किया था और आकाशवाणी में आने के लिए और वहां पे अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको अच्छी हिंदी की जरूरत होती है और अच्छी किताबें, वहां की लाइब्रेरी बहुत रिच थी तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी आके मुझे लगा कि मुझे हिंदी में एमए करना चाहिए और मुझे अपनी हिंदी पे काम करना चाहिए।
0: क्या बात।
1: तो मैंने बीएससी के बाद सीधे हिंदी में एमए किया और साहित्य से जुड़ाव मेरा वहीं से शुरू हुआ और एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: तो पहली बार आपने कविता लिखी या कहानी लिखी?
1: पहली मैंने कविताएं लिखी। कविताएं तो मैंने बचपन से लिख ली, जब मैं किशोरावस्था में थी तब माँ कहती थी कुछ लिखो, क्योंकि मेरी माँ को भी साहित्य में बहुत रुचि थी और वो कविताएं लिखती थी तो मैं माँ की डायरी देखती थी तो मुझे लगता था मैं भी कविताएं लिखूं। तो मैंने किशोरावस्था में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम में जो मछली है उसको और एक किशोरी लड़की की जो मानसिकता है उसको कंपेयर करते हुए बचपन में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम।
0: जी जी
1: हाँ, बस ये कि मेरा मन इस एक्वेरियम में मचलती हुई मछली जैसा है, उसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी और तब मैं 12 साल की थी तो मैंने कविताएं पहले लिखना शुरू किया लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे कविताओं में ज्यादा जगह नहीं मिल पाती अपने आप को अभिव्यक्त करने की तो मैं कहानी की तरफ आई।
0: जी, तो पहली कहानी छपने की बड़ी लोगों को खुशी होती है और इंतजार भी होता है, तो पहली कहानी छपने का वो इंतजार और वो खुशी साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: बिल्कुल ममता, मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी और मैं भेजा करती थी, साक्षात्कार एक पत्रिका होती थी, भैरव जी उसके संपादक थे, हंस में मैं बहुत सारी कहानियां भेजती थी और तुम हैरत में पड़ जाओगी कि तब संपादक बड़े कड़क होते थे और मेरी बहुत सारी कहानियां वापस आ जाती थी और उस निराशा को मेरे जो सहयात्री हैं अंशु वो देखते थे तो कई बार वो जो खेत सहित पत्र आता था ना उसको ऑफिस में ही फाड़ देते थे, आके बताते नहीं थे कि कहानी लौट आई है। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसको स्वीकार किया, मतलब 5-6 कहानियों के खेत सहित वापस आने के बाद एक कहानी प्रेत कामना राजेंद्र यादव जी ने स्वीकार की और जब वो छपी तो मेरी खुशी का पारावार नहीं था। और सच पूछो तो मैं साहित्य की दुनिया में बस एक कहानी के लिए आई थी।
0: क्या
1: वो अलग बात है कि साहित्य की दुनिया ने मुझे रोक लिया क्योंकि वो कहानी छपी उसके बाद मेरे पास फोन आया कि अगली कहानी कब। तो मुझे लगता है कि आपकी जो नियति होती है वो निश्चित कर लेती है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने तो कथक भी चुना था अपने लिए, मैंने उसके अलावा बहुत सारी रेडियो में भी जाने का सोचा था लेकिन उसके बाद ये हुआ क्योंकि वायुसेना अधिकारी की पत्नी थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे क्योंकि हर 3 साल बाद सामान बांधो और चल पड़ो
0: जी।
1: तो मुझे लगा कि लिखना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
0: क्या बात है।
1: तो मैंने कहानी लिखी और वो छपी।
0: आपने जिक्र किया अंशु जी का, जो आपके पति हैं, और वायुसेना का जिक्र किया कि वायुसेना अधिकारी, तो वायुसेना में पति होना बहुत ही कड़क मिजाज होता है और माहौल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो कैसे आपने साधा, अपने जीवन को कैसे जोड़ा?
1: मैं सच बताऊं ना तो मैं जितने सैन्य अधिकारियों से मिली हूं उनसे नरम मिजाज कोई नहीं होता। वो होते होंगे अपनी कार्यशैली में डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन होता है, समय की एक सीमा रेखा को वो समझते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत औपचारिकताएं भी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सेना में पत्नियों का सम्मान बहुत है, और क्योंकि हम बहुत सारे समय अकेले रहती हैं तो आपस में एक परिवार की तरह रहता है। तो अंशु से तो, मतलब अगर मैं बात कहूं तो उनसे बड़ा मेरे लिए सपोर्टर कोई नहीं रहा। उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया कि मैं लिखूं, और तुम्हें याद होगा कि मैं एक हिंदी नेस्ट नाम से एक साहित्यिक पत्रिका, वेब पोर्टल, जो कि हिंदी का पहला वेब पोर्टल है, वो हमने शुरू किया था। वो अंशु ने ही चाहा था कि मैं साहित्य में इस तरह से इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने उनकी सहायता से उसे आरंभ किया था।
0: जी,
1: तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, कड़क वो नहीं है बिल्कुल भी, और अनुशासित है।
0: वैसे तो बहुत नरम दिल लगते हैं बातचीत में, क्योंकि हमारी भी मुलाकात हो चुकी है, और आपकी जो एक कार्यशाला है उस कार्यशाला में बाकायदा वो सहयात्री से नजर आते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पति का साथ आपकी निजी जिंदगी में तो होता ही है, लेकिन आपकी व्यावसायिक जिंदगी में जहां पे आपका लेखन है वहां पर अगर पति पूरी तरह समर्पित हो तो ये बड़ी बात है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
1: बहुत शुक्रिया।
0: और अब बात चल रही है अंशु जी की, आपके जीवन साथी की, तो मुझे लगता है यहां पर एक गाना होना चाहिए उनके नाम।
1: बिल्कुल, मुझे याद है कि जब हमारी सगाई हुई थी तो मुझसे कहा गया कि कोई गाना सुनाइए, तो मुझे उनकी आंखें देखकर एक ही गाना याद आया, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं।
0: तो सुनते हैं घर फिल्म का।

0: गाने के बाद मनीषा जी हम आपकी साहित्यिक दुनिया पर दस्तक देते हैं। आपके 7 उपन्यास पूरे हो चुके हैं और अपने साहित्य की दुनिया में उपन्यास लिखना बहुत चुनौती की बात होती है, तो कहाँ से शुरू करें हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी लेखन यात्रा बहुत लंबी है। हम शिगाफ से शुरुआत करते हैं, कैसे आपके जहन में ये विचार आया, विस्थापन की बातें हैं इसमें?
1: बिल्कुल ममता, अगर मैं कहूँ तो कश्मीर हम लोग रहे हैं तो,
0: और कश्मीर का पूरा परिदृश्य है।
1: हाँ, कश्मीर मेरा रहना हुआ और वहाँ के अनुभवों को देखना हुआ, तो मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि जब भी कोई एक पेड़ गिरता है तो दूसरा पेड़ भी उस विस्थापन को झेलता है। तो जब वहाँ से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने ही उस आतंकवाद का सारा दुख झेला है, जो लोग रह गए थे और उन लोगों ने भी अपनी खुली जड़ों के साथ उस विस्थापन को झेला है वहीं रहकर। तो कश्मीर शिगाफ जब मैंने लिखा तो वो एक दरार की बात है, एक जमीन के भीतर पड़ जाने वाली दरार की बात है जिसका भरना मुश्किल होता है
0: जी।
1: तो मैंने उसको आंखों से देखा था तो मुझे लगा कि मेरे को इस पे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पूरी घटनाएं देखी, काफी घटनाएं देखी। वो एक ऐसा समय था जब आपकी अगर श्रीनगर या अनंतनाग या अवंतीपुर पोस्टिंग होती है तो आपको सशस्त्र गाड़ियों में स्टेशन से सिर्फ वहां जाते थे, और मैंने कोई कश्मीर नहीं देखा था तब। पोस्टिंग हुई 1-1.5 साल और बस वहां रहे और आ गए, ऐसा मतलब कोई कश्मीर देखने की जो उत्साह था वो देख नहीं पाए। लेकिन उसके बहुत सालों बाद जब मैं लेखक बन गई, तो जब मैं युवा लेखक थी तो साहित्य अकेडमी की एक कार्यशाला हुई।
0: अभी भी युवा लेखक हैं आप कोई कह नहीं सकता कि आप
1: तो उस कार्यशाला में दोबारा से पहलगाम जाना हुआ, तब मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे जहन में आई कि मैं उनको लिखूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और वो ब्लॉग का जमाना था तो ब्लॉग पे काफी चीजें, मेरे को लगता था कि ब्लॉग को एक फॉर्म बना के शिगाफ नाम से उपन्यास लिखा जाए, तो मैंने उसको लिखा दो सहेलियों के बहाने से।
0: तो और ये उपन्यास बहुत चर्चित हुआ, लोगों ने इसे एक पाठशाला की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके और हम सबके बाद की पीढ़ी के युवा लेखक आते हैं तो वो उपन्यास लिखने के लिए इस उपन्यास को पढ़ते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ कि मैंने भी उसे इसलिए पढ़ा कि देखती हूँ उपन्यास लिखने की शैली कैसी होती है और उसमें से क्या कुछ सीखा जा सकता है, तो मेरे लिए भी बहुत ये बड़ी बात है और इस उपन्यास को मैंने भी बहुत पसंद किया है। अब हम आपके उपन्यास स्वप्नपाश की बात करते हैं जो मानसिक तनाव की और एक तरह से मानसिक रोग की बात भी है उसमें।
1: बिल्कुल,
0: तो कैसे आपने लिखा, क्या किसी डॉक्टर से सलाह ली, क्या आपके जहन में कहाँ से आया किरदार ये?
1: दरअसल सिज़ोफ्रेनिया शब्द पहले शिगाफ में आया था
0: जी।
1: तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, पर मुझसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वायुसेना में ही थे डॉक्टर दीक्षित, उन्होंने पूछा क्या तुम जानती हो सिज़ोफ्रेनिया एग्जैक्टली होता कैसे है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे कुछ केसेस पढ़ने के लिए दिए
0: जी।
1: तो मैं चौंक गई कि ऐसे भ्रम होते हैं लोगों को कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनके सामने कोई बैठा है जो कि है ही नहीं, एक काल्पनिक पात्र उनके जीवन में हमेशा, या कई कई काल्पनिक पात्र हमेशा साथ चलते हैं। तो ऐसा होना, जब मैंने वैसे केस हिस्ट्रीज पढ़े तो मुझे लगा कि मुझे ये किताब

0: लिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में मनोविदलन या मानसिक जो विक्षेप हैं उन पे बहुत कम किताबें हैं। तो क्योंकि मैं फिर यहाँ विज्ञान काम आया, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, तो मेरी उत्सुकता थी इस मनोविकारों के बारे में जानने की। तो मैंने काफी रिसर्च किया, मैंने कुछ पात्रों से मिली, मैं
1: जी
0: एक ऐसे पात्र से मिली जो बिल्कुल ही देसी एक आदमी था। उसके बारे में मैंने जाना कि वो रास्ते में चल रहा था और रास्ते भर बात करता जाता था, सामने से हट जाओ नहीं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे। तो वो अपने आप से बात करता था। हम पहले कहा करते थे ना कि ये लोग पागल हैं या ये लोग उनके ऊपर कोई साया है, तो वो सब नहीं होता था। तो मैंने बहुत गहरे से पढ़ा, तो जो सिज़ोफ्रेनिक होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनको वो सब चीजें दिखाई देती हैं। तो जैसे होता ना कि हमारी कोई अखबार छप के आया, उसमें डबल छपाई आ जाती है, तो ऐसे ही केमिकल लोचा है जिससे दिमाग में भ्रम पैदा होते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे भ्रमों के साथ जीना कितना मुश्किल होता होगा, तो मैंने गुलनाज फरीबा नाम के एक कलाकार को लिया।
1: जी जी।
0: क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बहुत ब्रिलियंट, बहुत प्रतिभाशाली लोगों में सिज़ोफ्रेनिया होता है। अगर हम देखें तो बहुत सारे पेंटर्स वॉन गॉग सहित सिज़ोफ्रेनिया के शिकार रहे हैं। तो तब मैंने उसको एक पेंटर बनाया और उसके जीवन को लिखा। तो ये लिखना मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था, इतना आसान नहीं था।
1: और पढ़ना भी बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे तो कुछ घटनाएं बहुत लोमहर्षक, मतलब जैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे वो बचपन की जो कुछ बातें उस कैरेक्टर की, लड़की कैरेक्टर है, उसके बचपन की यादें जो आपने ताज़ा की करवाई, कि मतलब डॉक्टर पूछ रहा है सवाल और वो अपनी यादों में जाती है, तो वो सब भी लगता है कि वो लड़कियों के साथ अमूमन ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पुरुष किसी न किसी बहाने स्पर्श करते हैं, तो वो बड़ा त्रासद होता है,
0: अवांछित तो, स्पर्श।
1: हाँ, और वो समाज को एक संदेश भी देता है उपन्यास। ऐसा ही एक उपन्यास है पंचकन्या, जिसे आपने लिखा है, जिसमें स्त्री पात्र हैं, तो क्या स्त्री पात्रों के जरिए कुछ समाज को संदेश भी देना चाहती हैं?
0: बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती थी कि जो हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, जिसको हम आयात कर लेते हैं, हम इसको पाश्चात्य दुनिया से लाते हैं, कि हम सिमोन द बोवार और वर्जीनिया वुल्फ और बहुत सारी जो फेमिनिस्ट जो पाश्चात्य उसमें हुई हैं दार्शनिक, तो हम उसको हूबहू भारत पे लाके लागू कर देते हैं। वहीं मैंने एलिस वॉकर को देखा, उन्होंने कहा कि हम लैटिन अमेरिकन औरतों का फेमिनिज्म पाश्चात्य आधुनिक स्त्रियों से अलग है, क्योंकि हम नाचना पसंद करती हैं, हम श्रृंगार करना पसंद करती हैं,
1: और गहने पहनना,
0: गहने पहनना। और वहां पे अगर पाश्चात्य बिल्कुल यूरोपियन अगर हम फेमिनिज्म की तरफ देखें, तो वहां तो वो सजने को पुरुष के लिए मान लेती हैं। तो मुझे लगा कि हमारा अपना फेमिनिज्म कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में भी रहा होगा, ऐसे ही तो नहीं हमारे यहाँ गार्गी और मैत्रेयी जैसी या लोपामुद्रा जैसी स्त्रियां हुई हैं। तब मैंने एक लेख पढ़ा था पंचकन्याओं, द वुमन ऑफ सबस्टेंस, एक आईएएस अधिकारी थे प्रदीप भट्टाचार्य जी, उन्होंने इन पंचकन्याओं पे लेख लिखा था कि ये वे स्त्रियां हैं, ये पांचों जो कन्या कही गई, लेकिन इनसे एक से अधिक पुरुषों से इनके संबंध रहे। तो मैं चौंक गई कि ऐसे फिर क्यों कन्या कहा गया होगा। तो उनका कन्या होना उन पुरुषों की छाया में होने से नहीं था, वो अपने आप में कन्या थी।
1: जी जी।
0: कि मतलब उनका पुरुष की छायाएं उनके ऊपर नहीं थी, सतियों की तरह वो अपने आप में आजाद स्त्रियां थी। और पुराणों में कहा जाता है इन पांचों स्त्रियों के स्मरण मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं। ये स्त्रियां कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इन सब के पैरेलल मैंने आधुनिक स्त्रियों को गढ़ा और इस उपन्यास को लिखा। तो ये मेरा शिगाफ के बाद दूसरा उपन्यास था जिसे लिख के मुझे संतुष्टि हुई।
1: जी, और आगे भी उपन्यास की यात्रा जारी है। यहाँ पर हम एक विराम देते हैं और एक गाना सुनते हैं। कौन सा?
0: बिल्कुल, एक गाना मुझे गृह प्रवेश फिल्म का बड़ा पसंद था।
1: हाँ।
0: आप अगर आप न होते तो भला क्या होते, लोग कहते हैं कि पत्थर के खुदा होते।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना।

0: आप अगर आप न होते तो क्या होते, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक साहित्यकार न होती तो क्या होती, क्योंकि आपने कथक की दुनिया में भी कदम रखा था और विशारद किया है,
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए क्या।
1: मैं बहुत कुछ होना चाहती थी ममता, मैं यकीन नहीं करूंगी, मैं मॉडलिंग की दुनिया में जाना
0: क्या बात
1: चाहती
0: है
1: थी लेकिन पापा के एक थप्पड़ ने और डांट ने कहा नहीं, वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय नैतिकताओं का जमाना था, लड़कियों को बहुत सुरक्षित रख के चलने का जमाना था। और मैं एक बहुत छोटे शहर राजस्थान के एक बहुत छोटे कस्बे से आती हूँ, चित्तौड़गढ़ से,
0: जी
1: तो जहाँ पे सोच पाना भी मुश्किल था कि आप मुंबई जाओगे और मॉडलिंग करोगे। उसके बाद फिर मेरे को डांस मेरा दूसरा पैशन था, तो कथक मैंने सीखा, तो आधा कथक मैंने शादी से पहले कॉलेज टाइम में सीखा और आधा शादी के बाद बच्चों को थोड़ा स्कूल भेज के दोबारा सीखा,
0: जी
1: तो
0: जी
1: मैंने अपना विशारद पूरा किया।
0: जी
1: तो बहुत सारे ऐसे सपने थे, लेकिन अंततः मेरे हिस्से में एक डेस्क आई और पेन आया और कलम आई कि मुझे लिखना है। तो कथक की ये बात है कि मुझे संयोग से ग्वालियर में रायपुर घराने के एक टीचर मिल गए थे, तो
0: जी
1: मणिका जी थी, और तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया और मैंने अपना विशारद पूरा किया।
0: जी तो बात कथक की चली है तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कथक में जब कोई इस तरह मतलब विशारद किया है तो बड़ी बात है, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्टेज परफॉर्म करूं और कोई बड़े आयोजन में भाग लूं, हिस्सा लूं?
1: वही बात फिर यायावरी की आ जाती है ना, कि जैसे ही ऐसा अवसर आया कि 3 साल हो, मतलब मेरे को सीखते हुए 6 साल हो गए,
0: हाँ
1: तो ट्रांसफर का फरमान आ गया। और होता ये कि आप अपने गुरुजी के साथ ही आप सामूहिक कथक एकल तो होता ही है, और आरंभ में आपको सामूहिक प्रस्तुतियां देनी होती हैं, तो ट्रांसफर हो गया और हमारा जो समूह था उससे मेरी दूरी हो गई, तो वो कथक वहीं छूट गया। लेकिन मैंने छोटे बच्चों की क्लासेस ली और छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ कोरियोग्राफीज की।
0: क्या बात है,
1: हाँ,
0: वाह।
1: मुझे याद है कि मैं अपने जो मनिका मैम थी उनके यहाँ जाती थी, तो मैं कथक पे भी किताबें पढ़ना पसंद करती थी। वो कहती हम लड़कियों को कहते रहते हैं किताबें पढ़ो, जो कथक का इतिहास है, तुम ही एक हो जो ढेर ढेर सारी किताबें ले जाती हो। तो तब तक मैंने, जब तक विशारद किया, मैं ना बहुत सारा कथक का इतिहास, बहुत सारा विश्लेषण वो पढ़ चुकी थी। और अगर मैं कहूं कि उस इतिहास और विश्लेषण के चलते फिर मैंने बिरजू महाराज पे एक किताब लिखी, बिरजू लय,
0: जी
1: तो मेरा सारा फिर वो रिव्यू और समीक्षा और कलात्मक समीक्षा, कलात्मक वैचारिक की तरफ ध्यान चला गया।
0: जी
1: फिर मैंने प्रेरणा श्रीमाली जी का लंबा इंटरव्यू किया, बिरजू महाराज पे किताब लिखी, तो मेरा जो कथक करने का और मंच का जो शौक था
0: पूरा हुआ
1: वो
0: यहाँ पर।
1: लेखन की तरफ चला आया। और आज भी मैं अगर कला वैचारिकी पे कथक पे लिखूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
0: बिल्कुल, और ये जो आपने कहा ना कि मेरे हिस्से में लेखन आया, मेरे ख्याल से कि अगर ये ना आता तो हम सब लोग वंचित रहते। और आपने लेखन की दुनिया में अपना नाम दर्ज किया विशिष्ट तरीके से, और महिलाओं के लिए खासतौर से ये प्रेरणा की बात है। यहाँ पर हम एक गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि बात कथक की चली है, और कोई गाना ना हो जिसमें नृत्य वाली बात ना हो तो फिर
1: हाँ,
0: अधूरा सा
1: मुझे
0: लगे।
1: आम्रपाली फिल्म बहुत पसंद थी और मैं उसमें वैजयंती माला के डांसेस देखती ही रह जाती थी, और मुझे जो बहुत पसंद था, और मैंने कॉलेज में इस गाने को एक प्रतियोगिता में किया भी था और प्रथम पुरस्कार मिला था मुझे, नील गगन की छाओं में
0: क्या
1: दिल
0: बात
1: रैन
0: है,
1: गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है। वैसे कथक सीखा है आपने तो निश्चित रूप से डांस के साथ थोड़ा थोड़ा तो गुनगुनाती होंगी, और हमने सुना है अगर ये गुनगुना के आप सुनाए तो हमें ज्यादा अच्छा
1: ये
0: लगेगा।
1: तो बहुत ऐसा क्लासिकल गाना है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नी

0: मनीषा जी, आपकी कौन सी कृति आपके सबसे दिल के करीब है?
1: निश्चित तौर पे मल्लिका।
0: मल्लिका? हाँ, हम जानते थे, क्योंकि साहित्य की दुनिया में, अपने श्रोताओं को बता दें जो साहित्य में दखल नहीं रखते, कि मनीषा कुलश्रेष्ठ को इन दिनों साहित्य की मल्लिका कहा जाता है।
1: अरे,
0: तो आप मल्लिका के बारे में बताइए, कहाँ से इंस्पायर हुए, क्योंकि ये एक यथार्थवादी उपन्यास है।
1: बिल्कुल, हुआ ये कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में बहुत पहले मल्लिका पे एक आलेख आया था जिसे मैंने पढ़ा था। उसके बाद कथादेश पत्रिका आती है, उसमें मल्लिका पर एक अंक निकला था, मल्लिका और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे। तो मैं बहुत उत्सुक हो गई थी कि मल्लिका पत्नी तो नहीं थी, अगर हम उनको कहें कि वो उनकी प्रेरणा थी, तो उनका भारतेंदु जी पे असर और मल्लिका पे जो जितने आलेख मैंने पढ़े, तो मुझे उसने बड़ा आकर्षित किया कि ये मल्लिका कैसी रही होंगी जिन्होंने भारतेंदु जी के लिए पहले अनुवाद किए बंगला से हिंदी में, और फिर हिंदी में खुद उपन्यास लिखे और कुछ पत्रिकाएं संपादित की, और लगातार भारतेंदु जी के साथ में वे बनी रही। तो उनका एक फोटो भी उसमें छपा करता था, बड़ी बड़ी आंखों वाली एक हल्की सी उदास स्त्री जो बाल विधवा रही थी। तो मुझे मल्लिका के इस चरित्र ने सालों सालों सालों हॉन्ट किया, मेरे अंदर रही और हमेशा मुझे कुरेदती रही। तो एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने बहुत सारी किताबें मंगाई, बहुत सारी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनकी जीवनियां, आत्मकथा तो वो नहीं लिख सके थे, जीवनियां जो थी वो मंगवाई मैंने, श्याम सुंदर दास जी की और ब्रजरतन दास जी की। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उन किताबों में ये हुई कि जहां मल्लिका का जिक्र था, उन अध्यायों का नाम था चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा। तो ये बात मुझे आहत कर गई। तब मैंने मल्लिका का लिखा हुआ पढ़ा, जितने भी उनके आधे अधूरे कुछ पूरे उपन्यास हैं वो मैंने पढ़े, और जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि मल्लिका के अंदर एक कमाल का पोटेंशियल था लिखने का, और उनकी दृष्टि उस समय में, स्वतंत्रता से पहले, उस समय में इतनी सुलझी हुई और खुली हुई थी कि वो बहुत अच्छे से स्त्री अधिकारों पे लिख सकती थी। तब मैंने सोचा कि मैं मल्लिका के जीवन पे लिखूं, लेकिन सबसे मुश्किल ये थी कि मल्लिका का बचपन, मल्लिका के बनारस आने से पहले का जीवन किसी को कुछ नहीं मालूम था, वो सब मुझे कल्पनाओं से और थोड़े तथ्यों से बुनना पड़ा। मैंने कहीं पढ़ा कि वो बंकिम जी के ही कुल से कहीं दूर से संबंधित थी, तो मैंने उसमें बंकिम जी को भी एक पात्र के तौर पर रखा, और मल्लिका काफी करीब उनको बताया कि मल्लिका उनसे प्रेरणा लेती थी। और मजेदार ये बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बंकिम के उपन्यासों का मल्लिका की सहायता से अनुवाद भी, और एक और जो बात है, उपन्यास शब्द हिंदी साहित्य में प्रेमिका के जरिए आया उपन्यास, क्योंकि अपने यहां बंगला में नॉवल को उपन्यास कहते थे, बाकी गुजराती और मराठी में नवल कथा, हिंदी में आख्यान ही कहा जाता था। तो जब मल्लिका आई तो ये इस पूरी विधा का नाम अपने साथ लाई।
0: क्या बात है, ये जो सूक्ष्म बातें बताई हैं, लेखन के साथ जो लेखन की जो परतें होती हैं वो लेखक ही बता सकता है, पाठक उसे पढ़ता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो एक लेखक ही बता सकता है।
1: मल्लिका लिखने के दौरान ना मुझे बड़े अजीब अजीब अनुभव हुए, जैसे कि मैंने उसमें एक सीढ़ियां रची, क्योंकि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर कभी पहले नहीं देखा था, तो मैंने ऐसी सीढ़ियां रची जिनसे होके मल्लिका सीधे भारतेंदु जी के कमरे में जाती थी बिना उनकी पत्नी को पता चले, और भी लेखक उसी से जाते होंगे, मैंने ऐसी कल्पना की। और जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जब मल्लिका का वहां पे विमोचन हुआ और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो सीढ़ियां वहां थी।
0: गजब, क्या बात है।
1: तो ऐसे ऐसे अगर मैं कहूं कि इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: और वो उपन्यास खूब चर्चित भी हुआ, सराहा भी गया, निश्चित रूप से जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें पढ़ना चाहिए, तो जो आपकी बातें हैं उन बातों से तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे और एक खास बात पता चलेगी कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में उपन्यास के माध्यम से जानना एक अलग तरह का अनुभव होता है। आपकी अन्य कहानियों में भी मनीषा जी सूक्ष्म परिदृश्य होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं तो शब्दों के माध्यम से दृश्य देखते हुए चलते हैं, और स्त्री पुरुष संबंधों को भी बहुत गहराई से आपने छुआ है। आप अपने शब्दों में बताइए कि कौन सी वो कहानियां हैं जिनमें ये सूक्ष्म दृष्टांत हम देख सकते हैं।
1: सबसे पहले तो कठपुतलियां ही, जिसे शहरी प्रतिनिधि कहानी कहा जाता है
0: जी,
1: तो कैसे एक ग्रामीण लड़की की शादी एक कठपुतली वाले से हो जाती है और वो अपने आप को महसूस करती है कि उसके तो धागे बांध दिए हैं, और उसकी विवाह से पहले का एक प्रेमी होता है वो उसे मिलती है। ऐसी कहानी है जिसमें कोई विलन नहीं था, उसमें समय विलेन है, तो वो लिखने में मुझे आनंद आया क्योंकि मैं मरुस्थल के उन दृश्यों से वाकिफ हूँ। मैंने वो आंधियां देखी हैं, पीली आंधियां जिनमें घिर के मटके से पानी भर के लाने वाली स्त्रियां घिर जाती हैं और खो जाती हैं।
0: क्या बात तो है, राजस्थान में,
1: राजस्थान तो मैं मरुस्थल रचना चाहती थी, मैं वो दृश्य रचना चाहती थी जो हिंदी के पाठक ने नहीं पढ़े थे, तो मैंने इसलिए भी कठपुतलियां लिखा। और खाप पंचायतों का दौर था तो वहां पर क्योंकि वो अनचाहा गर्भ है उसे सुगना को, तो उसके पर इल्जाम लगता है और उसकी हथेलियों पे गर्म ईंट रखने का एक दृश्य है, तो वो मैंने रचा, एक आंधी का दृश्य रचा। तो कठपुतलियां मेरी आरंभिक कहानियों में से है। तब मुझे पता चला कि कहानी में दृश्यात्मकता की कितनी आवश्यकता और कितना महत्व होता है, क्योंकि वो दृश्य आपको उनमें एक छोटी सी खिड़की खोलते हैं और कहानी में प्रवेश देते हैं। तो बतौर पाठक भी मुझे वो कहानियां पसंद आती हैं जिनमें सूक्ष्म दृश्यात्मकता हो, जैसे उसमें एक सांप है जो टेढ़ा चलने वाला सांप है जिसको साइड वाइंडर कहते हैं, तो वो सांप क्योंकि वो मरुस्थल में ही मिलता है वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है।
0: क्या बात है,
1: तो आप सूक्ष्म प्रकृति को भी वहां पे पात्र बनाएं। और कोई भी दृश्य रचे तो हमेशा कहा जाता है ना कहानी लिखिए नहीं दिखाइए, तो मैं इस बात में बहुत गहरा यकीन करती हूँ कि कहानी को दिखाया जाए।
0: क्या बात है, तो आपकी बातों को सुनते हुए हमें खुद लग रहा है कि मैं एक खुद पाठक बन गई हूँ और आपकी कहानियों को याद कर रही हूँ, वो दृश्य मेरे सामने चल रहे हैं कि सचमुच लिखते समय ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे लेखन की दुनिया में साहित्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक मास्टर पीस है ये बातें, और पाठशाला की तरह ये, और रेडियो सुन सुन के तो बहुत कुछ सीखा जाता है, तो आपकी ये बातें सुनकर हमें लगता है साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने वाले लोग सीखेंगे। यहाँ अब हम आपके इस पर आते हैं शाल भंजिका, तो शाल भंजिका के बारे में भी बताइए कि कैसे आपके मन में विचार आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको लिखने की।
1: शाल भंजिका की प्रेरणा, क्योंकि शाल भंजिका तो एक प्रेम कथा है, तो कोई इसके लिए एक खास किस्म की ऐसे प्रेरणा या इस किताब ने मुझे लंबा अपने भीतर रखा और उसके बाद मैंने रचा, ऐसी बात इसके साथ नहीं थी, इसको मैं सीधे ही लिखती चली गई क्योंकि मेरे पास
0: मुश्किल होता है प्रेम कहानी लिखना।
1: जब रविंद्र कालिया जी का फोन आया था कि मुझे तुम्हारा एक लघु उपन्यास चाहिए जो मुझे ज्ञानोदय में छापना है पूरा का पूरा, तो उस दबाव के तहत तब मैं देखती थी कि फिल्म मेकर्स, तब नए नए फिल्म मेकर्स आए थे और उनकी हिंदी फिल्म में ही और विदेशी फिल्मों में भी वो अलग तरह से स्त्रियों को अपनी कहानियों में ला रहे थे, तो मैंने एक फिल्म मेकर और उसकी पूर्व प्रेमिका जिसको वो रचना चाहता है, वो अपनी फिल्म में लाना चाहता है, उसके लिए वो जीवन भर भटकता है ढूंढता है वैसी ही कोई पात्र, तो मुझे लगा कि ये जो तलाश है इसको मैं लिखूं, और ये अनायास ही ऐसे ही लिखी गई छोटी सी किताब है। और सब इसको पढ़ते हैं तो पूछते हैं शाल भंजिका नाम क्यों, क्योंकि शाल भंजिकाएं वो होती हैं जो एक डाल को पकड़ के खड़ी होती हैं, बौद्ध काल की मूर्तियों को कहा जाता है जो उर्वरता का प्रतीक है। इसमें जो मेरी नायिका पद्मा है हमेशा एक पेड़ की डाल पकड़ के फोटो खिंचाती है,
0: अच्छा,
1: तो वो जो फिल्म मेकर है वो हमेशा कहते हैं तो हमेशा फोटो खिंचाते हुए शाल भंजिका क्यों बन जाती हो, तो एक सिंबॉलिक तरीके से इसका शीर्षक आया है
0: जी। और कितनी सारी परतें खुल रही हैं आपके आपके लेखन की, क्योंकि पढ़ते समय ये बातें हमारे जहन में नहीं आती हैं। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती
0: हूँ। क्या बात है, हम सबका पसंदीदा गाना फिल्म तुम्हारे लिए, लता दीदी की आवाज, सुनते हैं यही गाना।

0: मनीषा जी, एक साहित्य के अलावा आप में जो गुण हमें दिखाई देता है बतौर एक पाठक और सोशल मीडिया के जरिए भी हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आपके भीतर एक यायावरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है, मुझे लगता है सच होगी। और आप विदेशों की यात्रा बहुत की है, वहां से भी कुछ उपन्यास आपने जहन में लाया है, त्रिमाया और किनाया की हम बात करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल ममता, मेरी देश में जो एक खास किस्म की यायावरी रही, तो हुआ ये कि मेरे लास्ट जो 3 पोस्टिंग्स थी संयोग से ऐसी हुई कि मुझे मात्र सत्तात्मक समाजों का पता चला।
0: अच्छा।
1: जल्दापारा हमारी पोस्टिंग थी, वहां पे हाथियों की मात्र सत्ताएं थी और मैंने हाथियों के रेस्क्यू सेंटर और हाथियों के झुंड के जरिए वहां जाकर पहली बार जाना कि इनके झुंड का मुखिया हाथी नहीं, हथिनी होती है। और बड़ी सूझबूझ से वो हथिनियां अपना परिवार बड़ा बड़ा 50-50, 60-60 हाथियों का लेकर चलती हैं। वो पोस्टिंग हुई, उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई शिलोंग। शिलोंग में खासी समाज था जहाँ पे मातृवंशी प्रणालियां होती हैं, वहाँ स्त्री मुखिया होती है और स्त्री की जितनी जायदाद है उस सबसे छोटी बेटी को मिलती है।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद हमारी तीसरी पोस्टिंग हुई त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में वहाँ नायर समाज था जहाँ पे लंबे समय तक मातृवंशी प्रणाली चली थी समाज की। तो मुझे लगा कि ये चीज कुछ मुझे कह रही है कि मैं मात्र सत्तात्मक समाजों और मातृवंशी समाजों के बारे में पढ़ूं और जानूं और लिखूं। तो मैंने हाथियों से शुरू किया पढ़ना और मैंने देखा कि हमारी मातृवंशी प्रणालियों को तो बहुत चुनौतियां हैं।
0: जी जी।
1: जैसे नायर जो मातृवंशी प्रणाली थी उसे तो समाप्त कर दिया गया था पुरुषों के इंटरवेंशन से, क्योंकि उनको शर्म आती थी कि उनके पिता कौन है उन्हें नहीं पता।
0: बिल्कुल।
1: तो जब वो ब्रिटिश राज्य आया और बर्तानवी नैतिकता, जो जिसे हम विक्टोरियन नैतिकता कहते हैं, वो आई, तो नायर समाज ने अपने आप को बदलने का ठाना और रानी सेतुलक्ष्मी के हस्ताक्षर से मात्र सत्ता समाप्त कर दी गई।
0: जी जी।
1: तो यही खासी समाज भी एक आजकल झेल रहा है कि इनकी जो मातृवंशी प्रणाली है इसको समाप्त करने की बार बार आंदोलन होते हैं, लेकिन हाथियों में सदियों सदियों सदियों से अभी तक कुल माताएं हैं, उनको कोई नर हाथी आके चुनौती नहीं देते कि तुम अपना ये कुल खत्म कर दो।
0: जी।
1: तो इसके बरक्स मैंने मनुष्यों और हाथियों के व्यवहार को और मात्र सत्तात्मक समाजों के अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को त्रिमाया उपन्यास में लिखा। तो एक तो यायावरी मुझे यहाँ काम आई।
0: और यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं, मुझे बताइए कि त्रिमाया जो हाथियों की ये जो बातें आप बता रही हैं इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें, तो ये आपको कहाँ से पता चली, किस तरह का रिसर्च किया आपने और कहाँ से? दूसरी बात कि ये कितना चुनौतीपूर्ण था ये?
1: बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले तो शौकिया मैंने रिसर्च किया क्योंकि मैं जल्दापारा में थी, वहाँ रेस्क्यू सेंटर था हाथियों का, तो वहाँ पे एक लैला नाम की हथिनी थी और ढेर सारे अनाथ हाथियों के बच्चे थे। उन सबको लैला ने बड़ा किया और लैला ने अपना एक झुंड बना लिया और वो जंगल में विचरने लगी और कई बार रेस्क्यू सेंटर आती थी और जंगल में चली जाती थी, उसका अपना झुंड था। तब मैंने जानना शुरू किया, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े हाथियों के कॉरिडोर्स के बारे में, मैंने रिसर्च किया कि कैसे हम मनुष्यों ने हाथियों के कॉरिडोर चाय बागानों में और खेतों में बदल डाले हैं और वो आज भी वहीं से गुजरना चाहते हैं क्योंकि वो सदियों से उनकी जो स्मृति में संचित है। तो वो बड़ा संघर्ष है जिसको हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको भी मैं इस किताब में लाई हूं। तो रिसर्च की, लेकिन ये बड़ी आनंदी रिसर्च थी और लिखते समय बड़ा आनंद आया क्योंकि मुझे अपने अंदर एक हाथी को उतारना पड़ा, मुझे महसूस करना पड़ा मेरे एक सूंड है।
0: जी जी जी।
1: जो प्रेम में कैसे काम आती है, भूख में कैसे काम आती है।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे हाथी वाला चैप्टर लिखने में, जो माया है, माया द एलिफेंट, उसको लिखने में सबसे ज्यादा आनंद आया। हालांकि माया मार्गरीटा और माया को लिखने में भी आनंद आया, लेकिन ये सबसे तो पूरा रिसर्च बेस्ड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोधात्मक उपन्यास लिखते हैं, उसको बर्फ के नीचे जैसे झील होती है ना, तो वो जो झील का पानी है वो शोध हो, ऊपर बर्फ रहे, तो ऊपर रचनात्मकता रहे, कहानी रहे, शोध अंदर से झांकता रहे।
0: क्या बात है।
1: तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोध, मेरे ज्यादातर उपन्यास शोध परक है, स्वप्नपाश भी, मल्लिका भी और पंचकन्या भी और अब त्रिमाया, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि शोध कहानी पे हावी ना हो।
0: बिल्कुल। तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं और जो मर्म है वो बचा रहे हैं, और ये तो बहुत ये मार्मिक बन पड़ा है। और आपने बताया भी कि सूंड के जरिए प्रेम करना, कैसे ये कल्पना भी करना कितना मुश्किल होता है कि आप उस हाथी के भीतर उसके मन में घुस के आपने
1: परकाया
0: लिखा
1: प्रवेश।
0: परकाया प्रवेश। और शोध परक मुझे लगता है एक और उपन्यास है आपका जो यायावरी पर ही, किनाया,
1: जी बिल्कुल
0: और
1: घूमता।
0: विदेशों की यात्रा के दौरान। उसमें तो बहुत सारे राइटर्स भी हैं जो
1: नहीं,
0: विदेशी
1: वो
0: लेखक।
1: घुमक्कड़ी वो अलग है। वो घुमक्कड़ी
0: अच्छा,
1: अंग्रेजी
0: जी,
1: साहित्य के गलियारों से, वो तो यात्रा वृत्तांत ही है। लेकिन किनाया मैं तुर्की गई थी, तो तुर्की की यात्रा के दौरान मैंने ये महसूस किया कि वहां पर जितनी आजादी है उतना ही अपनी परंपराओं से एक जुड़ाव है, खास किस्म का स्त्रियों का। तो मैंने वहां स्त्रियों को बहुत उन्मुक्त भी देखा और उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े हुए भी देखा। दरअसल मैं गई थी अपनी बहन के साथ जो कि एक पर्यावरणविद है, वो सॉल्ट लेक पे काम करती है। वो सॉल्ट लेक सोसाइटी की एनुअल मीट थी, तो मेरी दीदी मुझे एक अपने साथी की तरह ले गई थी। तो वहां पे सारे साइंटिस्ट थे जो पर्यावरण की चिंता करते थे, और सुबह वो बोलते थे कि एक दिन पानी सिर्फ आंख में रह जाएगा, और
0: ओ
1: शाम को
0: क्या
1: जम
0: बात
1: के डांस करते
0: है।
1: थे, मस्ती करते थे। तो मैं यही कहती थी, आप लोग सुबह तो इतना डरा देते हो और शाम को आप लोग पार्टी करते हो। तो उनमें से किसी ने मुझे पूछा कि तुम्हें हम में से कोई नायक नायिका मिला क्या, क्या तुम कुछ लिखोगी क्या? तो मैंने कहा आप सब तो मिडिल एज्ड हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, मिडिल एज्ड रोमांस नहीं करते? तो इस कथा में, क्योंकि मैं टर्की की जो यात्रा थी
0: ये हिस्सा
1: उसको
0: आपकी किताब में भी है, मैंने पढ़ा है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ जी,
1: तो मैं इस तुर्की की यात्रा थी, मैं इसको केवल यात्रा वृत्तांत में नहीं ढालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मध्य वयस्य स्त्री पुरुषों के बीच के प्रेम की जो एक गहनता है, एक अनुभव है, और वो जो मनोविज्ञान है, उसको मैं इस उपन्यास में यात्रा के साथ लेके आऊं। तो इसमें समूची आपको तुर्की घूमने को भी मिलेगा, और दो मध्य वयसीय, एक जो इतिहासकार है और एक पर्यावरणवादी स्त्री है, दोनों के बीच का प्रेम, एक परिपक्व प्रेम जिसको हम सच में जिसे मैच्योर प्रेम कहते हैं, वो इसमें मिलेगा।
0: उस प्रेम से मतलब वो देह से आगे है वो प्रेम, हमें लगता है।
1: देह है उसमें, लेकिन देह से आगे वहां पर उस तरह की खींचतान नहीं है जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेम में हम बहुत खींचते हैं एक दूसरे को और अधिकार जमाते हैं। वहां वो अधिकार वाली भावनाएं नहीं है, एक दूसरे को उन्मुक्त छोड़ के, एक दूसरे के ऊपर बिना बोझ बने जो वो प्रेम है वो उसकी है कि तुम दोनों आजाद भी हैं, हमारी वो आजादी भी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये प्रेम से ज्यादा मित्रता और साथ और एक उन्मुक्तता की बात भी है।
0: बहुत बढ़िया लग रही है बातें आपकी, और ऐसे लग रहा है कि वो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये प्रेरक बातें हैं। किनाया हमारी भी अधूरी छूट गई है, तो इसलिए मुझे अब लग रहा है कि अब किसी तरह से ये किताब लेकर कहीं से पढ़ूंगी। और पर्यावरण की बात आप कर रही थी मनीषा जी, और ये जो त्रिमाया है, हाथियों का पूरा समूह है, तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाती हैं, उसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल ममता, सबसे पहले तो मेरा पूरा परिवार बायोलॉजिस्टों का परिवार है, उनमें से मेरी बेटी तक चला आया है वो पूरा जीनोटाइप। मेरे ताऊजी बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, उन पूरी कॉन्फ्रेंसेस में पूरे विश्व भर में जाते थे। मेरी बहन जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके साथ मैं सॉल्ट लेक सोसाइटी में गई, मेरी बेटी, मेरे भाई हैं वो असद रहमानी जी के साथ काम करते हैं और वो पक्षी वैज्ञानिक हैं। तो
0: जो
1: हम
0: रेडियो से बहुत प्रेम करते हैं।
1: रेडियो से, जो आपकी आवाज से ममता प्रेम करते हैं
0: शुक्रिया
1: मनोज
0: सखी
1: कुलश्रेष्ठ
0: जी,
1: उनका नाम है, तो वो
0: सखी सहेली
1: सखी सहेली उनका प्रिय कार्यक्रम है।
0: जी जी
1: तो उन सब के सानिध्य में मैं रही बचपन से, पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम रही घर में। कोई ना कोई, कभी जयपुर में मेरे भाई का काम चल रहा होता था, कभी मेरी बहन सांभर लेक के पक्षियों पे काम कर रही होती थी, तो ये सारा माहौल घर में रहा। तो इस मुहिम को एक अपरोक्ष तौर पे मैं चलाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जमीनी काम तो नहीं कर पाती हूँ कि मैंने
0: जी
1: जमीनी काम किए हों और मैंने कहीं जमीन पे कोई आंदोलन किए हों, लेकिन मेरे लेखन में और लगातार जब मैं लिखती हूँ पर्यावरण पे तो उसके बहाने मेरा एक काम चलता रहता है, और सोशल मीडिया पे भी मेरी उपस्थिति रहती है, और कभी भी इस तरह जयपुर में अगर कोई जंगल कट रहा है तो मैं वहां जरूर जाके खड़ी होती हूँ, और मेरे लेखन में ये बड़ी शिद्दत से आता है। तो किनाया में भी आया है कि कैसे सॉल्ट लेक सिमट रहे हैं।
0: बात इसकी विदेशी जो लिखी आपने तुर्की के बारे में, तो वहां कुछ साहित्यकारों को आपने देखा, जैसे मैंने आपकी किताब में पढ़ा था घुमक्कड़ी, तो उसमें शेक्सपियर का नाम है, वर्ड्सवर्थ का।
1: तो वो एक अलग मुहिम थी। हुआ ये कि 3 बार मुझे इंग्लैंड जाना हुआ, एक बार अवार्ड फंक्शन था, उसके अलावा भी 2 बार मुझे और जाना पड़ा इंग्लैंड। तो हुआ ये कि पहली बार में मैं फ्रॉयड के घर गई, कीट्स के घर गई, तो मुझे लगा कि मैं पूरा यूनाइटेड किंगडम घूम के, उसमें आयरलैंड जो इंग्लैंड का हिस्सा है वो वाला हिस्सा भी घूम के, इस पूरे देश के लेखकों को जिनको हम सब बहुत क्लासिक की तरह पढ़ते आए हैं, उसमें वर्ड्सवर्थ भी है, तो जेम्स जॉयस भी है, तो इन सबको पढ़ा जाए, मतलब इन सबके घरों में जाया जाए। और मजेदार बात यह कि उन सबके घरों को बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम्स में बदला हुआ है और उनको ट्रस्ट चला रही है। और वो जो पूरे शहर है, जैसे अगर मैं बात कहूं तो जेन ऑस्टन का म्यूजियम है वहां पे, बिल्कुल माहौल बनाया जाता है कि आप जाएंगे तो मिस्टर डार्सी आपको मिलेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के, वो वस्त्र पहने हुए,
0: अच्छा,
1: और जेन ऑस्टन के चीजें मिलेंगी। तो जब एक यात्रा में ऐसा हो गया तो फिर तो मुझे जुनून आ गया। मैंने कहा अब मैं स्कॉटलैंड भी जाऊंगी और मैं नदर्न आयरलैंड भी जाऊंगी और हो सका तो डबलिन भी जाऊंगी। तो मैंने ऐसे करके पूरी यात्रा की 3 बार में, और मैंने सारे जितने भी इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम के लेखक थे उन सबके, जितने संभव हो सकते थे थॉमस हार्डी तक, सबके घर जा जाके वहां उस माहौल को महसूस किया और उस पे किताब लिखी घुमक्कड़ी साहित्य के गलियारों से।
0: क्या बात है। तो लिखने के मकसद से आप गई थी या घूमने गई थी?
1: पहली बार तो मैं घूमने गई थी, और संयोग से मैं, जैसे अब मैं कोलकाता भी जाती हूँ तो मैं ठाकुरबाड़ी जरूर जाती हूँ, तो ऐसे ही मैं गई थी। तो मैंने कहा कीट्स हाउस तो जाएंगे, कीट्स को इतना पढ़ा है हमने, तो कीट्स के घर गए। तो मुझे लगा कि यार ये जुनून है, इस जुनून को तो पूरा किया जाए, फिर वो जुनून बन गया। शुरुआत में तो मैं ऐसे घूमने ही गई थी।
0: तो लिखने को इतना तवज्जो देती हैं इसलिए आपका लेखन संसार इतना विराट है। आप मनीषा जी अपने श्रोताओं को बता दें कि राजस्थान की रहने वाली है, जहां पर लोक संस्कृति लोक कला बेशुमार है, आपके लेखन में क्या आप इस्तेमाल करती हैं आप अपने लेखन में?
1: बिल्कुल, शुरुआत में तो मेरी जितनी अगर कहें कि सारी जो कहानियां जिनको लोग याद करते हैं, कठपुतलियां, कुर्जा, स्वांग, ठगिनी, सब में राजस्थान आया है। किरदार कहानी है जिसमें जयपुर के अंदरूनी इलाके आए हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं राजस्थान के माहौल को एक अलग ढंग से, सब अलग अलग तरीके से अपने जमीन को याद करते हैं, सब अलग अलग ढंग से उसके दृश्य गढ़ते हैं। तो मैंने अपने ढंग से अपने राजस्थान को अपनी कहानियों में रखा है।
0: क्या बात है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: राजस्थान को याद करते हुए सुनाएंगे या कोई और?
1: हाँ, तो राजस्थान को याद करते हुए वो जो सात
0: हिंदुस्तानी,
1: हाँ बिल्कुल, पीतल की मोरी गागरी। चलो
0: तो चलते हैं राजस्थान की ओर और सुनते हैं यही गाना।

0: इस गाने के बाद मनीषा जी कुछ कहानियों का जिक्र छूट गया है, तो वो कौन सी कहानियां हैं जो आपकी बहुत पसंदीदा कहानियां हैं? वैसे मुझे लगता है 60-70 कहानियां हो
1: ज्यादा ही है, ममता 100 से ज्यादा कहानियां लिख ली है।
0: तो कुछ पसंदीदा कहानियों का जिक्र कीजिए आप।
1: मेरा अभी अभी एक कहानी संग्रह आया वन्या, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले और बहुत उसको प्रशंसा मिली, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट को हम भूल जाते हैं।
0: जी जी,
1: हम जब आदिवासी समाजों की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कहानियां उसमें हैं। तो चाय बागानों में बहुत रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरा रहना हुआ, तो वहां से जो चुन के मैं कहानियां लाई थी, तो वन्या में वो कहानियां हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं।
0: और दो चार कहानियों का जिक्र कीजिए जो आपके दिल के करीब।
1: जैसे उसमें वन्या में एक कहानी है नीला घर, वो मेरे दिल के करीब है, और एक कहानी है नर्सरी, वो एक गेंद कहानी कह रही है कि गेंद है तो कैसे बच्चों की नर्सरी से निकल के चाय बागान में घूमती है और उससे पूरा का पूरा चाय बागानों का आपको जो एक सामाजिक ढांचा है वो समझ में आ जाता है, आर्थिक ढांचा भी।
0: जी, और अपने श्रोताओं को बता दें कि तकरीबन 100 कहानियां हैं, मनीषा जी के 7 उपन्यास हो चुके हैं, यात्रा वृत्तांत, कथक पर कुछ किताबें, ये सब अनगिनत है। तो एक हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक इतने विशाल विराट साहित्यकार से हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बचपन के संसार में ले चलते हैं। बचपन में कैसी थी पढ़ाई के दिनों में, शरारती या फिर सीधी सादी, क्या वहीं से बीज पड़ गया था?
1: बहुत शरारती, मुझे लगता है कि हर वो बच्चा कहानीकार जरूर बनता है जिसे बहाने बनाने आते हैं। तो मैंने बहुत कहानियां सुनाई हैं अपनी मम्मी को होमवर्क नहीं करने की, और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी कि मैंने ना पढ़ाई में बहुत झंडे गाड़े हों।
0: अच्छा,
1: क्योंकि विज्ञान वैसे भी एक कठिन विषय होता है, तो लेकिन हिंदी में मुझे गोल्ड मेडल मिला
0: जी।
1: तो मैं शैतान बच्ची थी लेकिन बहुत जिज्ञासु थी, और साहित्य से मेरा प्रेम था और बचपन से मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था।
0: जी, मनीषा जी विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें हो रही है कि हमें लग रहा है कि अभी और आपसे गुफ्तगू की जाए। मुझे लगता है जो लोग लिखना चाहते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिला तो। लेकिन अब बातचीत को विराम देना पड़ेगा, फिर कभी एक लंबी बातचीत करेंगे आपसे। इस वादे के साथ आज यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी बातचीत को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी माने कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। मैं हूं आप सभी का उद्घोषक साथी यश भट्ट। श्रोताओं, वक्त हो चला है शाम के 5 बज चुके हैं और अब बेसब्री से इंतजार है युवा श्रोताओं को अपनी पसंद के विशेष कार्यक्रम युववाणी का। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर युवाओं की धड़कन, उनके सपनों की उड़ान और इस शहर की सबसे रिफ्रेशिंग महफिल युववाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र आशुतोष
0: और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता। वैसे आशुतोष, आज स्टूडियो में आते ही जो वाइब्स मिल रही है ना, वो सचमुच कमाल की है।
1: बिल्कुल सही कहा, वाइब्स कमाल की क्यों ना हो अंकिता। आखिर आज हफ्ते का वो दिन है जिसका इंतजार हमारे डिजिटल परिवार को पूरे दिल से रहता है। दोस्तों, वक्त हो चला है आपके और हमारे सीधे जुड़ाव का, यानी आपके चहेते सेगमेंट सोशल मीडिया कनेक्ट का।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आज पहली बार जो हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि सोशल मीडिया कनेक्ट की रीत बड़ी निराली है। हर सोमवार को हम अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक चमचमाती पोस्ट डालते हैं और आपसे आपकी मनपसंद फरमाइशें मांगते हैं।
1: और इस बार जैसे ही पोस्ट लाइव हुई, कमेंट बॉक्स में तो जैसे प्यार की बौछार ही हो गई। उज्जैन से लेकर दूर दराज के गांव और शहरों तक आप सब ने अपने नाम और अपनी जगह, अपनी खूबसूरत फरमाइश के साथ जो कमेंट्स की छड़ी लगाई, उसे देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया।
0: सच में आशुतोष, सोशल मीडिया की ये तो खूबसूरती है, स्क्रीन पर दिखने वाले वो छोटे छोटे नाम और कमेंट्स जब स्क्रीन से निकलकर रेडियो की तरंगों पर तैरते हैं तो दिल और दूरियां सब एक हो जाती हैं।
1: तो बस दोस्तों, थाम लीजिए अपने दिलों को, क्योंकि आज इस महफिल में गूंजेंगे आपके नाम, पढ़े जाएंगे आपके प्यारे कमेंट्स और बजेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद के नगमे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये म्यूजिकल और डिजिटल सफर हमारे पहले गीत से, फिल्म वीर से, जिसे गाया है सोनू निगम ने। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं साजिद वाजिद और इस गीत की फरमाइश की है
0: झरी जिला परभणी महाराष्ट्र से दत्ता, राघव, गौरी, अशोक जगाड़े और जगाड़े परिवार, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक, मोहम्मद साकीब, मोइन छोटू और मोहम्मद हसनैन पवार ने।
1: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है रजोखर बाजार अररिया बिहार से शरीफ आरजू और गुड्डू रंगीला ने, ततरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नौखेलाल वर्मा ने, अररिया बिहार से सोमिया नजमीन, रुकैया आफरीन, रिहाना प्रवीण और माहे आरजू ने,
0: मंजनू का टिला से कमल, मधु और सागर, बालूजा और सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक ने, सफीदो सिटी हरियाणा से नानक, चंचल, लाडो, लवली, रजत, लव, कुश और समस्त खन्ना परिवार ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा ने।
1: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है हर सिद्धि विहार कॉलोनी उज्जैन से अरुण और हेमलता चौरे ने, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, गीतिका खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश ने, कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजाल मलिक ने।

0: श्रोताओं, आपने जिस अगले गीत की फरमाइश हमसे की है वो लिया गया है फिल्म हमसे बढ़कर कौन सी, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राम लक्ष्मण ने। इसके गीतकार हैं रविंद्र रावल और संगीतकार हैं राम लक्ष्मण।
1: जी हाँ, उसकी फरमाइश की है गांव अलगीडार, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से जोहित विपिन, आयुष और श्रीमती फुलजी यादव ने। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी ने। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन और कुसुम ने ताम ने।
0: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है मुंडा टोला डोंडी लोहारा से डोमेंद्र, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश्वर, माहिर ने ताम ने। तीव्रता डबरी पारा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंत, ममता, मनीषा और सुरेंद्र मरकाम ने। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने।
1: साथ ही गोंदू रोड धूलिया महाराष्ट्र से मनोहर, यामिनी, मगर, उदनयन और अर्पिता ने। ग्राम पंचायत बठेना पाटना, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, रेखा और पार्थ कश्यप ने। सियारा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान ने। पलीरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से वेद प्रकाश, लक्ष्मी मोहित और तरुण ने।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान छिपा और पूजा परिहार ने। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने।
1: साथ ही भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह मॉरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष, नंदिनी जंघेल और धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, औशिका और अंजलि जंघेल ने। गांव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा से राधेश्याम, इंदिरा और सार्थक शर्मा ने। सौंघा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन ने।
0: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ, पंकज और तिरुपति साहू ने। येताला, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से शंकरलाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल ने।

0: साथियों, अगले गीत की फरमाइश की है जिसे लिया गया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन।
1: इस गाने की फरमाइश हमें की है हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इब्राना नाज, नवाजीश और दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव, परी महल कासगंज उत्तर प्रदेश से आबाक नबील, आरफा और इल्मा खान और एम असलम सेफी ने।
0: साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रियाली और पार्थ हागोड़े ने। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद तनुजा, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी ने। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण, संदीप और अमूल्य बाठे ने। ग्राम प्यासी अशोकनगर से जयपाल सिंह। साथ ही इस गीत को सुनना चाहे नानाकेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से लोकेंद्र, अनिकेत, अर्पिता, रेखा और इशिका वर्मा ने।

0: दोस्तों हम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जिनमें है बहुत ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशें। ऐसी ही हम एक फरमाइश ले रहे हैं जिससे लिया गया है फिल्म जंजीर से। जंजीर से गाया है आशा भोसले ने, गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।
1: और इस गाने की फरमाइश हमें की है गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण, परवीन, राहुल और मनीष शर्मा ने। गांव टोरावाल जिला नवाशहर से गगनदीप, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने। चाई बाजार जिला

0: पश्चिम सिंहभूम झारखंड से शिवा प्रेम कपिल शिवांश संगीता लिपि और दीपाली गोप ने।
1: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है रोवर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया ने। सहारनपुर से राधा अर्पणा और अभिषेक नामदेव ने। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश महेश प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई ने।
0: इसी के साथ कुलीपाड़ा कटिहार से राजेश प्रिया प्रियंका प्रेरणा प्रगति भारती विभा रानी आदित्य राज और आशीष ने। गांव आलरी जिला देवास से जगदीश सैन ने। सनावत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हुकम चंद और श्रीमती प्रभा कटारिया पिंटू सेन हरिनिवास खेड़े बाबूलाल चौधरी दीपक और सचिन ने।
1: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम सगोरिया तहसील शामगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से श्याम निकिता आयुष और पीयूष मेहर ने। आसल गांव बाजार जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू गजानन संजय और ज्ञानेश्वर माठे ने। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार और चंद्रकला रेवाड़ ने।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों अगले गीत की फरमाइश की गई है फिल्म कारवां से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले ने। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं RD वर्मन।
3: इस गाने की फरमाइश हमें की है कलानौर से नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा ने। ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी ने। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से श्याम, रामशरण, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने।
2: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है गांव बिटोड़ा, भोयर, तहसील मंगरूल पीर, जिला वाशिम, पश्चिमी विदर्भ से योगीराज, श्रीहरि, इंदुमती, मल्हार, कविता, मोहन, विशाल, कुशल, गोपाल श्याम, गोविंद मस्के और साथी ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहे दलपत सिंह गुर्जर ने। अंभई, तहसील सिल्लोड, जिला छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के ने।
3: साथ ही करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन ने। ग्राम डोगर गांव नांदेड़, महाराष्ट्र से बंटू, प्रणाली और स्वप्राली पाइकराव ने। कवर कॉलोनी बड़गांव, जिला खरगोन, MP से प्रवीण और मीना श्रीमाली ने।
2: ग्राम पिड़पा पोस्ट कलानी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से राजा राम, कौशल्या देवी, मोहनी और शिवा अहिरवार ने। हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र, मालती भगत, विकास, जितेंद्र, ऋषि और राहुल ने। सनावत से शेख, मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना ने।

0: दोस्तों अगले गीत की फरमाइश की है फिल्म जंगली से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।
1: गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत ने की है इसकी फरमाइश। साथ ही मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड़, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से तौफिक अहमद, अतीक अहमद और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी ने।
0: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और आर कुलकर्णी ने। लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत, माया देवी और ऋतिक आदित्य कसाना ने। राज प्लस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार, प्रीति और कार्तिक आर्यन वर्मा ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने।
1: पहाड़गंज मुल्तानी धांडा से अनिल, उषा मोहन, टिल्लू और मधु नायक ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, गगनीजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार, रुक्मणी, साहिल और भारती बघेल ने।
0: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है लाहौरडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बेटिया अंजलि, नितिन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर,

0: नूतन, रामानंद कश्यप और करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी ने खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रानी टू लक्ष्य लाड़ो कोयल, नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल डुग्गर भाविका सिक्का ने, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष और विनोद खड़से ने,
1: साथ ही ग्राम पेपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा ने, गांधी चौक रोपार पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर, जयदेव और मिका विर्क ने, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल ने।
0: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन चांदनी भूपेश्वर दीपेश वर्मा ने, छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सुरेखा सेन ने, गणेश लोढ़े ने।
1: बुलधाना महाराष्ट्र से दीपक जाधव परिहार ने, रामचंद्र गुप्ता ने, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान और इरफान खान ने, पट्टीडो रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित और तानिया नारंग ने,
0: गांव लोहगढ़ ठाकुरा जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह ने, माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल, कुलवंतीन देवी, दीवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने, साथ ही जनवानी स्मृतिनगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश, तारा विद्या, जितेंद्र, किशन, सुनीता रिसीवन, नीलकंठ, चंद्रहास, हीरेंद्र और संजीवन साहू ने।
2: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

0: कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आप लोगों ने अगले गीत की फरमाइश की है फिल्म आराधना से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।
4: इस गाने की फरमाइश हमें की है ग्राम धुरा बांदा भाटापारा से प्रमोद देव कुमार, नवीन कुमार और युवराज साहू ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, सिटी दीवाना और गुरवंश सिंह जोड़ा ने। पिपरिया से कमलकांत, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता ने।
3: मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराव भुज ने, पी एस नभाकर और मोहन करांगले ने। ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम माहेनूर, नसरीन और समा अंसारी ने। रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन राजेश, अजय राहुल और मनु ने।
4: जी हाँ, और साथ ही की है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, अलिजमा अयान, यश और नुमेर मंसूरी ने। ग्राम नावदा खेड़ी जिला देवास से प्रेम नारायण जाट ने। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन, रोहित, राज और पीयूष कुमार ने।
3: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत जिला खरगोन से कृष्णपाल सिंह, तारा देवी, नव उदित सिंह, वैभव पाल सिंह, ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान ने। गाँव नाथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा और जसवीर जस्सी ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा, शशांक बागमारे और छोटा बुलबुल ने।

0: प्यार है,
1: बाबा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: साथियों आपने भेजी है अगली फरमाइश फिल्म वास्तव द रियलिटी से, जिसे गाया है रविंद्र साठे ने। गीतकार हैं समीर और पारंपरिक बोल, संगीतकार हैं जतिन ललित। इस गाने को सुना चाहा है अशोक, मोहित, माया, किवी और शिवी ने विद्यापति नगर उज्जैन से।
3: इसी के साथ हमें फरमाइश की है ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल ने। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु, रितिका, आरव और वाणी मिस्किन ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण और कलावती सोनी ने। मकसूद आलम सोनू, दानिश, तजमीन, शबनम और अकरम अशरफ ने। कस्बा उघेटी बंदायू से धीरज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, पंकज बजाज और डीके हिटलर ने।
3: इसी के साथ गांव छिगडिया तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान से सिंधु सिंह राजपूत ने। छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह, सावित्री देवी, माला, कमल सिंह, ईश्वर, मानू, शानू, पवन, मुनु, काना और हरप्रिया ठाकुर ने। जिला बेगूसराय बिहार से नंदन कुमार, अंकित कुमार सिंह और जिला मोतिहारी बिहार से संदीप कुमार और संजय कुमार सिंह ने।
2: आष्टी जिला जालाना मराठावाड़ से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदड़े और धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ और अनुष्का सागुते ने। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन शहनास, नवेद हसन, सुहेल हसन और अनम यशफ अब्बासी ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम, ज्योति और ओजस्वी यादव ने।

0: इस भक्तिभाव से भरी हुई आरती के बाद अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जिसे लिया गया है फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, जिसे गाया है कमाल खान ने, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित।
1: इस गीत की फरमाइश हमें की है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त परिवार ने, चर डोगरी पीपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम, अजय कुमार, जय किशन, श्रीमती कुमारी, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू ने, कवाई सालपुर जिला बारा राजस्थान से सतीश, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने,
0: इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा, सूर्यकांत, राकेश, शुभम, सावित्री साहू और शिखा शेफाली ने, लेवा

0: सुनीता, योगेश, मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र, रीना, निशा, मीरा और हैप्पी मालाकार ने, गुलिस्तान कॉलोनी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल ने,
1: जी हाँ इसी के साथ हमें फरमाइश की है, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह, कुणाल, हर्ष, मनीष, अंशिका यादव, यूनुस और सोफिया खान ने, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम, सचिन, अमर और दीपांशु खोरवाल और वीरेंद्र भयान ने,
0: उस्तु भागलपुर से प्रदीप कुमार, आशीष, कुंदन मंडल, करीना, पूजा, आरती कुमारी और सुनीता देवी ने, समस्तीपुर बिहार से मीरा और ज्योति सिंह ने, रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका सिंह ने, छिंदवाड़ा बेरड़ी मध्य प्रदेश से नाना जी, मीना, तेजस जय और हर्षिता लामसी ने,
1: जी हाँ इसी के साथ महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, बाबू रियांश ठाकुर, ग्राम तंगोरी, जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर, महीक प्रीत और सहीज प्रीत सिंह ने, चकरभाटा कैंप से डीआर रवि, चांदनी और खुशी नारवानी ने,
0: साथ ही इस गीत को सुनना चाह है दोस्तों, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी और कल्पित चौहान ने, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष के साथ, असम से हितेंद्र दास ने, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज चहा ने।

0: दोस्तों, अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। गायक हैं सोनू निगम, गीतकार जयदीप साहनी, संगीतकार सलीम सुलेमान।
1: जी हाँ, और इस गीत को सुनना चाहते हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विनी अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह, भूपेंद्र, सीमा और अनमोल जुनेजा और साहिबा गुप्ता। चंडीगढ़ से सतीश और बिमला अनेजा।
0: एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम और निखिल कांगड़ा, बबीता और तन्वी बोट। गांधीनगर महेश्वर मध्य प्रदेश से श्याम, सोना, अव्या, अथर्व और मेघा यादव। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़।
1: इसके साथ हमें फरमाइश भेजी है बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर ने। शिवाजी चौक कटनी से अनिल, अमर और राजू। ताम्रकार दिलीप और संजीव वर्मा। रंजन, रजक, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय, सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और सौम्या। भिलाई से मुकेश, गौरव और गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा।
0: गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है श्रवण कुमार, शिवम, आर्यन, लविस और मनीष देवी प्रजापति ने। गांधीनगर गुजरात से सुरेश और मंजिला राठौड़, विशाल और निशा ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार, राजू बाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। जिला उज्जैन बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद और मयंक मूणत, नेहा जैन, दीपक और चेतन नाहटा। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर आम्रपाली से सिद्धार्थ, अर्चना, प्रतिभा, पद्माकर गोंडा ने। प्रणय और कुमारी प्रसिद्धि हीरामण शेंडे ने।

0: दोस्तों, आज का ये अंतिम गीत लिया गया है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, जिसे गाया है सोनू निगम ने। गीतकार हैं जयदीप साहनी, संगीतकार हैं सलीम सुलेमान।
1: और इस गाने की फरमाइश हमें की है बड़ी गेबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय एवं समस्त मालवीय परिवार, उन्हेल जिला मध्य प्रदेश से भेरूलाल भोला, प्रवीण रियांश और प्रतीक वागतरिया ने, ग्राम हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर, फरियाद हुसैन, मोइन तस्लीम अंसारी, शकील अहमद, इर्शिदी और डीजे प्रधान ने।
0: माफ कीजिएगा दोस्तों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। अब जो गीत आप सुनना चाहते हैं उसकी फरमाइश की गई है फिल्म ओम शांति ओम से, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह, मारियाने डिक्रूज, निशा, कैरेलीसा ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं विशाल शेखर, और इस गीत को सुनना चाहा है टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना, रमाताई, दीक्षा, रीमा और राहुल डोगर दीवे ने। बीड, शिरूर, कासार से महादेव और संगीता पवार ने। चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबिहा खानम, फरीदा और जब्बार मोहम्मद ने।
1: परलिका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विनोद कुमार जांगड़ा,

0: तो दोस्तों, आपके कमेंट्स और शानदार फरमाइशों से सजी आज की इस बेहद म्यूजिकल महफिल को भी यहीं समेटने का वक्त आ गया है।
1: सच में आशुतोष, आज का ये फरमाइशी सफर बहुत ही मजेदार था। और साथियों, अगर समय के अभाव के कारण आज आपका नाम या गाना छूट गया हो तो कोई बात नहीं,
0: क्योंकि अगले सोमवार को हमारे सोशल मीडिया पेज पर फिर एक नई पोस्ट होगी आपके इंतजार में। आपका नाम, शहर और अपने फेवरेट गाने का नाम वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा
1: और युवाणी उन्हें लेकर आ जाएगी अगले बुधवार ठीक इसी समय पर।
0: तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। हम थे आपके साथ आपके रेडियो मित्र आशुतोष।
1: मैं थी अंकिता।
0: लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। शाम के 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। भजन संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, त्योहारों की सबसे खूबसूरत बात क्या है?

क्या वह पूजा की थाली है? घर में सजे फूल हैं, दियों की रोशनी है, या फिर वह पल जब पूरा परिवार एक जगह बैठता है और घर अचानक पहले से थोड़ा ज़्यादा अपना सा लगने लगता है। शायद त्योहार इन सब का नाम है। और इस समय तो देश के अनेक घरों में एक बहुत प्यारे मेहमान का आगमन हुआ है। जी हाँ, गणपति बप्पा का। श्रोताओं, गणपति चतुर्थी पर हम सब ने अपने अपने घरों में गणेश जी को विराजमान किया। किसी ने उन्हें बड़े उत्सव के साथ लाया, किसी ने छोटी सी प्रतिमा के साथ, लेकिन भाव एक ही था, बप्पा हमारे घर आइए। और देखिए, भगवान के घर आने के बाद घर का माहौल ही बदल जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले नज़र गणेश जी पर जाती है, फिर मन में आता है आज बप्पा को क्या भोग लगाएं, किस तरह सजाएं, आरती किस समय होगी, और शाम होते होते परिवार के सदस्य एक बार फिर उसी जगह इकट्ठा हो जाते हैं। यही तो हमारे त्योहारों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वे केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं बदलते, वे घर के भीतर का माहौल बदल देते हैं।

श्रोताओं, कभी कभी भगवान से हमारी बातचीत भी कितनी सहज होती है। हम उनसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बस कहते हैं, बप्पा सब ठीक रखना, घर में सुख शांति रखना, माँ बाप को स्वस्थ रखना, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, जो काम शुरू किया है वह पूरा हो जाए। और कभी तो शिकायत भी कर देते हैं,

बप्पा, ये काम अभी तक नहीं किया आपने। यानी भगवान हमारे केवल पूजनीय नहीं रहते, वे हमारे अपने बन जाते हैं। यही भारतीय संस्कृति की एक खूबसूरत विशेषता है। यहाँ ईश्वर से संबंध केवल भय का नहीं है, ईश्वर से प्रेम भी है, ममता भी है, दोस्ती भी है, विश्वास भी है। और गणेश जी के साथ तो यह अपनापन विशेष रूप से दिखाई देता है। शायद इसीलिए गणपति बप्पा को घर लाते समय ऐसा लगता है जैसे कोई अपना बहुत ही प्यारा व्यक्ति घर आया हो। श्रोताओं, गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, लेकिन शायद जीवन में उनके आने का अर्थ केवल यह नहीं कि हमारी परेशानियां खत्म हो जाए, बल्कि यह भी है कि परेशानियों के बीच हमें सही दिशा, धैर्य और बुद्धि मिले। गणेश जी का स्वरूप भी अपने आप में एक संदेश है। बड़ा मस्तक, अधिक सोचने की प्रेरणा, बड़े कान, दूसरों को ध्यान से सुनने की सीख, छोटी आंखें, एकाग्रता का संकेत, और उनका वाहन मूषक, जो कितना छोटा है लेकिन फिर भी गणेश जी के साथ चलता है। मानो प्रकृति कह रही हो, जीवन में कोई भी चीज छोटी नहीं होती, हर चीज का अपना एक महत्व है।

दोस्तों, गणेश उत्सव की एक और खूबसूरत बात है सामूहिक आनंद। कहीं घर में आरती हो रही है, कहीं बच्चे मिलकर सजावट कर रहे हैं, कहीं पड़ोसी प्रसाद बांट रहे हैं, कहीं भजन गाए जा रहे हैं, कहीं ढोल की आवाज़ है और कहीं कोई छोटा बच्चा बस चुपचाप गणेश जी के सामने बैठा उन्हें देख रहा है। शायद उसे मंत्र नहीं आते, लेकिन पूजा विधि भी नहीं आती, पर उसे इतना ज़रूर पता है कि ये हमारे बप्पा हैं। यही भाव सबसे बड़ा है।

श्रोताओं, हमारे त्यौहार हमें एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरी बात सिखाते हैं। जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश होने के लिए कोई बड़ी वजह चाहिए, बड़ी नौकरी मिले, बड़ा घर बने, कोई बड़ी सफलता मिले, कोई बड़ी यात्रा हो, लेकिन हमारे त्यौहार कहते हैं नहीं, खुशी छोटी भी हो सकती है। सुबह की आरती में, परिवार के साथ बैठकर प्रसाद खाने में, किसी बच्चे के चेहरे की मुस्कान में, माँ के हाथ से बनाए मोदक में, दोस्तों के घर जाकर गणपति दर्शन करने में, या फिर शाम को कुछ मिनट परिवार के साथ बिना मोबाइल के बैठ जाने में। यही छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर जीवन को बड़ा बनाती हैं। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ उत्सव इतने अधिक हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति जीवन को केवल जिम्मेदारियों की सूची बनाकर नहीं देखती। वह कहती है, काम करो, कर्तव्य निभाओ, संघर्ष करो, लेकिन बीच बीच में रुककर उत्सव भी मनाओ। अपने लोगों के साथ बैठो, गाओ, हंसो, प्रसाद बांटो, एक दूसरे को समय दो, क्योंकि जीवन का अर्थ केवल आगे बढ़ते जाना नहीं है। जीवन का अर्थ यह भी है कि रास्ते में मिली खुशियों को महसूस किया जाए। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ यह उत्सव अब अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। इन दिनों गणेश जी हमारे घर का हिस्सा बन जाते हैं, और जब विसर्जन का समय आता है तब भाव थोड़ा बदल जाता है। जिस प्रतिमा को इतने प्रेम से घर लाए थे, जिसके सामने रोज आरती की, जिससे मन की बातें कहीं, उन्हें विदा करते हुए हम कहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। यह विदाई भी अपने भीतर एक बहुत सुंदर दर्शन रखती है। जो आया है वह जाएगा, रूप बदलेगा, समय बदलेगा, लेकिन विश्वास बना रहेगा। और शायद इसी विश्वास के साथ हम बप्पा को विदा करते हैं कि ये वे हमारे घर से नहीं जा रहे हैं, वे हमारे मन में रह रहे हैं।

तो आज की इस भजन संध्या में एक छोटी सी बात अपने साथ लेकर चलिए। जब गणेश जी हमारे घर में विराजमान हो तो केवल उनसे अपनी इच्छाएं ना मांगे, उनसे यह भी मांगे इतनी बुद्धि मिले कि सही और गलत में अंतर समझ सके, इतना धैर्य मिले कि कठिन समय में टूटे नहीं, इतना प्रेम मिले कि अपने लोगों की कद्र कर सके और इतनी समझ मिले कि जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को पहचान सके। क्योंकि कभी कभी जिस खुशी का हम वर्षों से इंतजार कर रहे होते हैं वह हमारे सामने ही बैठी होती है, एक परिवार के रूप में, एक आरती के रूप में, एक प्रसाद के रूप में और कभी कभी एक मुस्कुराते हुए गणपति बप्पा के रूप में। श्रोताओं, इसी सुंदर भाव के साथ आज की भजन संध्या कार्यक्रम में बस इतना ही। गणपति बप्पा हमारे जीवन में बुद्धि, विवेक, आनंद और सकारात्मकता का प्रवेश बनाए रखें। आपके घर में उत्सव रहे, आपके मन में विश्वास रहे और आपकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों के लिए हमेशा जगी बनी रहे। गणपति बप्पा मोरिया। इसी के साथ आज का ये भजन संध्या कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दीजिए अपनी उद्घोषिका कृष्णा पंडित को इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में मैं कृष्णा पंडित आज सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज की बातचीत शुरू करते हैं एक ऐसी चीज़ से जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन अगर यह ना हो तो हमारी पृथ्वी पर जीवन की कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। नाम है ओजोन परत। दोस्तों, आज 16 सितंबर को दुनिया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर यानी विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन सवाल यह है, जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते उसके लिए एक पूरा दिन क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कई ज़रूरी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत हमें तब समझ में आती हैं जब वे कम होने लगती हैं। हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना जी नहीं सकते। पेड़ को केवल लकड़ी समझी तो उसका मूल्य अलग होगा, लेकिन उसकी छाया, ऑक्सीजन और पर्यावरण भूमिका समझे तो वही पेड़ जीवन का हिस्सा बन जाता है। और ओजोन वह पृथ्वी के ऊपर एक तरह की प्राकृतिक सुरक्षा परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से एक बड़े हिस्से को रोकने में मदद करती है। यानी हम ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और ऊपर आसमान में प्रकृति की एक अदृश्य सुरक्षा व्यवस्था काम कर रही है।

श्रोताओं, सोचिए अगर हम अपने घर की सुरक्षा के लिए दरवाज़ा लगाते हैं, गाड़ी की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगाते हैं, मोबाइल की सुरक्षा के लिए कवर लगाते हैं, लेकिन जिस ग्रह पर हमारा पूरा घर है उसकी सुरक्षा के बारे में हम कितना सोचते हैं? यही सवाल आज का दिन हमारे सामने रखता है। ओजोन परत की कहानी केवल विज्ञान की कहानी नहीं है, यह इस बात की कहानी भी है कि इंसान ने जब पर्यावरण पर पड़ रहे असर को समझा तो दुनिया के देशों ने मिलकर समाधान खोजने की कोशिश की। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करना था। यानी पर्यावरण की कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि उसके सामने इंसान केवल हाथ खड़े कर दे। अगर समस्या हमारी सामूहिक है तो समाधान भी सामूहिक हो सकता है। श्रोताओं, लेकिन अब सवाल आता है, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर पर्यावरण की बात आते ही लगता है कि यह काम सरकारों, वैज्ञानिकों या बड़ी कंपनियों का है, लेकिन पर्यावरण हमारे रोज के चुनावों से भी बनता है। हम बिजली कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितनी चीज़ें ज़रूरतों के बिना खरीदते हैं, कितना कचरा पैदा करते हैं, कितना प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, पेड़ लगाने और उनकी देखभाल को कितना महत्व देते हैं। ये सवाल छोटे हैं, लेकिन छोटे सवालों के लाखों जवाब मिलकर बड़ा असर पैदा करते हैं।

साथियों, यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहती है। केवल यह कहना कि एसी मत चलाइए या फ्रिज का इस्तेमाल मत कीजिए व्यावहारिक पर्यावरण समाधान नहीं है। आज की ज़िंदगी में इन उपकरणों की ज़रूरत है। बात है ज़रूरत और आदत के बीच अंतर समझने की। एसी ज़रूरी है तो उसका तापमान समझदारी से रखें, ऊर्जा की बचत करें, पुराने उपकरणों को सही तरीकों से डिस्पोज करें, जहां संभव हो ऊर्जा कुशल उपकरण अपनाएं और ऐसी तकनीकों तथा उत्पादों को बढ़ावा दें जिनका पर्यावरण पर कम असर हो। यानी पर्यावरण संरक्षण का मतलब जिंदगी को रोकना नहीं, जिंदगी को थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी से जीना है।

श्रोताओं, पेड़ लगाना शायद पर्यावरण के लिए सबसे सरल संदेशों में से एक है, लेकिन केवल पौधा लगाकर उसकी तस्वीर खिंचवा लेना पर्याप्त नहीं। असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। उसे पानी कौन देगा, उसकी रक्षा कौन करेगा, वह बड़ा होने तक उसका ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि पर्यावरण दिवस पर लगाया गया पौधा तभी पर्यावरण संरक्षण बनेगा जब वह अगले साल भी हमारे बीच खड़ा हो। दोस्तों, कभी आसमान की तरफ देखिए, वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा कि यह ओजोन परत है, कोई सीमा रेखा दिखाई नहीं देती, फिर भी वह हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यही पर्यावरण की सबसे दिलचस्प बात है। प्रकृति की बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में इतनी चुपचाप काम करती हैं कि हम उनका धन्यवाद करना भी भूल जाते हैं। सूरज रोज उगता है, हवा चलती है, बारिश होती है, नदियाँ बहती हैं, पेड़ खड़े रहते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं। शायद संरक्षण की पहली सीढ़ी ही यही है। जिस चीज़ का लाभ हमें रोज़ मिलता है, उसके अस्तित्व को पहचानना।

श्रोताओं, आज ओजोन दिवस पर एक और खूबसूरत बात याद आती है। पृथ्वी हमारी संपत्ति नहीं है, हम पृथ्वी के मालिक बनकर नहीं आए हैं, हम कुछ समय के लिए इसके निवासी हैं और आने वाली पीढ़ियों भी इसी तरह इस ग्रह पर रहेंगी, हमारे बच्चों से लेकर उनके बच्चों तक। ये भी यही आसमान देखेंगे, यही हवा महसूस करेंगे, यही नदियाँ देखेंगे और शायद एक दिन वे हमसे पूछे, जब आपको पता था कि पर्यावरण महत्वपूर्ण है तब आपने क्या किया था। उस सवाल का जवाब बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं, शायद हम कह सकें हमने एक पेड़ बचाया था, हमने बिजली बचाई थी, हमने पानी व्यर्थ नहीं बहाया था, हमने कचरा सही जगह डाला था, हमने अपने घर में पर्यावरण की बात शुरू की थी और सबसे महत्वपूर्ण, हमने यह समझा था कि पृथ्वी की देखभाल किसी एक दिन का काम नहीं है।

साथियों, आज का दिन केवल ओजोन परत के नाम नहीं, यह उस सोच के नाम है जो कहती है हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा हैं। और शायद इसीलिए पर्यावरण के लिए किया गया हर छोटा काम दरअसल अपने ही भविष्य के लिए किया गया काम है। आज शाम जब आप बाहर निकलें, आसमान की तरफ एक बार ज़रूर देखिएगा। ओजोन परत आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन यह जानकर आपको अच्छा लगेगा कि हमारे सर के ऊपर प्रकृति की एक अदृश्य व्यवस्था है जिसे बचाने के लिए दुनिया ने मिलकर कदम उठाए हैं। और अब हमारी बारी है कि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं, बहुत बड़ी नहीं, बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी सी, क्योंकि बदलाव हमेशा किसी बड़े मंच से शुरू नहीं होता, कभी कभी वह शुरू होता है एक स्विच बंद करने से, एक पेड़ को पानी देने से, एक अनावश्यक चीज़ खरीदने से, खुद को रोकने से और किसी दूसरे व्यक्ति से यह कहने से, चलो अपने ग्रह का थोड़ा ख्याल रखते हैं। चलिए श्रोताओं, इसी सोच और खूबसूरत संगीत के साथ आज के फिल्म संगीत से विदा लेते हैं। याद रखिए, पृथ्वी को हमारी ज़रूरत शायद उतनी नहीं जितनी हमें पृथ्वी की है। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए और उस ग्रह का भी जिसे हम सब अपना घर कहते हैं। तो इसी के साथ दीजिए आपकी उद्घोषिका कृष्णा पंडित को इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही देर में हिंदी समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। तब तक प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम

0: बनाना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

शाम 7:21 पर सुनिए कार्यक्रम माटेरी बात, जिसमें आप सुनेंगे मालवी समाचार और मालवी लोकगीत। रात 8 सुनिए 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026। रात 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर होता है समय कार्यक्रम चर्चा का विषय है का।

रात 10 बजे सुनिए आपकी फरमाइश। रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। चलिए अब आपको सुनाते हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम महाकाल वंदन। 7:20 पर सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9 बजे सुनिए कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। 9:30 पर होता है समय कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे सिंहस्थ संवाद अमृत घट परसे का एपिसोड 12। दस बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से। सुबह 11 बजे से सुनिए विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम, जिसमें आप सबसे पहले सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। दोपहर 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे समय होता है कार्यक्रम सुरीला सफर का। दोपहर 2 बजे सुनिए फिल्म संगीत। 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। दोपहर 4 बजे आप सुनेंगे हेलो फरमाइश। शाम 5 बजे से सुनिए आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुति युवाणी। शाम 6 बजे सुनिए भजन संध्या।

शाम 6:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आकाशवाणी भोपाल से। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी उज्जैन से विशेष कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज, जिसमें आप मालवी समाचारों के साथ सुनेंगे मालवी लोकगीत। रात्रि 8:00 सुनिए 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। 8:30 पर सुनिए सुर्खियों में। रात 9:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता और रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रचनी। तो साथियों, ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 वर्ष पूरे करेगी, 30 लाख पंजीयन का लक्ष्य पूरा किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल से सेवा संकल्प अभियान शुरू करने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ की वेतन सीमा 15 से बढ़ाकर 25,000 रूपए की और राज्य सरकार ने निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का गठन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल अपने 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख अभ्यर्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में किया था। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य विश्वकर्माओं को संस्थागत सहायता, आधुनिक उपकरण, वित्त तक पहुंच, कौशल उन्नयन और बाजार संपर्क प्रदान करके उनके पारंपरिक कौशल को मजबूत करना है। यह उन्हें उत्पादकता, आय और उद्यमशीलता क्षमता बढ़ाने में भी सक्षम बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि इस फैसले से 15 से 25,000 रूपए मासिक वेतन पाने वाले करीब 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
1: प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती है। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, सितंबर 2014 में चेंज की गई थी। इसको बढ़ाकर 25,000 रूपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15 से 25 वाले बैंड में थे।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि नई वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से लागू होगी और सरकार का अनुमानित वार्षिक खर्च करीब 11,339 करोड़ रुपए होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल से प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के साथ ही सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हो रही है। उनके नेतृत्व में किए गए सारे कामों को भी हम स्मरण करते हुए कल उनके जन्मदिवस के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन देश और पूरी पार्टी हर जगह कर रही है। हमारे राज्य में भी कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी इंदौर अहिल्या माता की नगरी से अपने इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। कल 50 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के पटों का सरकारी स्तर पर सारा खर्च रजिस्ट्री निशुल्क कराने के अभियान की शुरुआत करने का भी बड़ा कार्यक्रम बनाया है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर और उज्जैन संभाग के जनप्रतिनिधियों, कमिश्नर्स और कलेक्टर्स से भी तैयारियों की समीक्षा की। सेवा संकल्प अभियान के तहत खंडवा, मुरैना, राजगढ़ और आगरमालवा सहित प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर में इन्फोसिस के नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक के शुभारंभ कार्यक्रम को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल से लोक भवन में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू हो रहे 1 माह के सेवा संकल्प अभियान और स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना 2026 की तैयारियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के 50 लाख लोगों को उनके पट्टे की पक्की रजिस्ट्री कराकर संबंधित हितग्राहियों को निशुल्क वितरित किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में नशा मुक्ति रैली, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और ग्राम सभाओं सहित विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों, महिला स्वसहायता समूहों और सामाजिक संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। लोगों को नशा न करेंगे न करने देंगे की ऑनलाइन शपथ दिलाई जाएगी। अंतिम दिन 8 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर समापन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नशा मुक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। आयुष मंत्रालय इस वर्ष 23 सितंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद रखी गई है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में बताया कि इस बार आयुर्वेद दिवस को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संचार अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इस अभियान में बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकीकृत चिकित्सा, आयुर्वेद में शोध और नवाचार तथा सामुदायिक स्वास्थ्य व टिकाऊ जीवन शैली पर विशेष जोर रहेगा। उन्होंने मीडिया से आयुर्वेद के बारे में सरल, विश्वसनीय और प्रमाण आधारित जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस उपलक्ष्य में निर्धारित गतिविधियों के आयोजन के क्रम में आज प्रदेश के अशोकनगर जिला जेल में स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। शासन ने निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और शुल्क निर्धारण के लिए मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति डॉ. राजकुमार आचार्य को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं विधि एवं विधायी कार्य तथा वित्त विभाग के अधिकारी तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा इस समिति के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शहडोल खेल की दुनिया में उभरता सितारा है और यहां की प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहडोल में 70वीं शालेय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से शहडोल की बास्केटबॉल टीम ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 संभागों के 17 वर्ष तक की आयु के 240 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में आयोजित लाइफ टाइम जर्नलिज्म अचीवमेंट अवार्ड 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब ने किया। इस अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। श्री शुक्ल ने सम्मानित पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका को निभाते हुए निरंतर कार्य करते रहे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर भी मौजूद रहे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 सितंबर के बाद नया मौसम सिस्टम सक्रिय हो सकता है। प्रदेश में अब तक 33 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि सामान्य औसत 37.3 इंच का है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17 से 19 सितंबर और पूर्वी हिस्से में 18 से 21 सितंबर के बीच कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा में संभागीय कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की ड्यूटी को लेकर निर्देश दिए हैं कि सभी चिकित्सक निर्धारित समय पर ही अस्पताल में मौजूद रहें। खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के 11 दान पात्रों की गणना में कुल 33,39,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। पूरी राशि भारतीय स्टेट बैंक की ओंकारेश्वर शाखा में जमा करा दी गई है। अलीराजपुर के पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। रीवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन सत्र पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के खिलाड़ियों ने सीहोर में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। वेटलिफ्टिंग में बैतूल ओवरऑल स्टेट चैंपियन रहा। साइबर अपराधों से बचाव एवं साइबर जागरूकता के लिए साइबर सेल जोनल कार्यालय इंदौर द्वारा अब तक कुल 33 महाविद्यालयों से 1,884 साइबर वॉरियर्स को नामांकित किया गया है। मंदसौर में विश्व ओजोन दिवस पर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने पोस्टरों के माध्यम से ओजोन संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। और राजगढ़ में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं रोजगार विभाग गौतम टेटवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 वर्ष पूरे करेगी। 30 लाख पंजीयन का लक्ष्य पूरा किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल से सेवा संकल्प अभियान शुरू करने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ की वेतन सीमा 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की और राज्य सरकार ने निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का गठन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। समय हो रहा है अगले कार्यक्रम मार्टीरी बात का, जिसके प्रस्तुत करता है लखन मालवीय।

माटी की खुशबू से जिको हर दिन शुरू होवे है। मौसम का हर मिजाज के भी अपनी आंखों से छुए है। आज बात सिर्फ जमीन की नहीं, उन आसमान की भी होगी जिका साया में हमारा अन्नदाता अपनी फसल बोवे है। राम राम सा प्रणाम महारा देश का सभी प्यारा प्यारा भईना बेनना और खेत उनमें पसीनों भई के पूरा देश को पेट भरवा वाला हमारा अन्नदाता यानी कि हमारा किसान भई उनके प्यार भरो नमस्कार। मैं हूं तमारो दोस्त, तमारो साथी, तमारो हम सफर और इन कार्यक्रम को उद्घोषक लखन मालवी और तम सुनी रहा हो आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज से तमारो पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम माटी री बात। भाइयों और बहनों, आज तारीख है 16 सितंबर। जब शाम के मैं रेडियो स्टेशन आई रहो तो ठंडी ठंडा हवा चली रही थी। मैंने सोचो कि आज हमारा किसान भाई उनके खेत में कहीं करी रहा होगा, कोई धान संभाली रही होगो, कोई सोयाबीन की फसल देखी रही होगो। रोज तो अपन इन शो पे जैसे कई बार मंडी का भाव, खेती की बात और मौसम की बात तक करा, पर आज को दिन पूरी दुनिया का लिए और खासकर अपना किसान भाई उनका लिए भी बहुत खास है, क्योंकि आज पूरी दुनिया मनाई रही है विश्व ओजोन दिवस। अब हमारा कई किसान भाई उन्हों काम करता करता या पानी फिरता फिरता यो भी सोची रहा होगा कि अरे भाई यो ओजोन वोजोन कई अंग्रेजी में नाम ले रहे है, हमारा तो सीध होना तो इन माटी पानी बीज और बेल से, इन आसमान की ओजोन से हमारा खेत खलियान को कई लेने देनो। तो महारा भाई ना, बात सीधी सी है, जैसे हम अपनी मेहनत से उगाई फसल के आवारा पशुओं तेज धूप या आंधी तूफान से बचावा के लिए खेत का चारों तरफ में मजबूत मेड़ या बाड़ बना हुआ, ठीक वैसे ही कुदरत ने हम सब का सर पे ओजोन नाम की एक अभेद्य सुरक्षा छतरी तानी रखी है, ओजोन परत। हाँ, आज का कार्यक्रम में हम बात करांगा ओजोन परत का बारे में और उनसे हुआ वाला फायदा का बारे में, उके कैसे बचानो है यो सब। तो कहीं जाओ जो मत, बने रहियो जो आकाशवाणी उज्जैन का साथ, लीके अपनी दिल की बात। पीपल की वह छांव पुरानी और पनघट को ऊ पानी, याद आवे वो खेत खलियान और अपना की मीठी वाणी। चाय की चुस्की संग चौपाल पे खबरें सुनी के होगी बात विचार, तो शुरू करा मालवी में आज का प्रदेश का समाचार।

नमस्कार, समाचार का साथ है मैं लखन वालवी। सबसे पहला इन बुलेटिन का मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 वर्ष पूरा करी रही है। योजना का तहत 30 लाख लाभार्थियों ने पंजीकृत हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल में 17वीं सालाएं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता को शुभारंभ करियो और खंडवा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब का खिलाफ कार्रवाई करी के 350 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट करियो। अब समाचार विस्तार थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 वर्ष पूरा कर लेगी। इन योजना का अंतर्गत 30 लाख अभ्यर्थी ने पंजीकरण करी लियो है, जिको लक्ष्य पूरा हो चुको है। इन योजना को शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में करियो थो। योजना को उद्देश्य 18वां चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। योजना को लक्ष्य विश्वकर्माओं को संस्थागत सहायता, आधुनिक उपकरण, वित्त तक पहुंच, कौशल उन्नयन और बाजार संपर्क प्रदान करवा और उनके पारंपरिक कौशल को मजबूत करवा को है और यो उन्हें उत्पादकता, आय और उद्यमशीलता समता बढ़ावा को सक्षम बनावे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल से लोक भवन को सौजन्य भेंट करी। इन दौरान दो इनका बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का अवसर पर 17 सितंबर से शुरू हुई रही 1 माह से सेवा संकल्प अभियान और स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना 2026 की तैयारी की जानकारी दी। उन्हें बतायो कि यो योजना का तहत प्रदेश में 50 लाख लोग होंगे, उनके पट्टा के पक्की रजिस्ट्री करवाई संबंधित हितग्राही के निःशुल्क वितरण करो जाएगो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्यों है कि शहडोल खेल की दुनिया में उभरतो सितारो है और यहाँ की प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को नाम रोशन करी रही है। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जरिए शहडोल में 17वीं सालाए राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता को शुभारंभ करियो। उन्हें क्यों है कि पिछला 15 वर्ष से शहडोल की बास्केटबॉल टीम ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छो प्रदर्शन करियो है। प्रतियोगिता में प्रदेश का 10 संभागों का 17 वर्षीय

तक के आयोग का 240 खिलाड़ी हिस्सा ले रहा है। मुख्यमंत्री ने क्यों है कि शालाएं खेल प्रतियोगिता से बच्चों में अनुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीम भावना विकसित हो गए हैं। उनने सभी खिलाड़ियों उनके शुभकामना देता हुआ खेल भावना का साथ खेलवा और एक दूसरा का उत्सव बढ़ावा को आह्वान किया है। विकसित भारत का संकल्प के गांव गांव तक पहुंचावा का उद्देश्य से सेवा ज्योति कलश यात्रा 7 अक्टूबर के निकली जाएगी। यात्रा के जिला का प्रत्येक विधानसभा से शुरू हुई के कब्जा गांव में होता हुआ विधानसभा मुख्यालय और फिर जिला मुख्यालय पहुंचेगी। यात्रा में कलश और कृत्रिम मशाल का साथ प्रचार वाहन भी रहेगा, जिसके जरिए सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जन कल्याण योजना की जानकारी दी जाएगी। जिला मुख्यालय पर यात्रा का भव्य समापन होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन शामिल होगा। बड़वानी का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में हिंदी माह का तहत हिंदी की आंचलिक बोली और हमारी सांस्कृतिक पहचान विषय को नाटक मंचन करियो गयो। कक्षा 11वीं का विद्यार्थी ने खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी और निमाड़ी बोलियों में अभिनय का माध्यम से प्रस्तुत करियो। विद्यार्थी ने इन बोलियों के विशेषताओं, लोक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी दी। प्रभारी प्राचार्य कुंदन राठौर ने क्यों कि बोलियां हमारी लोक संस्कृति और लोक सांस्कृतिक जड़ों का जुड़ी है, जिनने विद्यार्थियों से अधिक बोली सीखने और उनको सम्मान करवा का आह्वान करियो। खंडवा जिला का अवैध शराब का संग्रहण और बिक्री का खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने निर्देश पर विभाग की टीम ने कालजा खेड़ी, हेड़ई, दूदावास गांव में दबिश दी। कार्रवाई में विस्की, बियर, देसी शराब, हाथ भट्टी शराब और 350 किलोग्राम महुआ लहान जब्त करियो। महुआ लहान को मौका पर नष्ट कर दी गयो है। मामला में आबकारी अधिनियम का तहत 8 प्रकरण दर्ज किया गया है और जब्त सामग्री अनुमानित बाजार मूल्य करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। नीमच जिला का जावद में शुक्रवार के मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का तहत शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर सामुदायिक भवन खोर दरवाजा स्थित डोम में लगेगा। इनमें जावद, अठाना और नया गांव नागरिक क्षेत्र में नगरियों के समस्याओं को निराकरण किया जाएगा। शिविर में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास सहित जिला अधिकारी मौजूद रहेगा। शिविर में प्राप्त आवेदन को तुरंत निराकरण किया जाएगा। प्रदेश में मानसून की विधायक से पहला एक बार फिर बारिश को दौर तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुसार 19 सितंबर के बाद नयो मौसम सिस्टम सक्रिय हो सकता है और प्रदेश में अब तक 33 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि सामान्य औसत 37.3 इंच है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17 से 19 सितंबर और पूर्वी हिस्सा में 18 से 21 सितंबर का बीच कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश हो सकती है। ई था आज का प्रादेशिक समाचार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: साथियों, तुम्हारा सगला को इन खूबसूरत शाम में फिर से स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन का खास कार्यक्रम में, माटी री बात में। भाइयों, अगर यह ओजोन रूपी जाल जरा सी भी कमजोर पड़ी या एक में सेंध लगी तो सूरज की वह जानलेवा किरणा बिना किसी रुकावट के सीधे हमारे धरती पर बरसेगी। इससे ना सिर्फ इंसान, धरती और हमारी फसल उन भी झुलसी जाएगी और पैदावार आधी रह जाएगी, बल्कि मिट्टी की अपनी सारी नमी भी खत्म हो जाएगी। साफ शब्दों में कहूँ तो आसमान में ओजोन परत को यो जो जाल है, जब तक सलामत है तब तक हमारी धरती, खेत खलियान, लहलहाता हरियाली और इंसान भी सुरक्षित है। श्रोताओं, अब लांगा एक छोटो सो लोकगीत को ब्रेक, और ब्रेक का बाद बात करूँगा हूँ ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग और खेती की बर्बादी की। हरियाली को आंचल, जीवन को ढाल है ओजोन, खेतों की मिट्टी को सच्चो रखवालो है ओजोन, सूरज की हानिकारक किरणों से बचावे है इंसान और फसलों की जान, कुदरत की धरती को दियो वरदान है ओजोन।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, जब हम खेत खलियान, मिट्टी की खुशबू और अपनी धरती की बात करा तो अक्सर हमारा ध्यान में उन सुरक्षा की ओर नहीं जाए जो आसमान में चुपचाप हमारी ढाल बनी के बैठी है। पर्यावरण और खेती को रिश्तों इतनों गहरों है कि एक में जरा सी भी हलचल हमारा खेत उनकी नमी छीनी सके। ओजोन दिवस का इन विशेष अवसर पर इसी गंभीर विषय और इन का समाधान पर चर्चा करी सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय का अर्थ साइंस विभाग का HOD प्रोफेसर PN तिवारी जी, जिनसे ओजोन परत पर हुई बातचीत का अंश सुना। नीला गगन, हरी भरी धरा और बहती शीतल हवाएं, यह खूबसूरत दुनिया तभी तक मुस्कुरा रही है जब तक इसके सिर पर कुदरत का दिया वो अनमोल सुरक्षा कवच है। जीवनदायिनी नीले आसमान की छांव तले जब हम सांस लेते हैं तो शायद कभी ध्यान नहीं जाता कि कुदरत ने हमें सूर्य की जानलेवा पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए एक असीम सुरक्षा कवच दे रखा है, और वही सुरक्षा कवच है हमारी ओजोन परत। सूरज अगर जीवन का आधार है तो उसकी प्रचंड हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने वाली ओजोन हमारी रक्षक। लेकिन इंसान की बदलती जीवन शैली ने इस सुरक्षा कवच पर भी संकट के बादल मंडरा दिए। पृथ्वी का यह सुरक्षा कवच आज कितना सुरक्षित है, विज्ञान इस बारे में क्या कहता है और हम अपनी धरा को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमसे बात कर रहे हैं सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अर्थ साइंस के विभाग अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर PN तिवारी जी। सर, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न था कि आज पूरा विश्व ओजोन दिवस मना रहा है, और सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आसान शब्दों में बताइए कि ओजोन परत क्या है और यह पृथ्वी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
3: ठीक
2: है,
3: चारों ओर गैसों का जो आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद एक सुरक्षात्मक परत है। यह मुख्य रूप से वायुमंडल के ऊपरी हिस्से, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, में पाई जाती है। इसे हम पृथ्वी के चारों ओर मौजूद एक प्राकृतिक छाते की तरह समझ सकते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के बड़े भाग को समताप मंडल में उपस्थित ये ओजोन परत रोक लेती है। अगर ये हानिकारक किरणें सीधे बड़ी मात्रा में पृथ्वी तक पहुँचे तो इंसानों में त्वचा कैंसर और आंखों से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा ये पौधों, समुद्री जीवों और पूरे पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर जीवन को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है। विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ओजोन परत के महत्व को, उसके संरक्षण और ओजोन क्षयकारी पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया। पहला विश्व ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया। मैं बताना चाहूंगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है जिसे 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उन रसायनों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित तथा धीरे धीरे समाप्त करना है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके कारण ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग में बड़ी कमी आई और ओजोन परत के दीर्घकालीन सुधार की दिशा में प्रगति हुई।
2: सही बात कही सर आपने। मेरा अगला क्वेश्चन था कि जैसे ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है, यदि यह परत न हो या कमजोर हो जाए तो मानव स्वास्थ्य या हमारी इकोसिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा?
3: जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। इसे यदि आसान शब्दों में हम समझें तो ओजोन परत कमजोर होने का सीधा मतलब है कि पृथ्वी तक अधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों का पहुंचना। इसका असर मुख्य रूप से दो तरह समझा जा सकता है। प्रथम, मानव स्वास्थ्य पर, जिसमें त्वचा कैंसर को जोखिम बढ़ सकता है, आंखों में समस्याएं हो सकती हैं और त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। और दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र पर, ज्यादा पराबैंगनी किरणें फसलों और दूसरे पौधों की वृद्धि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म जीव भी प्रभावित हो सकते हैं जो जलीय खाद्य श्रृंखला की बुनियाद है, इसका असर आगे चलकर मछलियों और दूसरे जीवों पर भी पड़ सकता है। यानी ओजोन परत सिर्फ इंसानों की ढाल नहीं बल्कि यह पूरी पृथ्वी की जीवन व्यवस्था की सुरक्षा करती है।
2: मेरा अगला प्रश्न था कि जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओजोन परत के पतले होने या ओजोन छिद्र बनने का मुख्य कारण क्या है, हमारी दिनचर्या में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है?
3: देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओजोन परत के पतले होने और विशेषकर ओजोन छिद्र बनने का मुख्य कारण मानव निर्मित रसायन है। मुख्य कारण यदि हम समझें तो ओजोन परत समताप मंडल में सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कुछ मानव निर्मित रसायन वहां पहुंचकर पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव से क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्व छोड़ते हैं। ये तत्व ओजोन को तोड़ते हैं और स्वयं दोबारा प्रतिक्रिया कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी मात्रा भी बहुत सारे ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, हैलोंस कार्बन, टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, थाइल ब्रोमाइड आदि हैं। इन सभी का ओजोन उपयोग ओजोन को बड़े पैमाने पर नष्ट करता है और ये ही ओजोन होल बनने के लिए भी उत्तरदायी है। आज सामान्य घरेलू जीवन में सीधे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बहुत कम है क्योंकि इनके उपयोग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। फिर भी हमारी गतिविधियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे सकती हैं, जिनमें पुराने फ्रिज और एयर कंडीशनर जिनमें प्रतिबंधित रेफ्रिजरेंट हों और गैस लीक हो जाए, पुराने एरोसोल स्प्रे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बड़ा स्रोत है, आज अधिकांश देशों में इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है, पुराने फोम इंसुलेशन उत्पादों का उपयोग जिनके निर्माण में ODS जिसको हम कह सकते हैं ओजोन क्षयकारी पदार्थ का इस्तेमाल होता था, पुराने फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम विशेषकर जो हैलोंस पर आधारित हैं, कुछ उद्योग और कृषि प्रक्रियाएं जिनमें प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थों का उपयोग या उत्सर्जन हो सकता है।
2: सही बात है, पुरानी चीजों का इस्तेमाल लगभग बंद ही कर देना चाहिए। सर, मेरा अगला प्रश्न था कि अर्थ साइंस के अध्ययन के अनुसार पिछले कुछ वर्षों या दशकों में ओजोन परत की स्थिति में क्या बदलाव आया है? क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों का सकारात्मक असर देखने को मिला है?
3: हाँ बिल्कुल, पिछले कुछ दशकों के वैज्ञानिक अवलोकनों से काफी स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि ओजोन परत ने अपनी सबसे खराब स्थिति के बाद धीरे धीरे सुधार करना शुरू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। 1980-90 के दशक की बात करें हम तो ओजोन क्षयकारी पदार्थों के कारण समताप मंडली ओजोन में भारी कमी हुई। अंटार्कटिका के ऊपर हर वर्ष बनने वाला ओजोन छिद्र इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण था। 1990 के दशक के मध्य की बात हम बात करें तो विश्व ओजोन स्तर में गिरावट काफी हद तक रुक गई और स्तर अपेक्षाकृत स्थिर हो गया। वैज्ञानिक स्रोतों के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ओजोन छिद्र अब धीरे धीरे सुधार की दिशा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी रसायनों के उत्पादन और उनके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए बनाया गया था। इसका असर इसलिए भी इतना स्पष्ट है क्योंकि लगभग 99% प्रतिबंधित ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से अब समाप्त किया जा चुका है। वातावरण में इन पदार्थों की मात्रा घटने और ओजोन को नष्ट करने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार यदि वर्तमान नीतियां और उनका पालन निरंतर जारी रहा तो वैश्विक ओजोन परत इस सदी के मध्य अपने पूर्व स्वरूप के नजदीक पहुंच सकती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने न केवल ओजोन परत को ही संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी कम करने में मदद की क्योंकि कई ओजोन क्षयकारी पदार्थ स्वयं बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेस हैं।
2: सर, कई बार लोगों को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत के क्षरण को लगभग एक ही समझा जाता है। अर्थ साइंस के नजरिए से ओजोन परत का संरक्षण और वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आपस में किस तरह जुड़े हैं?
3: जी, बताना चाहूंगा आपको मैं। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत का क्षरण एक ही समस्या नहीं है, लेकिन अर्थ साइंस के दृष्टिकोण से दोनों के बीच गहरा संबंध जरूर है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम कारण, प्रभाव और आपसी प्रतिक्रिया को अलग अलग तरीके से देखें, दोनों समस्याओं के मूल अंतर को जानें। ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः समताप मंडल में ओजोन की मात्रा घटने की समस्या है। इसका मुख्य कारण ओजोन क्षयकारी रसायन है। वहीं अगर हम देखें ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहें वैश्विक तापमान, तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि है जिसका मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना है। इसलिए ओजोन छिद्र ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण नहीं है और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह भी नहीं है कि ओजोन परत हर जगह पतली हो रही है या नष्ट हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कई अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओजोन को नष्ट करने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा इन्हें नियंत्रित करने से दोहरा लाभ हुआ, ओजोन परत की रक्षा भी हुई और औसत तापमान भी कम हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने 1987 के बाद इन पदार्थों के उत्सर्जन में 90% से अधिक की कमी को किया है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से समताप मंडल का तापमान और वायुमंडलीय परिसंचरण बदलता है। इससे ओजोन के बनने, टूटने और अलग अलग क्षेत्रों में उसके परिवहन की प्रतिक्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए भविष्य में ओजोन सुधार स्थिति को जलवायु परिवर्तन से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इसे हम सरलता से इस प्रकार समझ सकते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी का पराबैंगनी सुरक्षा कवच है, तो वहीं ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के ताप संतुलन को प्रभावित करने वाली गैसें हैं। कुछ पुराने रसायन एक साथ कवच को नुकसान भी पहुंचा रहे थे और तापमान बढ़ा रहे थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने उन रसायनों को हटाकर दोनों समस्याओं पर एक साथ सकारात्मक असर डाला। इस प्रकार ओजोन क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग अलग अलग वैज्ञानिक समस्याएं हैं, लेकिन उनका रसायन, वायुमंडलीय, भौतिक और कुछ प्रदूषकों के माध्यम से मजबूत पारस्परिक संबंध भी है। यही कारण है कि अर्थ साइंस में आज ओजोन जलवायु अंतःक्रिया को एक संयुक्त प्रकृति पृथ्वी प्रणाली अर्थ सिस्टम समस्या के रूप में अध्ययन किया जाता है।
4: सर, मेरा अगला प्रश्न था कि जैसे हाल ही के वर्षों में दुनिया भर के मौसम के मिजाज में जो बदलाव आ रहा है, क्या उनका ओजोन परत के क्षरण से कोई सीधा संबंध है?
3: देखिए, ओजोन परत का कमजोर होना और मौसम बदलाव ये एक ही विषय नहीं है। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस जैसी गैसों के बढ़ने से होती है, और यही आज गर्मी बढ़ने, हीट वेव, तेज बारिश, सूखा आदि में बड़ी भूमिका निभा रही है। ओजोन परत में कमी का मौसम पर कुछ असर जरूर पड़ता है। यह हवाओं और बारिश के पैटर्न को कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है, लेकिन आज पूरी दुनिया में मौसम के मिजाज में हो रहे बड़े बदलाव का मुख्य कारण ओजोन छिद्र नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने वाला छाता, तो ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को जरूरत से ज्यादा गर्म करने वाला कंबल। इसलिए अगर कहीं बहुत ज्यादा गर्मी, अचानक बारिश, भारी बारिश या लंबे सूखे जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसका संबंध मुख्यतः जलवायु परिवर्तन से है, ओजोन छिद्र से सीधे नहीं।
4: सर, मेरा अगला प्रश्न था, सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय के अर्थ साइंस विभाग में इस विषय पर किस तरह के अनुसंधान या जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं?
3: जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, बताना चाहूंगा। विश्वविद्यालय के अर्थ साइंस में विभाग में मुख्यतः भूजल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भू रसायन, रिमोट सेंसिंग, GIS जैसे क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान एवं शोध कार्य करवाया जाता है। रिमोट सेंसिंग और GIS जैसे पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। ये तकनीकें पर्यावरणीय परिवर्तनों के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी हैं। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस एवं ओजोन दिवस पर जागरूकता गतिविधियों को संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत व्याख्यान, पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से ओजोन परत का महत्व, उसके क्षरण के कारण, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों को कम करने के उपाय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल महत्व पर चर्चा जैसे विषय समाहित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण विश्वविद्यालय परिक्षेत्र एवं अन्य स्थानों पर भी हमारे माननीय कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज सर के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय की व्यापक पर्यावरणीय गतिविधियों में हरित एवं स्वच्छ परिसर, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों का निरंतर संचालन किया जा रहा है। संक्षिप्त में विभाग विश्वविद्यालय इस विषय पर किए जाने वाले काम को तीन स्तरों पर समझ सकते हैं, पृथ्वी, जल, पर्यावरण और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहित करना, ओजोन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर व्याख्यान, परिचर्चा एवं जागरूकता अभियान चलाना, हरित परिसर, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियां निरंतर संचालित किया जाना है। आज विश्वविद्यालय परिवार के साथ कई स्वयंसेवी संस्थाएं, जिनमें वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति, पर्यावरण प्रेमी परिवार आदि भी जुड़कर पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में अपना अमूल्य योगदान समाज को निरंतर दे रहे हैं, जिसका प्रमाण विगत कई वर्षों में विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में किए गए हजारों पौधारोपण है, जो अब वृक्ष बनकर पर्यावरण संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।
4: सर, मेरा अगला प्रश्न था आजकल के युवाओं के लिए और खासकर आम नागरिकों के लिए, कि क्या एक आम नागरिक और खासकर युवा छात्र अपनी दैनिक जीवन शैली में ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव कर सकता है जिनसे ओजोन परत के संरक्षण में मदद मिले?
3: बताना चाहूंगा आपको, इसे यदि हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो ओजोन परत को बचाने के लिए हमें बहुत बड़े बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी सावधानियां भी इस कार्य के लिए मददगार हो सकती हैं, जैसे पुराना फ्रिज या AC इसे सीधे कबाड़ में न डालें, उसे सही तरीके से डिस्पोज करवाएं ताकि उसमें मौजूद गैस हमारे वायुमंडल में ना मिल सके। AC और फ्रिज की समय समय पर सर्विसिंग कराएं ताकि गैस लीक होने की समस्याओं से हम बचें। ऐसे स्प्रे और उत्पाद चुनें जिनमें फ्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हो। बिजली की बचत करें, अनावश्यक पंखे, AC और लाइट न चलाएं, इससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। छोटी दूरी के लिए साइकिल चलाएं या पैदल जाएं, और जहां तक संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। अपने मित्रों और परिवार को ओजोन परत की महत्वता को समझाएं कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। कम बर्बादी, उचित एसी और फ्रिज का चुनाव, ओजोन क्षयकारी पदार्थों से बचाव और दूसरों को जागरूक करना, यही ओजोन संरक्षण में हमारा छोटा लेकिन महत्वपूर्ण योगदान होगा।
4: जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं पुराने फ्रिज या कबाड़ में नहीं फेंकना है, उसका नुकसान बाद में हमें ही मिलना है। सर, आज विश्व ओजोन दिवस के इस विशेष अवसर पर आप सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय परिवार और हमारे आकाशवाणी उज्जैन के तमाम श्रोताओं को क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे?
3: ओजोन दिवस के अवसर पर मेरा संदेश बहुत सरल है। ओजोन परत की सुरक्षा केवल वैज्ञानिकों या सरकार की चिंता नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। हम यह याद रखें कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना आसान है लेकिन उसे ठीक होने में कई वर्ष लगते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता ने हमें दिखाया है कि जब पूरी दुनिया विज्ञान के आधार पर एक साथ मिलकर काम करती है तो पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति को सुधारा जा सकता है। विक्रम विश्वविद्यालय परिवार और सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा कि ओजोन को बचाना मतलब आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना है। हम अपने स्तर पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे पुराने एसी और फ्रिज की गैस को वातावरण में न जाने दें, ऊर्जा की बचत करें, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी पूर्ण अपनाएं और सबसे महत्वपूर्ण सही वैज्ञानिक जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएं। खासकर युवाओं से मेरी अपील है, केवल पर्यावरण दिवस या ओजोन दिवस पर ही नहीं बल्कि हर दिन प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अंत में मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि आसमान की ओजोन परत हमारी सुरक्षा की ढाल है, इसे बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि अपने और आने वाली भावी पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा है। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से विश्व ओजोन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, अगर ओजोन सुरक्षित है तभी पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व सुरक्षित है। छोटे छोटे बदलाव और जैसे ऊर्जा की बचत करना, CFC मुक्त उपकरणों का प्रयोग, पौधारोपण करना, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। आज विश्व ओजोन दिवस के इस बेहद खास मौके पर आपने अत्यंत सरल और रोचक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे सभी श्रोताओं को जागरूक किया। सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय के अर्थ साइंस विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयास वास्तव में सराहनीय है। अपना कीमती समय देने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आदरणीय प्रोफेसर PN तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
5: तो दोस्तों, ये था सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय का अर्थ साइंस विभाग का HOD प्रोफेसर PN तिवारी जी, जिनसे ओजोन परत पर हुई बातचीत आप लोग ने सुनी। तो भाई ना, आगे बढ़वा से पहला सुना एक और प्यारो सो लोकगीत।

चलते बस यो तो कहूंगा कि यह धरती हमारी माँ है और आसमान की वह ओजोन परत इन माँ को आंचले, इन आंचल के प्रदूषण का धुआं में मेला होने से बचावा हम हर बेटा उनको फर्ज है। आओ इन ओजोन दिवस का मौका पर हम सब मिली के एक सच्चो संकल्प ला, हम खेत में पराली नहीं जलावांगा, रसायन को इस्तेमाल कम करांगा, अपनी मेड़ पे पेड़ जरूर लगावांगा और अगर हमारी प्रकृति मुस्कुराएगी, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा अन्नदाता हमारा किसान भी हमेशा जगमगाएगा। आओ ला संकल्प आज माटी के फिर से समृद्ध बनावांगा, पेड़ लगाई के ओजोन बचे के अपनी धरती के स्वर्ग बनावांगा। इन्हीं संकल्प का साथ मुस्कुराते रहो, फिर मिलांगा, तब तक आप सुनता रहो अपनो पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी उज्जैन 102.5। मैं हूं तुम्हारो दोस्त लखन मालवी, विदा लूं, हंसता रहो, मुस्कुराते रहो और अपना खेत खलिहान को ध्यान रख जो। जय राम जी की।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। अभी आप सुन रहे थे मालवांचल का खास कार्यक्रम माटीरी बात। कुछ समय पश्चात हमारा अगला कार्यक्रम भोपाल से अनुप्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहले भी मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं, तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंगल का बात करें तो वो 2-टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आई मीन पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पुनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफ़ी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
1: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी। इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
2: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है। आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2 से 3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापनीज कोच हमें उनकी टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
1: अच्छा।
2: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे। साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं, सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर रही। सुजीत कलकल ने वहाँ पर गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपेरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पुनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्री स्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 kg में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन्ड प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी, पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 kg लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 kg एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
2: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैम्पियन हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 kg में आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा, और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज़्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है
1: जी। और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारीवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश बानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेंस ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेंस स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेंस स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
0: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टीडिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज़्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल। तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगझो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे। अभिषेक, इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
0: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज़्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज़्यादा मेडल लाए, ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहाँ से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा खेलने के लिए, एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफ़ी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है।
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ हैं, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
1: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
0: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहाँ से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुँच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफ़ी है, पेरिस ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफ़ी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में एले क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था, वो साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है और यही वो फॉर्मेट है जहाँ पे हमारा एले ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है, तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें एले ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं आर्चरी के, क्योंकि 2-3 हैं, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है, एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे, तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है, हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगा 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पर जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा होने वाला है, पर हमारे एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जैसे लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 केजी में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पर जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे ही प्रिया घनघास है, ये नए टैलेंट है, लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेन्स टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का, उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे, इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के 1 से 1 उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का जब गोल्ड मेडल जीता, और जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूँ तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफ़ी अच्छा किया है और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा, 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए, इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
2: इसका काफ़ी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी, और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैम्पियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 केजी में। पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है, और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है, तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है, लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
1: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की, टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम, वेलवन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेन्स टीम, अभय सिंह मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
0: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल। वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत, और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एलए ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
0: कंपटीशन काफ़ी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है एले ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
2: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो, हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है।
1: बिल्कुल।
2: तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो, आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो। और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।
1: जी, और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
2: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एलए ओलंपिक्स का ही रहेगा, मैं भी यही चाहूँगी कि मैं एलए ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊँ, गौरव बढ़ाऊँ और वहाँ से मेडल लेकर आऊँ।
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का एकोमोडेशन दिया ताकि वो एकोमोडाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेज काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहाँ पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुँचने की जोरदार तैयारी में है। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चेयर फॉर भारत।
1: मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्राची प्रिया।
2: नमस्कार, कार्यक्रम सुर्खियों में आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: सुषमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि ईपीएफओ है क्या और किस तरीके से ये लाभान्वित करता है जनता को।
3: ये बहुत ही जरूरी सवाल आपने पूछा, क्योंकि कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ईपीएफओ क्या है और उसका रोल क्या है
2: जी,
3: और उसके फायदे क्या हैं। बहुत बड़ी चीज है
2: जी।
3: एक तो जनरली आप देखेंगे दुनिया भर में प्रोविडेंट फंड का मतलब ये है, एक कॉर्पस, एक फंड जो सरकार बनाती है और उसमें सेविंग्स के लिए जो काम करने वाला आदमी होता है किसी भी संस्था में, उसके जितने भी वो चाहते हैं कंट्रीब्यूशन, समझ लीजिए 10% अपने वेतन से वो इस फंड में चला जाता है और सरकार अपनी तरफ से भी मैचिंग इसमें कंट्रीब्यूशन डालती है। तो ये जो उनके तनख्वाह से ये पैसा चला जाता है और सरकार भी उसमें डालती है, इस कॉर्पस में चला जाता है। ये कॉर्पस आपके जैसे अगर मेरा है तो मेरा जब मैं अपनी पूरी समझ लीजिए 25-30-35 साल की जो अपनी करियर की जो अंतिम स्तर तक मैं डालती रहती हूँ, तो अंत में मुझे ये सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ मुझे इसका मिलता है। और ये उसके साथ हमारे केस में हमारे जो भारतीय भविष्य निधि, ये जो प्रोविडेंट फंड है
2: जी,
3: इसमें एक और चीज हमने डाली हुई है। जनरली प्रोविडेंट फंड मैंने बताया कि क्या चीज है, उसमें ये आपका जो पैसा है अंत में भी मिलता है और बीच में इसके फायदे और भी होते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे देश में हमने इसके और कई चीजें डाली हैं जिससे जो वर्कर एम्प्लॉई जो है उसको काफी फायदा होता है। एक तो ये है कि इस कॉर्पस से कभी भी कोई भी एकदम अचानक कोई खर्चा आ जाता है
2: जी,
3: उससे वो इस प्रोविडेंट फंड से ले सकता है। दूसरी बात ये है, हमने पेंशन से भी लिंक किया हुआ है, इसका एक पेंशन फंड साथ में जितना आप डालते हैं थोड़ा सा आपके पेंशन में चला जाता है। तीसरा, हमने इसमें इंश्योरेंस के साथ भी लिंक किया हुआ है कि ये जो आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस हमने बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इससे हमारे देश में जो प्रोविडेंट फंड है वो कई प्रोविडेंट फंड से काफी अलग है। लेकिन जैसे आपने बताया, बेसिक बात ये है कि ये जो प्रोविडेंट फंड, इसको भविष्य निधि कहते हैं, भविष्य के लिए आपने अपनी जो आमदनी है उसमें से आपने कुछ हिस्सा डाला हुआ है
2: जी,
3: और उसमें आपने सेव किया हुआ है
2: जी। सुषमा जी, क्योंकि आपने रिटायरमेंट सेविंग्स की बात की यानी भविष्य निधि की बात की, तो इसी सिलसिले में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों के पीएफ योगदान और भविष्य में मिलने वाली जो रिटायरमेंट सेविंग्स होगी उस पर क्या असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसे आप थोड़ा विस्तार में अगर बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
3: ये जो वेज सीलिंग डाला गया है किसी भी संस्था में, किसी भी उद्योग में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, अगर आपका वेतन 15,000 तक का है तो आपकी तनख्वाह में से इतना पैसा आपका कटेगा प्रोविडेंट फंड के लिए। आपका आज हमारे देश में हमने ये 12% रखा हुआ है, तो 12% आपका वेतन से वो कट के जाएगा और 12% सरकार आपको देगी। लेकिन जो लोग जिनकी तनख्वाहें 15,000 से ऊपर हैं इनके ऊपर ये लागू नहीं है, और कई प्रोविडेंट फंड्स हैं हमारे देश में, हमारे पास वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो उसमें जा सकते हैं। लेकिन इसका फायदा ये है कि सरकार भी आपको इसमें डालती है, दूसरे प्रोविडेंट फंड्स में आपका ही पैसा जाएगा। तो ये सरकार ने ये जो वेज लिमिट डाला है 15,000 का, वेज लिमिट को इस बार बढ़ा दिया है जैसे आपने बताया
2: जी,
3: 15,000 से लेके 25,000 तक। इससे ये हुआ है कि 31 लाख लोग और इस दायरे में आ जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये क्यों किया उन्होंने। ये इसलिए किया कि अब जब ये वेट सीलिंग डाला गया था, और ये मेरे ख्याल 2014 की बात है जब 15,000 बना था, तब से अब तक अब हो गए हैं 11-12 साल
2: जी।
3: तो तब से अब जो तनख्वाहें हैं, वेजेस हैं और बेनिफिट्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो जो आदमी पहले की तनख्वाह अगर 15,000 थी
2: जी,
3: अब वही बंदा शायद बहुत ज्यादा कमा रहा है और वो चाहेगा कि मेरी तनख्वाह से मेरे कुछ बेनिफिशियल सेविंग्स होंगे, ये बेनेवोलेंट सेविंग समझ लीजिए, जिनकी तनख्वाहें 25,000 तक की हैं
2: जी,
3: उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फायदा है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ आपकी सेविंग नहीं जाती, सरकार भी आपके फंड में डाल लेती है। तो आपके जवाब पहले भी बाकी चीजें जो आप मैंने बताई, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस मिलता है
2: जी,
3: आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, आप कभी भी इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं और लब सब बेनिफिट बाद में मिलता है। तो ये काइंड ऑफ फोर्स सेविंग है जो आदमी बड़ी मुश्किल से खुद कर सकता है, तो इसका फायदा बहुत लोगों को मिलेगा।
2: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर क्या कहा।
4: हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पीएफ प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, सितंबर 2014 में चेंज की गई थी। इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शन। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15-25 वाले बैंड में थे, दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स।
2: सुषमा जी, क्या ये बदलाव असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे श्रमिकों के लिए भी कोई नई संभावनाएं पैदा करेगा?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें ये एक ये प्रॉब्लम है कि इनफॉर्मल सेक्टर में ये चीजें, ये बेनिफिट्स नहीं मिलती हैं, और कोशिश तो यही हो रही है सरकार की कि ये धीरे धीरे करके ये इनफॉर्मल सेक्टर इनमें भी ये

0: बेनिफिट्स आ जाएं, कि वो उनको भी फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो कहते हैं
1: जी
0: वो धीरे धीरे हो जाए. तो ये डिमांड आएगी मेरे ख्याल वर्कर्स से, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ज्यादा बेनिफिट्स देंगे तो आपके एम्प्लॉयज आपके वहां से जाएंगे नहीं, जिनको आपने ट्रेन किया हुआ है अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज वो जाएंगे नहीं, तो ये बेनिफिट्स उनको मिल जाएंगे. तो ये कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस दायरे में आएंगी, और जैसे आपने कहा इनफॉर्मल सेक्टर को धीरे
1: जी
0: धीरे करके ये फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएंगी.
1: जी ईपीएफओ में अधिक कर्मचारियों के शामिल होने से भारत की जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको किस तरह से मजबूती मिल सकती है, अगर विशेष तौर पर हम विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए ये सवाल करें तो?
0: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कदम है
1: जी
0: विकसित भारत की तरफ.
1: जी
0: हम और तुम और सरकार और जो आम आदमी है वो
1: जी
0: सब चाहेंगे कि सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स सब लोगों को मिल जाएं, लेकिन सबको मिलते नहीं है.
1: जी
0: इनफैक्ट अगर आप देखें कोई भी किसी नौकरी की तलाश में हो, अगर उनको दो नौकरियां मिलेंगी तो वो नौकरी लेगा जिसमें वो कहेगा अरे भाई इसमें तो प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स मिलते हैं, ये तो अच्छी नौकरी है. तो इसका मतलब ये है कि जो भी नौकरी में आपको प्रोविडेंट फंड यानी कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सबको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर आपको सेफ एंड रिलायबल लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है. तो सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है वो धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ना चाहिए. और ये एक अभी ये जो कदम है ये 15,000 से 25,000 से वेज सीलिंग लाना,
1: जी
0: एक तरह से अगर आप कहेंगे सिर्फ वेज सीलिंग बढ़ाना है, लेकिन वेज सीलिंग बढ़ाना नहीं है. इसका मतलब ये है कि इतने सारे 50 लाख से ऊपर लोग ज्यादा इसमें आ जाएंगे, तो ये जो डिमांड है सोशल सिक्योरिटी की,
1: जी
0: जैसे आप अभी बात की इनफॉर्मल सेक्टर की, उनको भी इस दायरे में लाना पड़ेगा धीरे धीरे करके. और विकसित भारत का मतलब ही ये है डेवलप्ड इकोनॉमी में सबको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए. तो ये गवर्नमेंट में तो मिलता ही है पेंशन, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की ये प्रॉब्लम्स हैं कि सबको पेंशन्स नहीं मिलता, सबको
1: जी
0: बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. तो धीरे धीरे करके अगर ये दायरा बढ़ता है तो ये सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है
1: जी
0: हमारे देश में बढ़ जाएगा.
1: सुषमा जी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, आप भी एक महिला हैं, तो इस फैसले को अगर
0: जी
1: हम उस नजरिए से भी देखें तो महिलाओं, युवा कर्मचारियों और कम वेतन पाने वाले जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्लानिंग है
0: जी
1: उस पर क्या प्रभाव
0: जी
1: पड़ता आप देख पा रही हैं? क्या प्रभाव पड़ेगा इस निर्णय के बाद से?
0: ये बिल्कुल अच्छी बात है आपने पूछी, खासकर महिलाओं के लिए. महिलाएं क्या एक बहुत बड़ी तकलीफ आप कहें या मुश्किल है
1: जी
0: कि जब वो काम करती हैं तो उनकी जो वेतन है उनकी तनख्वाह है वो घर के कामकाज में चली जाती है, और वो कोई बहुत ज्यादा वो सेविंग नहीं कर पाती हैं. जैसे अब ये दायरा बड़ा है 15,000 से 25,000 तक, तो ये सारी महिलाएं जो इसके दायरे में आएंगी उनको फोर्स सेविंग करनी पड़ती है. मतलब 12% का उनके वेतन से जाएगा ही जाएगा, तो उनकी सेविंग हो जाती है. और तब उसके बाद अगर उनको खुदा ना खास्ता कुछ तकलीफ आ जाए या
1: जी
0: कोई खुशी का मौका आ जाए, कोई शादी हो जाए, तो ये महिला, जरूरी नहीं है कि हर महिला के साथ कोई और उनको मदद करने वाला हो सकता है अकेली है, तो जब भी उनको किसी चीज की जरूरत हो वो इस फंड से पैसा एकदम से ले लेते हैं.
1: ये एक तरीके से सशक्तिकरण की तरफ भी पोषित करता है।
0: बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फायदा है महिलाएं के लिए, युवाओं के लिए, और जैसे आपने कहा कोई भी जो एल्डरली लोग भी हैं उनके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये, और जो नीचे वर्ग के जो लोग हैं
1: जी
0: इनके लिए ये जो फर्स्ट सेविंग का फायदा है ये बहुत बड़ी चीज है.
1: इसी सिलसिले में एक और सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि ये सारी बातें
0: जी
1: सेविंग्स की है, भविष्य निधि की है, तो क्या इस कदम से
0: जी
1: कर्मचारियों में जो लॉन्ग टर्म सेविंग की आदत है इसे क्या बढ़ावा मिलने की कोई उम्मीद है?
0: बिल्कुल, यही ये लॉन्ग टर्म सेविंग की आदत से एक मकसद है ये प्रोविडेंट फंड का, कि सेविंग्स की जो हैबिट है वो हमारे कर्मचारियों में बिल्कुल इट शुड गेट डीपेंड,
1: जी
0: हमारे वर्कर्स में, हमारे एम्प्लॉइज, लेकिन ये जो पैसा है ये प्रोविडेंट फंड में, वो खुद ब खुद उनकी तनख्वाह से चला जाता है। और जैसे आप कह रही हैं, किसी के साथ मतलब कम तनख्वाह हो, समझ लीजिए हम तो 25,000 की बात कर रहे हैं, अगर उनकी सिर्फ 10,000 हो, लेकिन 10,000 में से भी अगर 1,000 रुपए, 1,200 रुपए आपकी तनख्वाह में से चले जाए और आपको उतना ही मिलेगा, आप उतने में ही मैनेज कर लेंगे
1: जी,
0: तो ये है कि ये ऑटोमेटिकली ये सेविंग्स की जो आदत है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म आपके जहन में आ जाती है।
1: सुषमा जी, क्या इस कदम से गिग वर्कर्स और जो अन्य नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं उनको भविष्य में सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से जोड़ने का रास्ता और भी मजबूत होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद इससे भी कम कमाते हैं, इस बार से भी कम कमाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो क्या उनके लिए भी यहाँ से रास्ता खुलता हुआ आप देख पा रही हैं, नजर आता है आपको?
0: देखिए, इसके लिए सिर्फ ये वेज सीलिंग से नहीं होगा, ये थोड़ा सा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी गिग वर्कर्स के लिए। खैर, सरकार ने जो रिसेंट लेबर कोड्स हैं, गिग वर्कर्स को उस दायरे में आ गए हैं, वो लेबर कोड्स के दायरे में आ गए हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एप्स हैं जिसमें ये गिग वर्कर्स हैं, कि ये भी ये जो फायदे हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं, ये शुरू करें अपनी कंपनीज में। हालांकि अभी तक तो उन्होंने ये कहा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, तो ये सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में, कि हर कंपनी जो है वो कहती है कि हम अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो ये बेनिफिट्स मिलते नहीं है। लेकिन धीरे धीरे नए जो लेबर कोड्स आए हैं उसमें उन्होंने खास कहा है कि गिग वर्कर्स के लिए एक बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा, और धीरे धीरे इनको इस दायरे में लाना पड़ेगा, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर को हम हमेशा इनफॉर्मल नहीं रख सकते। जरूरी है कि इनको भी ये जो फायदे हैं ये इनको देने पड़ेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रही थी आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51,00,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई, और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
5: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
4: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
6: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
8: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
4: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
9: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने।
4: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
10: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
4: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
11: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
12: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
13: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशन अमदवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।

0: सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Jhiram Valley Maoist attack case in Bastar district. And veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. The Prime Minister called for greater industry participation in skilling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence and quantum computing. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi said India should aspire to be among the early leaders in emerging technologies. He noted the significant progress made in the semiconductor sector and said the ecosystem is now moving from foundational efforts to a phase of greater scale and opportunity. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. He invited industry leaders to share suggestions on policy and administrative measures and assured them that their inputs would be given due consideration in further strengthening the sector. He encouraged industry leaders to actively participate in the next phase of India's semiconductor growth. The CEOs appreciated the government's sustained efforts to develop India's semiconductor capabilities, noting that progress made in manufacturing design, infrastructure and talent development. They expressed confidence in the opportunities emerging under India's Semiconductor Mission 2.0 and in India's potential to build capabilities across the semiconductor value chain, including manufacturing, research and development, advanced technologies and supporting industries. Anupam Mishra, Akashvani.

0: News Delhi.
1: The meeting was attended by CEOs, heads and representatives of various organizations including SEMI, Micron, Infineon, Tokyo Electron Limited, Fujifilm, Intel, Tata Electronics, Foxconn, Semiconductor Devices, Advantest, IBM Research, among others. The roundtable was held ahead of the inauguration of the fifth edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi tomorrow. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi today. He said the decision is expected to benefit over 51 lakh additional employees. Mr. Vaishnav said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
2: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 lakh employees ko iska benefit milega, jo ki 15 to 25 wale band mein the, they will start getting covered in the new PF rules. Bharat Sarkar ka ispe estimated government expenditure rahega about 11,339 crore rupees every year.
1: Our correspondent has more details on the Cabinet's decision taken today.
3: The decision to raise the wage ceiling marks another important step towards building an inclusive, resilient and future-ready social security architecture. At present, a fresh employee joining employment at a wage above 15,000 rupees per month is not automatically covered under the EPF framework. Raising the ceiling to 25,000 rupees will bring a substantial segment of employees within the statutory social security framework. The revised wage ceiling will support a stronger employee retention and a more stable formal workforce, resulting in sustainable employment and higher productivity. The approval will expand access to provident fund savings, pension protection under the employee's pension scheme, and insurance protection under the employee's deposit-linked insurance scheme. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: The government has introduced an exemption from the requirement of registration cum membership certificate or certificate of registration for small value export consignments up to 3 lakh rupees. The Ministry of Commerce and Industry said the measure is aimed at reducing the compliance burden for new and small exporters and facilitating exports through postal, courier and other emerging channels. This is Akashwani giving you the news.
4: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
1: Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has declared Pakistan-based Shahzad Bhatti Network as a terrorist organization under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. The terrorist group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youth and petty criminals into terrorism. The Union Home Ministry has issued a gazette notification in this regard. The Home Ministry said the decision was taken in keeping with Prime Minister Narendra Modi's vision of adopting a zero-tolerance approach towards terrorism. India has expressed deep concern at the drone attack near Makkah in Saudi Arabia. Responding to media queries regarding the drone attack, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, India reiterates its condemnation of attacks on the sovereign territory of the Kingdom of Saudi Arabia and of actions that endanger civilian lives and infrastructure. He added that the incident near Makkah is particularly concerning given the special significance of the city to Muslims across the world. The spokesperson further said India expresses hope for the early restoration of peace and stability in the region. Earlier, Saudi Arabia said its air defenses intercepted and destroyed a drone by Yemen's Iran-backed armed group Houthi near Makkah last evening. Meanwhile, the Houthis have denied targeting Makkah. The External Affairs Ministry today summoned the Shahzad affair of the High Commission of Pakistan in New Delhi and lodged a strong protest over the unacceptable conduct of Pakistani naval units at sea, which led to a collision with a unit of the Indian Navy. In a statement, the ministry said while the incident which took place in international waters did not cause any major damage, The conduct was in direct contravention of the agreement between India and Pakistan on advance notice on military exercises, maneuvers and troop movements of April 1991. A special NIA court in Jagdalpur in Chhattisgarh's Bastar district today sentenced all 10 convicts to death in the 2013 Jhelum Valley Maoist attack case. The convicts have been given 30 days to appeal against the verdict in the High Court. On the 25th of May in 2013, 27 people, including several senior Congress leaders, were killed and 35 others were injured in a Maoist attack in Jhelum Valley in Bastar district. Veteran actor of Kannada cinema, Anant Nag, will be conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award for 2024 for his outstanding contribution to Indian cinema. The Information and Broadcasting Ministry made the announcement today. The award will be presented at the 72nd National Film Award Ceremony on the 22nd of this month at Kevadia in Gujarat. We have a report.
0: It is an honor and hour of jubilation for Karnataka and Kannada film industry as the legendary actor Anant Nag will be conferred the prestigious Phalke Award. May it be romance, comedy or plain serious subject, the realistic, spontaneous acting style of the veteran actor left its mark on the audience. His impressive work in Minchina Ota, Hamsa Geete, Ankur Manthan, Malgudi Days, Ganeshana Madhuve, Gauri Ganesha and over 250 other films has left an indelible mark in the film industry. In his reaction to the media, Anant Nag has expressed deep happiness and gratitude to his well-wishers and the film fraternity.
5: The Prime Minister has tweeted, I'm very grateful and thankful to him. At the same time, all this is because of the people of Karnataka. You know, they have blessed me, blessed my films, supported me for the last 50 years.
0: Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the acclaimed actor and highlighted the impact of his decades-long work, particularly in Kannada cinema. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav and Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan also extended wishes to the veteran actor for the honour. This is Akashvani. You are listening to the news at 9.
4: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
1: Welcome back. The BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from tomorrow to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with a focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. Briefing media in Kolkata today ahead of the launch, senior BJP leader and Defence Minister Rajnath Singh praised Prime Minister Modi as a true leader and one who gives priority to the welfare of citizens.
6: The main objective of the campaign is to celebrate the milestones of the Modi ji's life with same spirit of service, dedication with which he has worked throughout his life. I believe that Seva Sankalp Abhiyan is not merely a program, but a firm conviction and resolve to connect every section of society through service, cooperation and participation.
1: The party will organize various activities under the campaign, keeping in focus the spirit of service associated with Prime Minister Modi's personality. The Prime Minister's birthday tomorrow will be observed as Seva Divas and blood donation camps will be organized across the country. An Ashirwad Ka Diya program will be held in the evening tomorrow, under which families, particularly beneficiaries of government schemes, will light lamps as a gesture of gratitude for Mr. Modi's 25 years in public service. Jal Shakti Minister C.R. Patil, along with Minister of State for Jal Shakti V. Somanna and Minister of State for Housing and Urban Affairs Token Sahu, today launched the Swachhata Hi Seva campaign. The theme of this campaign is Swachhata Me Sahbhag, Swachh Bharat Vikasit Bharat. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal, Kerala, Mahe, Tamil Nadu and parts of Northeast India tomorrow. The IMD has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan and Gujarat tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a partly cloudy sky tomorrow. Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. The Sensex gained 333 points to close at 74,336. The Nifty added 99 points to settle at 23,218. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Chiram Valley Maoist attack case in Bastar district, and veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. That is all in the news at night. Good night.
7: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनातों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने ईपीएफओ के तहत कम से कम उजरत की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून यूएपीए के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने बस्तर जिले के साल 2013 झीराम वादी माओनवाज हमले में कसूरवार करार दिए गए 10 मुलजमीन को सजाए मौत सुनाई है। और आजमुदाकार कन्नड़ अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहिब फाल्के नाम से नवाजा जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत का टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए हुकूमत और सेमीकंडक्टर सनत के दरमियान करीबी इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में सरकर्दा सीईओज के साथ सेमीकंडक्टर गोलमेज की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने महारत टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे को अपनाने की भारत की मजबूत बुनियाद को नुमाया किया और मसनूई जहानत एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की महारत और जिद्दत तराजी में सनतों की बड़े पैमाने पर शमूलियत की अपील की। एआई के शोबे में 1 करोड़ अफराद को तरबियत देने के हदफ का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत के होनहार अफराद और आलमी सनती रहनुमाओं की सलाहियतों और तजुर्बों को यकजा करने से खातिरख्वाह इम्कान पैदा हो सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मामले में कायद बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। उन्होंने वाजे किया कि सेमीकंडक्टर के शोबे में खातिरख्वाह पेशरफ भी हुई है और कहा कि ये इको निज़ाम बुनियादी कोशिशों से आगे बढ़कर बड़े पैमाने और ज्यादा मौकों के मरहले की जानिब गामजन है। इस दौरान सीईओज ने भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को फरोग देने में हुकूमत की पायदार कोशिशों की सताइश की। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और पूरे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में सलाहियत साजी की भारत की अहलियत के तहत उभरते हुए इम्कानात पर एतमाद का इजहार किया, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक तरक्की, एडवांस टेक्नोलॉजीज और माविन सनातें शामिल हैं। वजीर आजम की जानिब से कल नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले सेमीकॉन इंडिया के 5वें एडिशन के इफ्तिताह से पहले ये गोलमेज मीटिंग हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के पांचवें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये तीन रोजा कॉन्फ्रेंस आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निजाम से वाबस्ता शराकतदारों को यकजा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी ताकि माविनत और इख्तिरा को फरोग हासिल हो, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा हो, सरमायाकारी को रागिब किया जा सके और मुस्तकबिल के लिए तैयार सलाहियत पैदा की जा सके। इस तकरीब में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैन अल-अक़वामी कंपनियां और 50 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस नुमाइश में जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और सूडान की नुमाइंदगी कर रहे 6 पवेलियन, 12 रियासती सरकारों के पवेलियन और एक स्टार्टअप से मुतालिक मखसूस पवेलियन शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर से मुतालिक भारत की मुमताज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है जिसका इनेकाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सेमी मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मरकजी काबीना ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के तहत लाजमी कवरेज के लिए तनख्वाह की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना कर दिया है। आज काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से 51 लाख इजाफी मुलाजमीन के लाजमी ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है जिससे कारकुनों के लिए समाजी तहफ्फुज़ का दायरा नुमाया तौर पर वसी होगा। इस इकदाम के लिए हुकूमत के सालाना अखराजात का तखमीना तकरीबन 11,339 करोड़ रुपए है। जनाब वैष्णव ने कहा कि नजरसानी शुदा तनख्वाह की हद कल विश्वकर्मा जयंती से नाफिजुल अमल हो जाएगी।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
7: जनाब वैष्णव ने कहा कि 2004 से 2014 तक ईपीएफओ की तनख्वाह की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था। जनाब वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मौजूदा फैसला इस हद को 25,000 रुपए तक बढ़ाकर इस नुक्ता नजर को मजीद बढ़ाता है जो कि इन बरसों के दौरान उजरत में पायदार बढ़ोतरी, इजाफी आमदनी और बाजाबता रोजगार में तौसी की अक्कासी करता है। हमारे नामानिगार के रिपोर्ट के मुताबिक इस मंजूरी से प्रोविडेंट फंड की बचत तक रसाई में इजाफा होगा और मुलाजिमीन की पेंशन स्कीम के तहत पेंशन तहफ्फुज को वसत मिलेगी। पेश एक रिपोर्ट।
8: तनख्वाह की हद में इजाफा एक जामे मुस्तहकम और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग समाजी तहफ्फुज के निजाम की तामीर की जानिब एक और अहम कदम है। इस वक्त अगर कोई नया मुलाजिम 15,000 रुपए माहाना से ज्यादा तनख्वाह पर मुलाजमत इख्तियार करता है तो वो खुद ब खुद ईपीएफ के दायरे कार में शामिल नहीं होता था। इस हद को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से मुलाजमीन का एक बड़ा हिस्सा कानूनी समाजी तहफ्फुज के निजाम में शामिल हो जाएगा। नजरसानी शुदा तनख्वाह की हद मुलाजमीन को इदारों में बरकरार रखने, बाजाबता इफरादी कुव्वत को ज्यादा मुस्तहकम बनाने, पायदार रोजगार को फरोग देने और पैदावारियत में इजाफा करने में मुआविन साबित होगी। इस मंजूरी के नतीजे में मुलाजमीन को प्रोविडेंट फंड की बचतों तक रसाई, मुलाजमीन की पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का तहफ्फुज और मुलाजमीन डिपॉजिट से मुंसलिक बीमा स्कीम के तहत बीमा तहफ्फुज भी हासिल होगा। आकाशवाणी से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
7: सेवा संकल्प अभियान कल से मुल्क भर में शुरू होगा। अभियान की शुरुआत से पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलकाता में अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत की तारीफ की और उन्हें अवामी बहबूद को सही मायनों में तरजीह देने वाला रहनुमा करार दिया।
9: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
7: जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम जनाब मोदी ने अवामी खिदमत के अपने 25 साल में भारत के हर शोबे की काया पलट की है। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल ने जल शक्ति के वजीर मुमलिकत वी सोमन्ना और मकानात और शहरी उमूर के वजीर मुमलिकत तोखान साहू के हमरा आज स्वच्छता ही सेवा मुहिम 2026 का आगाज किया। इस मुहिम का मौजू है स्वच्छता, सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आज शाम तारूफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से खिताब करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि इस साल की मुहिम 5 अहम सूत्रों पर मरकूज है।

इनमें अवामी मकामात की सफाई सुथराई, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि के मकासद शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। ये दहशतगर्द ग्रुप हथियारों, धमाका खेज मवाद और मनुष्यात की सरहद पार स्मगलिंग में मुलव्वस रहा है। इसके अलावा ये नौजवानों को भड़काने और मुजरिमीन को दहशतगर्दी की जानिब माइल करने में भी शामिल रहा है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस मामले में आज गजट नोटिफिकेशन जारी किया। शहजाद भट्टी नेटवर्क ने भारत के जमहूरी ढांचे और फिरकावाराना हम आहंगी के ताने बाने को निशाना बनाते हुए नफरत अंगेज डिजिटल मवाद भी शाया किया। वजारत दाखिला ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के नजरिए के तहत उसने UAPA के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। इस हमले के ताल्लुक से मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब हुकूमत की इलाकाई सालमियत और आम शहरियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का के नजदीक ये वाकया खासतौर पर तश्वीश का बायस है क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खसूसी अहमियत का हामिल है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की उम्मीद करता है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का के नजदीक ईरान की पुष्तपनाही वाले यमन के हूसी मुसल्ला ग्रुप के जरिए किए गए ड्रोन हमलों के दौरान एक ड्रोन को नाकाम बना दिया और उसे तबाह कर दिया। यमन में कानूनी हैसियत की हिमायत करने वाली इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अलमालकी ने खबरदार किया है कि सऊदी क्यादत में इत्तेहाद मजीद हमलों के खिलाफ जरूरी इकदाम करेगा। इस दौरान हूसियों ने मक्का को निशाना बनाए जाने से इनकार किया है। सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान तेजी से कशीदगी में इजाफा होने के दरमियान ये वाकया पेश आया है। कल सऊदी अरब की सिविल डिफेंस ने कई अलर्ट्स जारी किए थे। अलबत्ता उसने बहरे अहमर में अपने अहम ऑयल पोर्ट यांबू समेत 6 शहरों में इन अलर्ट्स को हटा भी लिया था। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने थिम्पू में अपने भूटानी हमनसब लियोनोपो डीएन ढुनग्याल से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर तावुन का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत में तरक्याती शराकतदारी, तवानाई, तिजारत, राबता, सकाफत और अवाम के रवाबित समेत भारत और भूटान के कसीर जहती ताल्लुकात को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने झीरामवादी के सभी 10 कसूरवारों को आज सजाए मौत सुनाई है। खसूसी जज अजय सिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया। कसूरवारों को फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा पुलिस स्टेशन के तहत झीरामवादी में हुए माओनवाज हमले में कई सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस मामले में कौमी जांच एजेंसी NIA ने 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी और 11 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया था। एक मुलजिम की समाअत के दौरान मौत हो गई। NIA की खसूसी अदालत ने 5 सितंबर को बाकी 10 मुलजिमीन को इस मामले में कसूरवार करार दिया और आज सभी 10 मुलजिमीन को सजाए मौत सुनाई गई। भारत सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेशन के मरकजी बोर्ड CBFC की फौरी तौर पर असर नौ तश्कील की है जिसकी मुद्दत 3 साल होगी। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा कि 9 तश्कील शुदा बोर्ड CBFC में 18 मेंबरान होंगे। मस्कूरा बोर्ड CBFC की असर नौ तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन इत्तलात और नशरियात की वजारत की जानिब से आज जारी किया गया। मशहूर अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहेब फाल्के इनाम से नवाजा जाएगा। कई नस्लों को तहरीक देने वाले सिनेमा के उनके सफर और भारतीय सिनेमा में गरा कदर ताउन के बदले जनाब नाग को इस इनाम से नवाजा जाएगा। जनाब नाग को इस महीने की 22 तारीख को गुजरात के केवड़िया में मुनाकिद होने वाली 72वीं कौमी फिल्म इनामत तकरीब के दौरान दादा साहेब फाल्के इनाम से सरफराज किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आजमदाकार अदाकार अनंतनाग को दादा साहेब फाल्के इनाम दिए जाने के ऐलान पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि जनाब नाग की बेहतरीन कारकर्दगी, हमागीर सलाहियत और उमदगी ने कई दहाइयों तक भारतीय सिनेमा पर अनमिट नकोश

हैं। जनामुद्दीन ने मजीद कहा कि जनाब नाग ने हमेशा अपनी अदाकारी में गहराई का मुजाहिरा किया है और मुनफरिद अंदाज पेश किया है। वजीर आजम ने कहा कि एक मुनफरिद फनकार के तौर पर जनाब नाग इस एजाज के मुस्तहिक हैं। हुकूमत ने 3 लाख रुपए तक के सरमाए वाली बरामदाती खेपों को रजिस्ट्रेशन के मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC या रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना कर दिया है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद नए और छोटे बरामदकारों के तकमीली अमल के बोझ को कम करना और तामीली अमल के बोझ को कम करना और पोस्टल, कुरियर और दीगर उभरते हुए चैनल्स के जरिए बरामद के अमल में आसानी पैदा करना है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनअतों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी CEOs ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने EPFO के तहत कम अज कम उजरत की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी दुकान, एक मोबाइल स्क्रीन और कुछ सेकंड में भुगतान पूरा। न कैश गिनने की जरूरत, न छुट्टे पैसे की तलाश, न बटुए में नोट रखने की चिंता। एक क्यूआर कोड, एक मोबाइल और पैसा पहुंच जाता है पलक झपकते ही। यही है आज का भारत, जहां यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर बड़ी खरीदारी तक, छोटी दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है यूपीआई। लेकिन जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए तो एक सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाता है, इसे चलाने की कीमत कौन चुका रहा है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी चर्चा। पिछले दिनों यूपीआई पेमेंट्स को लेकर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और सीनियर बैंकर के साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्र। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: इससे पहले कि अपने दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बता दें कि जो नया एमडीआर फ्रेमवर्क आया है उसके 5 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। व्यक्ति से व्यक्ति को किया गया यूपीआई भुगतान पूरी तरह से एमडीआर फ्री रहेगा। छोटे मूल्य के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी 2,000 रुपए तक के भुगतान पर एमडीआर नहीं लगेगा। 2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। ये ग्राहक से लिया जाने वाला यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है बल्कि मर्चेंट साइड फ्रेमवर्क है। जिन छोटे दुकानदारों की या कारोबारियों की यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट 1,00,000 रुपए हर महीने है उनके लिए 0 एमडीआर व्यवस्था जारी रहेगी। 75,000 से अधिक के एलिजिबल ट्रांजेक्शन पर एमडीआर अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा, यानी ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ एमडीआर अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। तो ये हैं वो 5 इंपॉर्टेंट पहलू जो एमडीआर के नए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। विकास जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एमडीआर, जिसकी बहुत चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों में है, ये है क्या और यूपीआई की इस पूरी कहानी में इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
2: देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि यूपीआई आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इसे चलाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है ना केवल वो स्पीड के साथ हो, एक्यूरेट हो, लेकिन वो सुरक्षित भी हो। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है और हमें उसमें काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ताकि साइबर सिक्योरिटी ना हो, संबंधित कोई समस्याएं ना हो, फ्रॉड ना हो। तो ये कस्टमर्स प्रोटेक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कस्टमर्स प्रोटेक्शन, के लिए उनकी सुरक्षा के लिए इनोवेशन की आवश्यकता रहती है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आज की तारीख में 56 करोड़ लोग अनबोर्ड हो चुके हैं और लगभग 6.5 करोड़ आपके छोटे बड़े मर्चेंट उसमें शामिल है, लगभग 750 बैंकों के साथ भी ये लिंक, तो कितना बड़ा विश्व में समझता हूँ ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं होगा जहां इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे किसी पेमेंट सिस्टम में, इतने मर्चेंट जुड़े होंगे और तो और इसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है और लगभग 1 ट्रिलियन जो पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है जब काम इतने बड़े स्केल पे हो जाए तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की खर्चा कौन बियर करेगा, उसमें ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे काश्तकार है, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इसका कोई उनके ऊपर कोई इसको नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट, विशेष रूप से छोटे काश्तकार हैं। लेकिन ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट से करने से हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा भी इतनी ही आवश्यकता है जितना की गति है और पारदर्शिता। तो मैं समझता हूँ उसमें जो आपकी जो प्लेयर्स इसमें है, उसमें आपका TPAP जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, फिर उसमें एक पीएसपी बैंक है जो कि वो दरवाजा खुलता है और बैंकों के साथ जोड़ता है, मतलब बैंकों के साथ या आपकी एनपीसीआई के साथ जोड़ता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे बात दोनों बैंक है, एक बैंक जो जिसमें डेबिट होता है पैसा कस्टमर का, और मर्चेंट का बैंक है जहां पैसा क्रेडिट होता है। तो ये सारे एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व है, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। तो अब सरकार ने ये प्रावधान तो रखा है कि 2000 तक इसमें कोई शुल्क नहीं लेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट 2000 से ज्यादा अगर हो तो उसमें एक सीमा रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक का उसमें एमडीआर लगेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट। ये पैसा जो है, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले बैंक, पीएसपी बैंक जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आज कहा जाता है, और जो रिसीविंग बैंक और पेइंग बैंक, ये सब में ये पैसे बटेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट और कर पाए मशीनरी में, आईटी में और पैसे लगाए।
1: जी विकास जी, जब हम एमडीआर की चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी होगा कि एमडीआर का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान है, चूंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, सुविधाजनक बन सके और 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम इस एमडीआर फ्रेमवर्क पर एक के बाद एक डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि एमडीआर और भारतीय अर्थव्यवस्था का समायोजन किस तरीके का है।
2: पूरी भी अर्थव्यवस्था हो, आजकल हम आईटी में इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम पुख्ता हो तो एनेबलिंग सिस्टम है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो एमडीआर से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे, ये एमडीआर के जो भी पैसे इसमें मार्जिन से लिए जाएंगे तो वो पैसे जाएंगे ये स्टेक होल्डर्स के पास, जो लोग यूपीआई प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना, देयर आर 3-4 प्लेयर्स जो उसमें है। तो अब देखिए, जनधन के माध्यम से लगभग 60 करोड़ खाता खोला है और अभी केवल 56 करोड़ हमारे, एक तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है 56 करोड़ लोग आ गए हैं, दूसरा ये है कि इसमें और भी स्कोप है लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए। गांव के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो नॉर्मल फोन है या फोन है भी नहीं, तो वो सब लोगों को अभी ऑनबोर्ड करने का और स्कोप है। और हम कैशलेस इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें यूपीआई को अपनाए। तो इसमें अभी और भी स्कोप है। तो ये कहा जाता है एक कि इसको जीरो जो एनडीआर रेट है और कुछ दिन चलता है, और उसके बाद में जब और लोग अनबोर्ड हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ रेट शुल्क लगता है, उसमें शुल्क लग रहा है मार्चेंट की जो ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये यूपीआई के ऊपर नहीं लग रहा है कोई शुल्क। ये ट्रांजेक्शन जो होगा मार्चेंट, उसमें भी 1 लाख तक जो छोटे काश्तकार, छोटे एनडीआर वाले हैं, उनको सब्जी वाला है, चाय वाला है, 1 लाख तक वो पर मंथ जब उनके पास ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसके ऊपर उनको कुछ P2 वो आते हैं उस कैटेगरी में P2PM, तो पर्सन टू पर्सन मर्चेंट, उसमें कोई उनको शुल्क नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से किसी महीने में ज्यादा हो गया, अगले महीने कम हो गया, 3 महीने का एवरेज देखा जाएगा, वो एवरेज में अगर ज्यादा हो गया तो फिर उनको उस हिसाब से शुल्क लगेगा, जैसे ही बना गया है 0.04% और वो 300 रुपये की सीमा है। तो ये छोटा सा रकम है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा उसमें समय लगेगा इसको स्टेबल होने में, पर मैं समझता हूँ कि इसको लोग अपनाएंगे और मार्चेंट्स भी अपनाएंगे, क्योंकि इतने बड़ी सुविधा है। अब मैं समझता हूँ छुट्टे की प्रॉब्लम है, कैश के गंदे नोट का प्रॉब्लम है, और फिर दोबारा उसमें नहीं जाएंगे लोग।
1: शरद जी, कार्यक्रम में अब तक हमने समझा कि एमडीआर क्या है और नए एमडीआर फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण बातें भी हमने श्रोताओं के साथ साझा की। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब यूपीआई लॉन्च हुआ तब इसे फ्री रखा गया, अब जब डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका है तो इस चरण में एमडीआर की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की जो कीमत है सरकार इससे वो वसूली करना चाहती है?
3: नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं। तो इसको हम इसी प्रकार से देखें कि 20,700 करोड़ रुपए इसको साल का चलाने का खर्चा आ रहा है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली किसी साल 2100, किसी साल 2200, किसी साल 1900 करोड़ रुपए सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, एक तरह से सब्सिडी थी ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया और इस प्रकार ये फैल गया, लोग इसके इतने आदी हो गए, और जो इसकी सुविधा थी आप पलक झपकते ही किसी को कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे अपग्रेड रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसको सस्टेनेबल तभी बना रहेगा अगर इसमें कोई छोटी सी फी लेके और इसमें लोगों को सुविधा जो मिल रही है वो लगातार निरंतर मिलती रहे। दूसरा, इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इशू है। कल को आपके सारे बैंक अकाउंट्स यूपीआई के जरिए जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं, जो आप बैंक अकाउंट ओटीपी के जरिए अप्रूव करते हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसमें जुड़ जाता है, लोगों के तीन तीन चार चार पांच पांच अकाउंट्स उस इंटरफेस में जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट ऐप है वो ऐप भी अपना पूरा एडमिन, तो हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे लिए एक क्यूआर कोड हमने स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया, पर उसके पीछे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये इसमें समझने वाली बात है कि खाली आपने क्यूआर कोड डाला और पेमेंट हो गया, ये तो ठीक है, आपको तो सुविधा मिल गई, जिसने पेमेंट लेनी थी उसको भी मिल गई, परंतु इसके पीछे जो पूरी प्रणाली चल रही है उसके पीछे खर्च आता है, उसको मेंटेन करना है, उसमें नए नए अपग्रेड लाने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाना है। तो ये सही है बात के जो छोटे व्यापारी हैं 2000 से नीचे पे तो है ही नहीं, आपको पता है जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे, और पी टू पी पर्सन टू पर्सन आपने अपने दोस्त को पेमेंट करी, रिश्तेदार को पेमेंट करी, जो कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, वो अभी भी वैसा ही बना रहेगा चाहे कितना भी अमाउंट हो। सिर्फ वहां लगाया गया है जहां एमडीआर को मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार आ रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड यहां सालों से दशकों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो अभी भी तो आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करते हैं, जो व्यापारी आपसे पेमेंट लेता है उसके ऊपर 1% कहीं 1.5%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो मुझे याद है 3-3.5% तक भी कई दफे ले लेता है, तो बकायदा मर्चेंट का वो कटता है। अब मर्चेंट क्यों देता है उसको, मैंने बहुत सारे मर्चेंट से इतने सालों में बात करी कि मैंने कहा भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों लेते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए लेते हैं कि ग्राहक अगर 10 ग्राहक हमारे यहाँ आए और उसमें से 4 ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड है, हम उनको मना कर देंगे हमारे यहाँ तो साहब ग्राहक पियो, ऐसे नहीं है, कार्ड लेने की सुविधा नहीं है, तो वो ग्राहक वापस चले जाएंगे, वो ग्राहक यहाँ नहीं आएंगे, तो उसको सुविधा देने के लिए हम अपने प्रॉफिट पर थोड़े से चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे पर हम उस ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ही है क्योंकि अब कैश का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लोगों को घर से वॉलेट जेब में रखने की आदत नहीं है, जेंजी तो बिना पैसे लिए चलते हैं, बहुत सारे मुझे यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी जेब में कोई कैश नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास यूपीआई है, तो हमें कैश की जरूरत ही नहीं है, कहां नहीं चलता है ये। तो इस बात को देखते हुए जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा 315 लाख करोड़ का साल में ट्रांजैक्शन होना, 24,000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर ट्रांजैक्शन इसकी क्या कॉस्ट आती है अभी जिस लेवल पर है, तो उसमें पर ट्रांजैक्शन हमारी 86 पैसे मैंने देखा कॉस्ट आ रही है, अगर 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो 86 पैसे उसकी कॉस्ट आती है। तो इससे ये जो 0.4% अभी लगा है, पहली बात तो इसमें 300 रुपए पे कैप लगा के बहुत अच्छा निर्णय लिया कि 75,000 रुपए से ऊपर का आप कितने का भी ट्रांजैक्शन करें वो 300 ही रहेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इसको रीलुक किया जाएगा, और अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार के पास सुझाव आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया अभी 15 अक्टूबर से लगना है, हो सकता है कि इतने सारे सुझाव आ रहे हैं, मर्चेंट से छोटे छोटे बात हो रही है, हो सकता है इस पे पुनर्विचार किया जाए, आगे जाके 0.4% को कम किया जाए। मैंने एक अपनी तरफ से निजी सुझाव दिया था कि जो बिजनेसेस जिनका मार्जिन कम है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो वॉल्यूम पे काम करते हैं, 1-2% 3% उनका मार्जिन होता है, उनको लग रहा था कि भाई 0.4% तो हमें बहुत चुभेगा, तो मैंने सुझाव दिया था कि उन व्यापारियों के लिए जहां पर प्योर ट्रेडिंग है और मार्जिन कम है वहां पर इसको 0.1% या 0.2% आगे कभी हो सकता है सरकार इस पे विचार करे। तो मुझे लगता है इसको एंड ऑफ द रोड नहीं देखना चाहिए और इसको खाली एक नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
1: जी विकास जी, अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि एमडीआर का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक ही पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि ग्राहक से एमडीआर नहीं लिया जाएगा, जो दुकानदार है वो एमडीआर का भुगतान करेगा, इस अंतर को हम कैसे समझें?
2: कोहली साहब से मैं सहमत हूँ, यानी एक ही बात है कि इसमें जो हाईवे की अपने एग्जांपल दिया वो पैसे सरकार को जाती है, वो कंपनी को जाती है, तो यहाँ पैसे जो है ये स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा, पीएससी बैंक, सीपीएपी और जो कंसर्न बैंक है। और रहा जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात, बहुत सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए सस्टेनेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कोई भी प्रोसेस हम करें, और इतने बड़े स्केल पर ये काम आ गया है जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है व्यवस्था में, एमडीआर मर्चेंट साइड चार्ज है तो कंज्यूमर में जो कोई भी इसके चार्जेस नहीं लगना चाहिए, और ऐसे जो प्रावधान ऐसा ही है कि इसमें जो मर्चेंट्स हैं ये उसको पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर को, उसमें करने से उनके दो नुकसान हो सकता है, अगर पास ऑन करते हैं तो उनके जो कंपिटिटर है उनके पास लोग चले जाएंगे। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक इंटरव्यू नेहरू प्लेस का किसने कोई सर्वे किया है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये दिया है इंटरव्यू के बाद। दूसरा, जो अनबोर्डिंग कराते हैं अपने एप्स, जैसे गूगल है, यूपीआई है, पेफोन है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उनको सम बेनिफिट्स दे उनकी, जिसके तहत वो कंपनसेट उसमें हो जाएंगे। और रहा आपके एसेंशियल सर्विसेज में, वहां केवल ₹5 में आपके रेलवे टिकट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें केवल ₹5 चार्ज रखा गया है, वो भी जो ऐप जिसका है उसी से वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तो ये जो है इसको हो सकता है रिकंसिडर हो जाए, जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें पेमेंट और कम हो जाए या नील हो जाए। दूसरा जो 1 लाख का उन्होंने रखा है सीमा छोटे MDR के लिए, हो सकता है इसको और बढ़ा भी दिया जाए, 3 लाख कर दिया, 4 लाख कर दिया जाए, 1 लाख हो सकता है कम है आज के तारीख में। तो मैं समझता हूँ ये जब शुरुआत होगी 15 अक्टूबर को, हो सकता है 3 महीने के बाद जब ये देखा जाए प्रणाली कैसे चल रहा है, ऐसा तो नहीं है फिर लोग फिर ATM में जा रहे हैं, रुपए कार्ड में जा रहे हैं या कैश से भी ट्रांजेक्शन किया है, ये कतई मैं समझता हूँ सरकार इसको कभी एनकरेज नहीं करेगी इस बात को। और इसके हो सकता है उसके हल निकालेंगे, वो सबका थोड़ा और रेशनलाइज हो जाएगा, जैसे उन्होंने कहा ना इट इज नॉट एंड ऑफ द रोड, इट इज नॉट एंड ऑफ द डे। तो मैं समझता हूँ इट इज डायनेमिक सिचुएशन, ये एक ऐसा ना इट्स फ्लेक्सिबल सरकार का रुख रहेगा, मुझे ये मानना।
1: शरद जी, अगर इसी पहलू को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, जो सरकार कह रही है कि दुकानदार या जो भी व्यापारी हैं वो 0.4% MDR वहन करेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब दुकानदार पर 0.4% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने उत्पाद का जो मूल्य है वो बढ़ा देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है वो कैश पेमेंट एक बार फिर प्रचलन में आएगा और दुकानदार कह सकता है कि जी आप हमें कैश पेमेंट करिए क्योंकि मुझे तो 0.4% वहन करना पड़ेगा। क्या इसको लेकर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन भी है कि दुकानदार ऐसा नहीं कह सकते हैं और वो अपने उत्पाद का मूल्य इस अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं?
3: देखिए, इस बारे में भी मैंने सुझाव के रूप में, मैं बहुत सारे इंटरेक्शंस कल जब से आया है ये कर रहा हूँ, मैंने सुझाव के रूप में इसमें भी एक बात रखी। आपने बात ठीक कही क्योंकि जब छोटे व्यापारी जो हैं जिनसे बात की गई उनका ये कहना था कि भाई, एक व्यापारी ने तो ये भी शब्द इस्तेमाल किया जी तेल तो तिलों में से निकलता है, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई हम इसको क्यों बेयर करेंगे, हमारा तो मार्जिन कम है, ये ग्राहक को बेयर करना चाहिए, हम नहीं बेयर करेंगे। तो अभी जो क्रेडिट कार्ड यूज होता था MDR के मामले में तो उसमें 2 तरीके से चार्जेस रिकवर कर रहे थे कुछ एक व्यापारी। कुछ तो सीधा कह देते थे कि जी हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे आपसे, पर आपको जो हमसे बैंक चार्ज लेता है 2%, 1% वो आपको एडिशनल हमको देना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए ₹10,000 की चीज है तो आपसे वो 200-300 फालतू ले लिए जाते थे कि भाई ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड से करने की, आप हमें फालतू दे जाए। कुछ लोग इसको मान भी जाते थे और दे देते थे। दूसरा तरीका जो व्यापारी अपनाते थे वो ये थे कि वो कीमत बढ़ा देते थे, यानी कि आपसे वो अलग से कोई चार्ज कह के नहीं लेते थे, पर मान लीजिए कोई चीज ₹10,000 की है तो पहले से ही उसको ₹10,200 उसकी कीमत रख दी, जिससे वो एडिशनल ₹200 में जो उनको MDR भुगतान करना पड़ता है वो करे। तो मैंने सुझाव रूप में इसमें रखा क्योंकि मंशा MPCI की सरकार की ये नहीं है कि ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाए, पर क्योंकि व्यापारीगण जो है वो इस प्रकार की सोच रहा है कि हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर हेल्पलाइन साथ में निकाली जानी चाहिए, जिसमें कि जो भी ग्राहक हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो तुरंत वहां फोन करके पिक्चर खींच के अपलोड करके डाल सके कि मैंने इस दुकान से इस समय सामान खरीदा और मुझसे MDR के रूप में अलग से वसूली की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि जितने दुकानदार हैं वो खुद उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, घर जाते हैं, वो भी सामान खरीदते हैं, पर इस बात को लेके आशंका है। और ये आशंका आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए, हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं UPI के। अगर मैं महीने के 2,000 करोड़ ट्रांजैक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन हो गए। अब 66 करोड़ ट्रांजैक्शन पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या ग्राहक ने अपनी मर्जी से कैश पेमेंट करी या MDR का जिक्र कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये मॉनिटरिंग और ये 24 आवर विजिलेंस रखी जाए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आगे चलेगा और अगर ऐसा लगा कि कैश टू GDP रेशियो जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र में वो बढ़ रही है, कैश की डिमांड सडनली एकदम से बढ़ गई है जब से आया है, इसका अर्थ ये होगा कि भाई जो जरूरत है कैश की वो ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब लोग जो है या UPI के आपको नंबर्स कम होते दिखाई दिए, जिस रफ्तार से UPI पिछले 10 साल में बढ़ा है आपको वो सडनली ग्रोथ कम होती दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है जैसा मैंने पहले कहा कि इस पे देन देयर विल बी अ रीथॉट एंड देयर विल बी अ रीविजिट कि हम इसको फिर से सोचें कि अगर लोगों को इस प्रकार से परेशानी हो रही है और जो मर्चेंट्स हैं वो पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, और इस समय दिक्कत क्या है कि इस समय महंगाई की जो दर है CPI वो 4.82 आई है
1: जी।
3: तो लोगों को थोड़ा सा महंगाई का जो पेन है वो फील हो रहा है, इसमें तो कोई हम इनकार नहीं सकते, तो ऑथराइज जो आधिकारिक आंकड़े निकल कर आए हैं हमारे सामने ही है, उसमें अगर ये और जुड़ जाता है, ये अगर दुकानदार इस प्रकार करने लगते हैं या वेंडर्स इस प्रकार करने लगते हैं लोगों के ऊपर पास ऑन, अब मुझे ऐसा एक और मेरा सुझाव था कि दो हिस्सों में वेंडर्स को बांटे जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जो बड़े वेंडर्स हैं जो बड़ा काम करते हैं वो तो एमडीआर को पास ऑन नहीं करते हैं। बड़े होटल्स हैं, आप कोई लग्जरी का सामान खरीद रहे हैं, महंगा सामान खरीद रहे हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए 0.4% मायना नहीं रखता क्योंकि उनका मार्जिन जाता है। पर जहां पर मार्जिन कम है वहां पर मुझे लगता है कि एक रीविजिट किया जा सकता है आने वाले समय पर। पर यह सब कुछ निर्भर करेगा कोलेटेड डेटा पे कि क्या डेटा निकल के आता है इसके इंप्लीमेंटेशन के एक दो महीने तीन महीने के अंदर, यूपीआई का ओवरऑल डेटा क्या आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। पर सरकार की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के ऊपर भार डाला जाए, लोगों से वसूली की जाए, ये कतई ये मंशा नहीं है। जहां तक व्यापारियों की शिकायत है, मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा व्यापारियों की भी जो इश्यूज होंगे उनको एड्रेस किया जाए।
1: विकास जी, थोड़ी चर्चा छोटे व्यापारियों की भी कर लेते हैं। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, किराना दुकानदार और छोटे कारोबारियों के लिए जो नया फ्रेमवर्क है उसके अनुसार 1,00,000 रुपए तक प्रति महीने यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट छोटे मर्चेंट्स के लिए जीरो एमडीआर फ्रेमवर्क है। आपसे समझना चाहेंगे कि 1,00,000 की ही सीमा क्यों रखी गई? क्या इससे छोटे और बड़े मर्चेंट के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो बेहतर तरीके से होगा? और क्या छोटे मर्चेंट्स के लिए यूपीआई की उपयोगिता अब भी आप समझते हैं बने रहेगी?
2: मैं समझता हूँ इसमें दो बातें हमें देखना चाहिए। एक कि 96% रोज जो एक लगभग आपके 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें से 96% से ज्यादा भी है आपके 2000 वाले, तो बाकी बचा 4% का सब हम जो जितने भी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो रिमेनिंग 4% ऑफ द ट्रांजेक्शन इसकी बात हम कर रहे हैं। छोटे मर्चेंट्स के लिए ये जो 1,00,000 का उन्होंने सीमा लगाया है, मैं समझता हूँ इसको सरकार को हो सकता है इसको रिव्यू करेंगे और कोई 3-4 लाख का, क्योंकि आजकल 1,00,000 रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है और रोज उसकी जो है कोई भी सब्जी वाला भी आजकल 500 रुपये में कोई सब्जी खरीद के ले जाता है, तो मैं समझता हूँ अगर उसके पास 20 लोग आ गए तो मैं समझता हूँ 10,000 रुपया दिन में हो गया, तो इस हिसाब से उसका 1,00,000 रुपया थोड़ा सा कम लग रहा है। हो सकता है इसको सरकार रिव्यू करेंगे और इसको थोड़ा हम उसकी बढ़ाएंगे सीमा। पर असली बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसेंशियल सर्विसेज को उनका लगभग उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आपके रेलवे टिकट है, इंश्योरेंस पेमेंट है, इस तरफ से जो भी एसेंशियल सर्विसेज तो 5 रुपए रखा गया है वो भी ऐप वाला से लिया जाएगा। तो मेरे विचार से तो यूपीआई पर एमडीआर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज जरूर है और यूपीआई को फ्री रखना बहुत अच्छा था, लेकिन वो एडॉप्शन अभी 56 करोड़ हो गए, आगे चल के और बढ़ेंगे। तो दिस हैज बिकम क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है
1: जी।
2: साइबर सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं आजकल बढ़ रहा है तो इनोवेशन की आवश्यकता है, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इन 4% जो आपके ट्रांजेक्शन है उनमें से कुछ रकम आ जाएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट में सहूलियत रहेगी
1: जी।
2: बाकी यूपीआई का कोई विकल्प नहीं है जहां हम खड़े हैं इस समय, और ये कोई भी आदमी बुरी कैश इकोनॉमी में नहीं जाएंगे। शुरुआती तौर पर थोड़ा सा हमें वॉच करना पड़ेगा कि 2-4 महीने में क्या उसका असर पड़ रहा है, कुछ भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे कुछ मार्चेंट्स, बट आई थिंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months और सो थिंग्स विल स्टेबलाइज और फिर लोग इसको यूज टू हो जाएंगे
1: जी। शरद जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे राय जानना चाहेंगे कि यूपीआई अब सिर्फ भारत का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया है, हम जानते हैं कि तकरीबन 10 या इससे ज्यादा देशों में यूपीआई चल रहा है, ऐसे में इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स और एनआरआईस के लिए जो सुविधाएं हैं क्या उसमें डोमेस्टिक एमडीआर फ्रेमवर्क का यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी असर पड़ेगा और वो किस तरीके का होगा?
3: मुझे नहीं लगता उस पर फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है जो लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं उनको पहले से आदत है, आपको जो करेंसी कन्वर्जन होता है उसका चार्ज आपको देना पड़ता है, करेंसी कन्वर्जन के अलावा आपको जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, और इसमें अगर आपको ये इस प्रकार से देना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी आने वाली है। बल्कि इंटरनेशनली जहां ये यूज हो रहा है वहां पर किसी ना किसी प्रकार से वहां की जो सरकार है, जो बैंकिंग प्रणाली है, उन सबको वो करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और मान लीजिए आप किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया और डेटा सिक्योरिटी पूरी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी पूरी नहीं है, फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में पूरी नहीं है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 रुपए ट्रांजेक्शन करते वक्त उसका 10,000 रुपए उसके बैंक से निकल गए, कहीं कोई लीकेज हो गई, आपका जो पासवर्ड है वो लीक हो गया क्योंकि पूरे फायरवॉल्स नहीं थे वहां पर, तो मैं समझता हूँ वो नुकसान बहुत बड़ा है। लोग इसको इस प्रकार से देखें कि अगर थोड़े से पैसे दे के आपको एक सिक्योर्ड, कन्वीनियंट, फास्ट और बहुत ही इजी आपको एक सिस्टम मिल रहा है, थोड़ी सी फी पे करके। मुझे लगता है जो दिक्कत आई वो दिक्कत आई क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड था। 2016 अगस्त में मुझे याद है लाया गया था। पहले आदि हो गए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें आदत डाल दी, तो आदत जब पड़ जाती है तो आदत को छुड़ाना थोड़ा सा कठिन काम होता है, और 10 साल पुरानी आदत हो तो और कठिन होता है। तो आई थिंक इसीलिए इस पे इतना कंफ्यूजन और इस पे इतना भ्रम वगैरह जो लोगों के दिमाग में फैलाया जा रहा है या कुछ लोग परेशान है इसको लेके। बट आप इसको अगर ब्रॉड माइंडेडली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया, जो दुनिया में अपने किस्म का यूनिक प्लेटफॉर्म था जिसको बाकी देशों ने भी कॉपी कर रहे हैं, आज देख रहे हैं। तो ये सदा के लिए कैसे ये निःशुल्क रह सकता है, क्योंकि इसमें सारी जो प्रणाली पीछे काम कर रही है एनपीसीआई, हालांकि मैं एनपीसीआई का एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं तो पीछे 32% प्रॉफिट घटा भी था, एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं, ओवरऑल ना देखूं। और एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीसीआई को मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही, तो एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है जो लोग वहां काम करते हैं, और लगातार इसमें आईटी का इसमें रोल है। अच्छा, बीच में जो एप्स काम कर रहे हैं, आप देखिए ये भी एक बात आ रही थी कि क्या ये इसमें अमेरिकन एप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ज्यादातर उनके पास करीब 45% के आसपास शेयर है पूरे यूपीआई का। तो ये देखते हुए कि उनके पास शेयर है तो भारतीय कंपनी अब इसमें आना चाहती है, तो अगर उनको कुछ इसमें मुनाफा ही नहीं दिखेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्लेयर्स फिनटेक के इसके अंदर आए, तो वो लोग क्यों आना चाहेंगे? वो तो नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि यहां तो वो कहते हैं जी यहां तो सब निशुल्क है, तो हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है, और यहीं पर जैसे हम जो आज बातचीत कर रहे हैं इसका लक्ष्य भी मैं ये मानता हूं यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना कि ये सदा के लिए फ्री रहने वाली चीज नहीं है। और एक और सर्वे मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊं, एक लोकल सर्कल्स ग्रुप है उसका 2025 का सर्वे आया
1: जी,
3: और ये उस सर्वे में निकल के आया कि 57% वेंडर्स को यूपीआई आने के बाद अपने बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो आई थिंक लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इससे बढ़ी है, वो फायदा सारा वेंडर्स को जा रहा है, किसको जा रहा है? वो मर्चेंट्स को फायदा जा रहा है अगर आपका बिजनेस
1: जी बिल्कुल।
3: तो इसको वेंडर्स इस तरीके से सोचे कि उनके बिजनेस बढ़ा है और साथ में थोड़ी सी उस पर आपको फी देनी पड़ रही
2: जी। ना केवल बिजनेस बढ़ा है उसमें, देखिए एज ए बैंकर मैं बताऊंगा, बैंक में जब कोई लोन प्रपोजल प्रस्ताव आता है तो हम कागज मांगते हैं
1: जी,
2: और ये स्वाभाविक है, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे। लेकिन ये जो आपकी वेंडर की जो इसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इट इज फुल प्रूफ, इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे लोगों को लोन भी आजकल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वेंडर्स के लिए ना केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा है बल्कि व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए जो औपचारिकता तमाम पूरा करना पड़ता था पहले, ये केवल उनका वो मशीन से दिखा देते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये है, कुछ इज फुल प्रूफ
1: जी।
2: तो ये भी है, 6.5 करोड़ मार्चेंट्स आपके गिर गए हैं इसमें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में कि ना केवल उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि बढ़ने का अपार उनको स्कोप मिल रहा है
1: जी। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा का सार यही है कि बदलाव जब भी आता है अपने साथ कुछ सवाल और शंकाएं जरूर लाता है, लेकिन जब बात डिजिटल भारत की हो तो आंकड़ों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। आज हमने जाना कि MDR कोई आम नागरिक की जेब पर बोझ नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है। UPI का सफर सिर्फ एक ऐप से पेमेंट करने तक सीमित नहीं था, ये भारत के एक आम नागरिक को देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रांति थी, और ये क्रांति न रुकी है न रुकेगी और ये आगे भी जारी रहेगी।

0: शरद कोहली जी आपका, विकास नारायण मिश्र जी आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें

0: पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं नाटक।
1: प्रस्तुत है नाटक खेल नहीं है जिंदगी, लेखक सतीश मेहता, प्रस्तुतकर्ता अनिल मुंशी।
2: मैं समझ गई थी नीता कि तुम ही होगी।
3: अरे बुआ, समझ गई थी तो इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में?
2: अरे भाई, क्या यहीं बैठी रहती हूँ दरवाजे पर? किचन में खाना बना रही थी, एकदम से छोड़कर आ गई हूँ। अब आने में थोड़ा समय तो लगता है ना?
3: हाँ बुआ, लेकिन जाने क्यों, मुझे लगता है कि जैसे ही मैं घंटी बजाऊं फट से दरवाजा खुल जाना चाहिए। हाँ
2: तुम्हारे साथ यही तो मुश्किल है, जब जो चाहती हो एकदम से हो जाना चाहिए। बचपन से देख रही हूँ तुम्हें, लेकिन नीता ये कैसा स्वभाव बना लिया तुमने?
3: तो इसमें बुरा क्या है बुआ, ये तो मेरे पक्के इरादे को ही दर्शाता है ना? जो चाहती हूँ करके छोड़ती हूँ।
2: नहीं नीता नहीं, तुम लड़की की जात हो, कल को शादी करके ससुराल चली जाओगी। लड़कियों को तो बहुत लचीला होना चाहिए।
3: क्या बुआ?
2: शादी के बाद की दुनिया एकदम नई होती है, उसी के अनुसार बदलना होता है लड़की को।
3: क्या तुम भी बुआ, किस जमाने की बात कर रही हो तुम? अब इस नए जमाने में लड़कियां अपने अनुसार अपनी दुनिया बना लेती हैं। हाँ
2: अरे बिटिया, जमाना कोई भी हो, अपना घर संसार अच्छे से चलाने के लिए बहुत से समझौते करना पड़ते हैं।
3: नहीं बुआ, मैं कोई समझौता नहीं करने वाली। हाँ
2: ओफो, चलो भाई ठीक है, जो मर्जी हो सो करना। पर ये तो बता दो,
3: क्या
2: चाय पीना है या नहीं? मैंने तुम्हारे लिए पकोड़े भी बना कर रखे। भूख लग रही है ना?
4: अरे भाई चाय तो हम भी पियेंगे।
3: वाह, पापा भी आ गए। बुआ अब आएगा मजा, क्योंकि मेरे साथ होंगे पापा।
2: अच्छा?
3: और चाय के साथ होंगे पकोड़े।
4: हाँ और क्या चल रहा है बेटा तुम्हारा, कॉलेज के क्या हाल है?
3: कॉलेज में क्या है पापा, अभी नया सेशन शुरू हुआ है, नई क्लासेस हैं, तो यही परिचय वरिचय का दौर चल रहा है और क्या।
4: और भाई अब तो जूनियर्स पर अच्छा रॉब चल रहा होगा आपका नेताजी।
3: कैसा रॉब पापा, मैं और रॉब?
4: अच्छा तो कॉलेज में नहीं चलती होगी आपकी दादागिरी?
3: अच्छा हा?
4: मेरे ऊपर तो खूब चलती है।
3: क्या पापा, मैं आप पर दादागिरी करती हूँ? ये बात है तो मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ आपसे कुट्टी कुट्टी कुट्टी।
4: अरे रे रे रे, नहीं नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था।
3: मैं भी तो मजाक कर रही थी पापा। लेकिन आपसे मेरी पुच्ची तभी हो सकेगी जब आप मेरी एक बात मान लेंगे। हाँ
4: अरे वाह भाई, तुम्हारी सारी बातें तो मानता हूँ मैं, इसमें शर्त रखवाने की क्या बात है?
3: नहीं पापा, पहले कहिए कि आप वो मान ही लेंगे जो मैं अभी कहूंगी।
4: चलो भाई, हम हारे तुम जीती, बोलो क्या बात।
3: अच्छा तो सुनिए पापा, अगले रविवार को हमारे शहर में मोटरसाइकिल रेस हो रही है।
4: भाई ये तो मैंने भी पढ़ा है पेपर में, हम लोग चलेंगे ना उसे देखने?
3: नहीं पापा, देखेंगे तो आप उसे, मैं तो उसमें भाग ले रही हूँ।
4: क्या क्या भाग लोगी? अरे भाई वो रेस तो लड़कों के लिए होगी।
3: पर पापा उसमें ऐसा नियम कहाँ है कि लड़कियाँ भाग नहीं ले सकती? जानते हैं पापा, मैंने उसके लिए अपना नाम भी लिखवा दिया है।
4: नाम लिखवा दिया?
3: हाँ।
4: ये क्या गजब कर रही है नीता तू? हाँ? अरे भाई ये तो बचपना है तेरा।
3: नहीं पापा, बचपना नहीं है, ये तो आप हैं जो मुझे इतना अच्छा काम करने से रोक रहे हैं। शायद शायद मेरी माँ होती ना तो वो मुझे प्रोत्साहित ही करती। हाँ
4: ये क्या कह रही है नीता तू, बचपन से तेरी सारी इच्छाएं पूरी करता रहा हूँ मैं,

0: कभी माँ की कमी महसूस होने दी है मैंने तुझे?
1: अब छोड़िए और ये चाय और पकौड़ों का मजा लीजिए, ठंडे हो रहे हैं ना।
2: फेंक दो मेरी चाय, नहीं खाना मुझे पकौड़े।
1: नहीं बिटिया, नाराज नहीं होते, पापा तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं ना।
2: मुझे मालूम है मेरा भला बुरा, तुम बीच में मत बोलो बुआ। हाँ,
0: ये क्या कह रहे हो नीता, बुआ से ऐसे बोलते हैं?
2: नहीं पापा, आप कभी मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, मैं अब कुछ न खाऊंगी न पीऊंगी। हाँ
0: बेटा, हमें डर लगता है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए।
2: नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ आप बेकार चिंता कर रहे हैं पापा।
0: अरे चिंता तो होती है बेटा, कितने मुश्किलों से बड़ा किया है तुझे। वो तो ये बुआ ना होती ना तो न जाने क्या होता तेरा।
1: नहीं भाई साहब, ये तो आपकी हिम्मत है जो बिटिया आज इतनी निखर आई है। बहुत प्यारी बिटिया है नीता।
2: पापा, तो फिर मैं मोटरसाइकिल रेस में जाऊं ना पापा? जाने दो ना पापा।
0: अरे नहीं बाबा।
2: हाँ बोल दो ना प्लीज। हाँ हाँ पापा।
0: अरे ठीक है बेटा, ठीक है, तू नहीं मानती तो कर ले अपने मन की।
2: यस।
0: लेकिन सुन, संभल कर चलाना गाड़ी और हार जीत की फिक्र बिल्कुल मत कर।
2: अरे वाह पापा, क्या बात है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रेट है।
0: हाँ बेटा, पर तू मुझसे भी ज्यादा ग्रेट है।

0: शायद भाई साहब और नीता आ गए रेस से। आ रही हूँ। ये क्या हो गया? ये कपड़े गंदे कैसे हो गए नीता?
1: मैंने पहले ही मना किया था, पहले ही मना किया था मैंने। वो तो भगवान इस पर मेहरबान है, वरना जाने क्या हो जाता।
0: हे भगवान।
1: विमला, नीता को अंदर ले जाओ और आराम करवाओ।
0: अच्छा भाई साहब, चलो बेटा।
2: क्या हो जाता पापा? वो तो मैं रेस शुरू होते ही गिर गई, वरना जीत कर बताती।
0: क्या हुआ बिटिया?
1: क्या हुआ? अरे रेस शुरू होते से ही इसकी मोटरसाइकिल उलट गई और ये गिरने लगी। वो तो भला हो वहां खड़े रेस करवाने वाले उन सज्जन का कि उन्होंने इसे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया, वरना आज।
0: हे भगवान, आज तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगी। मुझे तो पहले ही डर लग रहा था, पर ये बिटिया हमारी मानती भी तो नहीं है।
2: वो तो मैंने जरा सा एक्सीलरेटर घुमाया और गाड़ी पिछले पहिए पर खड़ी हो गई, सब गड़बड़ हो गई, वरना आज ट्रॉफी लेकर ही घर आती।
1: अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बकबक मत कर और अंदर जाकर आराम कर। तेरी ऐसी ही जिदों के कारण हमारी नाक में दम है।
2: पापा आप भी ना।
0: चलो बिटिया। भाई साहब, कोई आपसे मिलने आए हैं, अपना नाम जतिन बता रहे हैं।
1: अरे जतिन आए हैं
0: जी।
1: अरे भाई विमला, उन्हें अंदर बुलाओ, ये वही हैं जिन्होंने नीता को संभाला था।
0: अच्छा, अभी आती हूँ उन्हें लेकर।
3: नमस्कार अंकल।
1: आइए जतिन जी, नमस्कार, आइए बैठिए।
3: अंकल, अब तबीयत कैसी है नीता जी की?
1: अरे उसे क्या होना था, वो तो आपने उसे बचा ही लिया। वैसे भी उसके लिए ये सब छोटी मोटी बात ही होती है।
3: अंकल आप बेकार ही मुझे शेर दे रहे हैं, मुझे तो खुद ही ये चमत्कार जैसा लगा। चलिए अब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ।
0: जतिन जी, आपने बहुत रक्षा की नीता की, वरना आज हम कहीं के नहीं होते। लीजिए, आ गई नीता बिटिया।
4: नमस्ते जतिन जी, कैसे हैं आप?
3: अजी मैं तो अच्छा ही हूँ, ये सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए।
0: अच्छा आप लोग बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ।
1: हाँ मैं, बेटा मैं कह रहा था कि तुम नौकरी कर रहे हो या पढ़ रहे हो?
3: अंकल मैंने पिछले साल ही आर्किटेक्चर में डिग्री ली है।
1: अच्छा,
3: और तकदीर से एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छा जॉब भी मिल गया है।
4: अरे वाह, आर्किटेक्ट हैं, फिर आप ये मोटरसाइकिल रेस में कैसे आ गए?
3: नीता जी, आर्किटेक्ट क्या मोटरसाइकिल नहीं दौड़ाते। और वैसे ही मैं उसी क्लब का मेंबर हूँ जिन्होंने ये रेस करवाई थी।
4: अरे वाह।
1: अच्छा भाई जतिन, बेटा मुझे इजाजत दो, एक जरूरी मीटिंग में जाना है मुझे, वरना तुम्हारे साथ बैठने में बहुत मजा आ रहा था।
3: अंकल सचमुच आपके साथ मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप।
4: हाँ पापा, आप बेफिक्र रहें, मैं इन्हें भूखा नहीं भेजूंगी।
1: अच्छा मैं चलता हूँ भाई अब।
3: नमस्कार अंकल।
1: नमस्ते।
4: बैठिए जतिन जी।
3: जी
4: जतिन जी, आपके क्लब में और क्या गतिविधियाँ होती हैं?
3: नीता जी, हमारे क्लब में इसी तरह की कई एडवेंचरस गतिविधियाँ होती रहती हैं। आप भी तो एडवेंचर की शौकीन है, मेंबर बन जाइए ना।
4: वो मैं भी चाहूंगी, मुझे ये सब अच्छा लगता है। वो तो कल जाने क्या हुआ कि मेरी मोटरसाइकिल ने गड़बड़ कर दी, वरना रेस में मैं भी होती। अजी होती क्या, शायद जीत भी जाती।
3: आप मुझे माफ करेंगे नीता जी, लेकिन मैं आपसे इतना तो कहना चाहूंगा कि अभी आप मोटरसाइकिल ड्राइविंग में परफेक्ट नहीं है।
4: क्या?
3: अब देखिए ना, कल आपने एकदम से पूरा एक्सीलरेटर घुमा दिया।
4: वो तो मैंने गाड़ी पहले ही आगे निकालने के लिए किया था, उसमें जाने क्या।
3: नहीं नीता जी, ऐसे थोड़ी ही गाड़ी आगे जाती है, रेस में भाग लेने के लिए एक टेक्निक होती है।
4: तब तो जतिन जी मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जतिन जी, क्या मैं आपसे ये अनुरोध कर सकती हूँ कि आप मुझे ये सब सिखा सकें?
3: अरे मेरे लिए तो ये काम बहुत खुशी का होगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त आपको मानना होगी। मंजूर है तो बोलिए।
4: पहले शर्त तो बताइए, फिर मंजूर होगी।
3: नीता जी, आपको ये जी भूल जाना होगा, और ये आप बाप की फॉर्मेलिटी भी नहीं करें।
4: लेकिन आप भी तो।
3: चलो अच्छा, तुम्हें शर्त मंजूर है ना नीता?
4: तुम्हारी इतनी अच्छी शर्त कौन मंजूर नहीं करेगा जतिन।

0: अरे नीता, यहाँ क्यों रुकी बाइक?
1: जी जनाब, देख नहीं रहे, ये ढाबा है और यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है।
0: अच्छा, तो यहाँ चाय पान होगा? वाह, ये हुई ना कुछ बात।
1: अच्छा जनाब, ने जब मुझे ट्रेनिंग दी है तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी ना।
0: हाँ भाई, सीख तो तुमने बहुत कुछ लिया है, पर ये तुम्हारी जिद और मस्ती के कारण डरता हूँ कि।
1: ये मेरी मस्ती और जिद से तुमको क्या डर?
0: डर तो ये लगा रहता नीता कि कहीं तुम एक्सीडेंट ना कर बैठो। कल तुम उस लड़के से कॉम्पिटिशन करने लगी, और वो भी तब जबकि मैं तुम्हें रोकता रहा।
1: पर तुमने देखा ना जतिन, मैंने उसे पीछे करके ही छोड़ा। कितना मजा आया था ना जतिन उस ड्राइव में।
0: सब मजा वजा धरा का धरा रह जाता नीता, कहीं कुछ हो जाता तो। अभी तो मैं साथ में हूँ, कहीं अकेले में तुम कुछ कर बैठी तो।
1: अच्छा जनाब, मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा?
0: मेरा क्या बिगड़ जाएगा? ये मैं बताऊं या तुम अपने दिल से पूछोगी?
1: दिल से तो पूछ लूं, लेकिन आजकल मेरा दिल मेरे पास कहाँ है? उसे तो कोई ले उड़ा है।
0: कौन ले उड़ा है भाई?
1: ये तुम अपने दिल से क्यों नहीं पूछते?
0: सुनो नीता, ये दिल की अदला बदली तो हो गई, पर मामला आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे पापा से भी तो पूछना पड़ेगा।
1: पापा तो तुम पर दिलो जान से फिदा है, बस एक आध दिन आकर बात कर लो तो वो तुम्हारी मम्मी से मिल लेंगे और लाइन क्लियर।
0: हाँ, मम्मी से तो मैंने पहले ही बात कर रखी है, उन्हें तो मेरी सारी बातें मंजूर होती हैं। मेरे सिवाय उनका कोई और है भी तो नहीं ना।
1: ठीक है, तो कब आ रहे हो पापा से बात करने?
0: अरे नेक काम में देरी क्यों, अब परसों रविवार है, मैं सुबह से ही धरना दिए देता हूँ वहाँ।
1: वाह क्या बात है, तो परसों सुबह का ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ होगा तुम्हारा, ओके?
0: चलो भाई, अभी तो चाय से ही मुंह मीठा किए लेते हैं।
1: ठीक है।

0: ये तो बेटा तुमने बहुत अच्छी और मेरे मन की बात कही जतिन बेटे। कौन सा बाप तुम जैसे बढ़िया लड़के से अपनी बिटिया की शादी करने को इनकार करेगा।
1: जी अंकल।
0: लेकिन बेटा बात यह है कि क्या तुम जानते हो कि नीता बहुत जिद्दी लड़की है। कई बार उसकी ये आदत मुश्किल में डाल देती है।
1: अंकल आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतने दिनों के साथ के बाद भी क्या मैं नीता को नहीं समझ पाया हूं। अंकल यदि मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं तो उसके

0: पूरे व्यक्तित्व को ही पसंद करके स्वीकार कर रहा हूँ। आप बेफिक्र रहें, उसको हमेशा हमेशा खुश रखूंगा अंकल।
1: नहीं बेटे, वो बात नहीं है। सचमुच तुमसे अच्छा पति उसे सारी दुनिया में नहीं मिल सकता। ठीक है बेटा, मैं आज शाम को ही तुम्हारी मम्मी से मिलकर सारी बातें तय कर लेता हूँ।
0: ये शादी भी क्या चीज है, सब तरफ ऐसा हंगामा कि शादी कर रहे दोनों प्राणी आपस में बात ही नहीं कर पाते। मेरा मतलब है, 8 दिन बाद आज इत्मीनान से मिली हैं आप। हाँ तो अब ये बताइए, क्यों गिरी थी उस दिन आप मोटर बाइक से हमारे पहलू में?
2: साफ बात है आलमपना कि हमें जिंदगी भर जो इसी पहलू में रहना था।
0: अच्छा, तो सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था तुमने? बहुत चालाक हो।
2: सचमुच कितना हसीन था वो दिन कि मैंने उस रेस में भाग लेने का निर्णय लिया था जतिन।
0: हाँ नीता, यही तो ऊपर वाले पर विश्वास होता है कि उसने सब कुछ पहले से तय कर दिया होता है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और मेरा, तभी तो इस बार भी इस तरह से मिलवा दिया भगवान ने।
2: प्रभु से यही प्रार्थना है मेरी कि मुझे आगे भी कई जन्मों तक तुम्हारा साथ मिलता रहे। मुझ जैसी सौभाग्यशाली कोई भी नहीं होगी जतिन।
0: सुनो नीता, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? और मम्मी से बात हुई तुम्हारी?
2: बहुत अच्छा लग रहा है जतिन। वैसे भी तुम्हारे साथ जहां पे भी रहूंगी अच्छा ही लगेगा। और मम्मी की तो बात ही क्या, जब से आई हूं प्यार ही उंडेल रही है मुझ पर।
0: अरे वाह, तो हमारी बेगम साहिबा को अपनी सल्तनत पसंद आ गई।
2: बहुत बढ़िया है जतिन। हाँ सुनो जतिन, मुझे कुछ पूछना है तुमसे।
0: बोलो ना, क्या बात है
2: जतिन? वो मैंने बहुत पहले ही मतलब जब मेरी शादी की कोई बात नहीं थी ना, तभी पापा से कहा था कि मैंने शादी की तो हनीमून के लिए मैं मनाली ही जाऊंगी। अब तुम बताओ कि हमें कब चलना है हनीमून के लिए।
0: ये क्या कह रही हो नीता?
2: क्यों,
0: मनाली जाना तो अभी कहां संभव होगा?
2: क्यों,
0: मैं चाहता हूँ कि यहीं कुछ दिन हम लोग और मम्मी के पास रहें, वरना वो अकेली रह जाएंगी ना।
2: जतिन, मम्मी के पास तो हमें जिंदगी भर रहना है ना। वैसे हम लोग मम्मी को भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरह रास्ता निकालो ना जतिन, प्लीज।
0: तुम भी कैसी बातें करती हो नीता, मम्मी को अस्थमा है। पहाड़ पर क्या हालत होती है अस्थमा के पेशेंट की तुम शायद नहीं जानती। उनको वहां भी कब अटैक आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं नीता, हम नहीं जा सकते।
2: ये क्या कह रहे हो जतिन? नहीं, मनाली तो हम चलेंगे ही। देखो मैं आज तक नहीं गई वहां, इसे मैंने हनीमून के लिए ही छोड़ रखा था। कुछ तो रास्ता निकालो जतिन, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते।
0: नीता तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और क्या प्यार की परीक्षा लेने के ये मापदंड होते हैं? अच्छा चलो छोड़ो, छोड़ो इन बातों को।
2: नहीं जतिन, तुम जानते हो कि मैं एक बार जो ठान लेती हूँ वो कर छोड़ती हूँ। या तो हम लोग मनाली जाएंगे या तुम मुझे आज ही पापा के घर जाने दोगे।
0: ये क्या पागलपन है नीता, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करने लगी। चलो हम कहीं घूम आते हैं। अच्छा चलो पापा के घर चलते हैं, उनसे मिलकर आ जाएंगे।
2: नहीं जतिन, मैंने कहा ना कि हमें मनाली चलना है।
0: नहीं नीता, मैंने कहा ना कि मनाली जाना तो असंभव है, इसके बाद तुम्हारी मर्जी।
2: ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ पापा के घर।
0: तुम आराम से जा सकती हो नीता, लेकिन जाने से पहले एक बार सोच लेना कि जिद्दी अकेली तुम ही नहीं दूसरे भी हो सकते हैं।
2: तो मैंने कब कहा कि नहीं हो सकते?
0: तो फिर सुन लो नीता, अगर आज तुम इस घर से गई तो फिर दोबारा इस चौखट के अंदर तुम्हारा आना संभव नहीं होगा। जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो नीता।
2: मैंने कहा ना कि मनाली या फिर पापा का घर।
0: नीता तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ या अपनी ही बकती जा रही हो?
2: मैं बक रही हूँ? हाँ सुन लो जतिन, मैं सिर्फ बकती ही नहीं हूँ,
3: करके भी दिखाती हूँ। अभी और इसी वक्त मैं जा रही हूँ, तुम्हें मनाली चलना हो तो फोन कर देना।
4: जाओ नीता, पर एक बात फिर सुन लो, यदि तुम इस तरह से जा रही हो तो फिर आ नहीं सकोगी यहाँ, इसके बाद तुम्हारी मर्जी।
3: अब कोई नहीं रोक सकता जतिन, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना वहाँ।

0: बुआ,
1: क्या बेटा?
0: गाड़ी की आवाज आई है। जतिन आया है शायद। क्या हो गया है बिटिया तुझे? 2 साल से हर ऐसी आवाज पर यही कहती है कि जतिन आए हैं। क्यों बेकार की आस लगाए रहती है बिटिया? हाँ बुआ, शायद तुम सच ही कह रही हो। बेकार की आस ही लगती है अब तो। क्या अब मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी?
1: मेरी बच्ची, चुप हो जा मेरी बच्ची।
0: ये क्या हो गया बुआ? ये 2 बरस मेरी आंखों में उनका इंतजार करते ही गुजरे हैं। कि वो चली आई थी मैं उन्हें छोड़कर, आखिर क्यों?
1: नहीं बिटिया, नहीं बिटिया, नहीं रो। इस तरह रोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। चुप हो जा मेरी बच्ची।
2: मत रो बेटा, मत रो। रोने से कोई समस्या हल नहीं होती।
0: तो क्या करूं पापा? मुझे क्या मालूम था कि मेरी इतनी सी बात का ये नतीजा होगा?
2: इतनी सी बात? नहीं नहीं बेटा, वो इतनी सी बात नहीं थी। तुमने जो भी किया था वो गलत था। तुम्हारी बेवकूफी थी वो। कहाँ चला गया था उस समय तुम्हारा विवेक?
0: पापा, क्या आदमी का दृढ़ निश्चय होना गलत होता है पापा?
2: नहीं बेटा, दृढ़ निश्चय तो वो होता है जिसके निश्चय के पीछे कोई सार्थकता हो। जिद को दृढ़ निश्चय कहकर महिमा मंडित नहीं किया जा सकता।
0: हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन पापा, क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि वहां उनके पास जाकर गिर गिड़ाऊं कि मुझे अपने चरणों में जगह दे दो?
2: यही तो गड़बड़ है नीता बिटिया। तुम नए लोगों में ये जो ईगो नाम की चीज है, यही तो सारे झगड़े की जड़ है। अरे, पति और पत्नी के बीच काहे की ईगो? जब आपस में समन्वय की भावना हो तो ये ईगो, अहम, अभिमान सब गायब हो जाते हैं नीता बिटिया।
0: तो क्या मैं जाऊं पापा? कहां? उनके घर?
2: नहीं बेटा, तुम्हारा मामला तो बहुत आगे बढ़ चुका है। मेरी बात होती रहती है जतिन से फोन पर कभी भूल कर भी वो तुम्हारा नाम नहीं लेता।
0: फिर क्या मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी पापा?
2: नहीं नहीं बेटा, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अब तो उसी पर भरोसा है। बस हेलो, कौन? अच्छा जतिन, हाँ बोलो बेटे। क्या? अच्छा नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आता हूँ।
0: क्या हुआ पापा? जतिन का फोन था?
2: हाँ बेटा, उसकी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ।
0: क्या?
2: वो बहुत घबराया हुआ था। मैं जा रहा हूँ बेटा।
0: पापा,
2: अस्पताल ले गए हैं उन्हें।
0: पापा मैं भी चलूंगी, अब 2 मिनट रुकिए पापा।
2: तुम चलोगे?
0: हाँ
2: चल, तुम आओ, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ बाहर।

0: भगवान का लाख लाख शुक्र मम्मी कि आज आप बीमारी से उठ बैठी हैं, वरना मैं तो घबरा ही गया था।
1: घबराने की क्या बात है बेटा, एक दिन तो मुझे विदा करेगा ही तू।
0: अभी कैसे मम्मी, अभी तो आपको बहुत सारे काम करने हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही। अरे अभी तो पोते पोती को खिलाने का बड़ा सा काम जो बचा है। लेकिन वो नीता कहाँ है? पिछले 8 दिन से रात दिन सेवा में लगी थी वो।
0: यही तो थी मम्मी, इस इतने बड़े अस्पताल में कौन कहाँ को जाता है पता भी तो नहीं चलता है।
1: शायद मेरे लिए जूस लेने गई है वो। 8 दिन हो गए उसे सोई नहीं बिल्कुल, तबीयत बिगाड़ लेगी अपनी।
0: अब क्या है मम्मी, अब तो तुम्हें रिलीव कर दिया डॉक्टर ने, सो लेगी घर जाकर।
1: बेटा हम कब चल रहे हैं घर?
0: बस मम्मी तुम तैयार हो तो अभी चलते हैं।
1: मैं तो तैयार हूँ बेटा, पर नीता तो आ जाए। अरे लो वो आ गई।
2: लीजिए मम्मी ये जूस पी लीजिए।
1: ला बेटा सामान समेट, अब तो घर ही जा रहे हैं हम लोग।
2: ठीक है मम्मी, सामान तो सब तैयार है। अच्छा तो मम्मी मैं भी अब जाती हूँ।
1: कहाँ जा रही है तू?
2: पापा के घर मम्मी, बुआ इंतजार कर रही होगी।
1: पापा के घर?
2: जी।
1: क्यों, तेरा अपना घर नहीं है क्या?
2: है ना मम्मी, बहुत प्यारा घर है मेरा, पर उस पर अपना अधिकार अपनी ही गलती से गवा दिया है मैंने। सचमुच मम्मी, अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली मुझ जैसी बदनसीब और कहां हो सकती है।
1: नहीं नहीं बिटिया, रोते नहीं, चलो चुप हो जाओ। देखो गलती तो बच्चों से होती ही है, पर उसे स्वीकार कर लेने वाला फिर वो गलती दोहराता नहीं। और फिर नीता, पिछले 8 दिनों से तेरी सेवा ने मेरी आदत जो बिगाड़ दी है, अब कौन करेगा मेरी सेवा वहां?
2: मम्मी मैं तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगी ही, लेकिन लेकिन घर के मालिक की अनुमति के बगैर वहां कैसे आ सकती हूँ मैं?
1: अच्छा तो मालकिन को भी अपने ही घर आने के लिए अनुमति चाहिए। हाँ तो तुम्हारा क्या कहना है जतिन?
0: क्या मुझसे कुछ कहा आपने मम्मी?
1: और नहीं तो किससे कहूंगी बेटा, लेकिन सुन इसका जवाब मुझे नहीं उसे दे, जिसे ठीक जवाब देकर ही तू मुझे पोते पोती खिलाने के काम पर लगाएगा।
0: ठीक है मम्मी, चलो नीता अपने घर चलें।
3: अरे आप लोग जा रहे हैं? भाई वाह बहन जी, आप तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं अब।
1: जी भगवान की दया से, नीता जतिन की सेवा से।
0: हाँ पापा डॉक्टर ने कह दिया है और हम लोग घर जा रहे हैं।
3: भाई वाह यह तो बहुत ही बढ़िया बात है। और नीता बिटिया तुम?
2: पापा पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी जा रही हूँ अपने घर।
3: जीती रहो बिटिया।
0: आओ नीता घर चलें।

0: अभी आप सुन रहे थे सतीश मेहता का लिखा नाटक खेल नहीं है जिंदगी। भाग लेने वाले कलाकार थे अनीस फातिमा, दिव्या पवार, राकेश जैमिनी, अमित रिछारिया और प्रज्ञा मुखर्जी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे अनिल मुंशी।
1: अभी आपने सुना नाटक। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
2: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए रूपाली पांडे का ध्रुपद धमार गायन। राग है बिहाग, बोल हैं डमरू हर कर बाजिए। पखावज पर संगत की है पंडित कैलाश किशोर द्विवेदी ने।

रूपाली पांडे का द्रुपद धमार गायन सुना। राग था विहाग। पखावज पर संगत की थी पंडित कैलाश किशोर द्विवेदी ने।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष

0: two matches. And that is the end of this news bulletin.
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

प्रकृति हमें हर सुबह एक नया संदेश देती है। पेड़ की हर डाली पर नई कोपलें, हर फूल में नई मुस्कान और हर किरण में नई ऊर्जा। जीवन भी ऐसा ही है, हर दिन हमें फिर से खिलने का अवसर देता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि नए विचार नए संकल्पों की शुरुआत है। मन में विश्वास हो तो साधारण सी सुबह भी जीवन में उम्मीद की रोशनी भर देती है।